एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं। आज रविवार है, शक संबत

1948 भाद्रपद मास की तिथि 14 तदनुसार ईस्वी सन 2026 के सितंबर महीने की 6 तारीख प्रातः के 5:58 हुए हैं। आज की सभा आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी चाईबासा है, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत की सकल घरेलू उत्पाद दर में 7.8% की तिमाही वृद्धि उसकी आर्थिक मजबूती को दिखाती है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC के शताब्दी समारोह में कहा कि दुनिया भारत को सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनते हुए देख रही है।
1: दुनिया भारत को फ्रेजाइल 5 बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही है। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है। और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने SRCC के संस्थापक श्रीराम को श्रद्धांजलि दी और उनकी दूरदर्शी सोच को नमन किया। इससे पहले शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टर दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया है। डॉक्टर शर्मा अवकाश प्राप्त एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी की जगह लेंगे। डॉक्टर शर्मा अभी उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के संसद सदस्य हैं और राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह 4 दिन की यात्रा पर कल सऊदी अरब की राजधानी रियाद पहुंचे। श्री सिंह की ये सऊदी अरब की पहली यात्रा है। वे सऊदी अरब के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्री, विदेश राज्य मंत्री और जलवायु पर्यावरण, जल तथा कृषि उप मंत्री से मुलाकात करेंगे। श्री सिंह सऊदी अरब में भारतीय मूल के लोगों, भारतीय व्यापार प्रमुखों, उद्यमियों तथा पेशेवरों से भी मिलेंगे। सऊदी में कार्यरत भारतीय कामगारों से भी वे बातचीत करेंगे। लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री जेवियर बेटेल भारत के 3 दिन के दौरे पर कल भारत आएंगे। इस दौरान वे दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। श्री बेटेल चेन्नई भी जाएंगे और IIT मद्रास के कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड NBEMS ने राजस्थान की राजधानी जयपुर में सीतापुरा स्थित आयन डिजिटल जोन परीक्षा केंद्र पर NEET PG की पुनर्परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार जयपुर के 5 केंद्रों पर परीक्षा सुचारू तरीके से संपन्न हुई। पिछले महीने की 30 तारीख को जयपुर के परीक्षा केंद्रों में बिजली की समस्या के कारण 2,445 अभ्यर्थियों की परीक्षा पूरी नहीं हो सकी थी। छत्तीसगढ़ में जगदलपुर की राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की विशेष अदालत ने झीरम घाटी में हुए माओवादी हमले के मामले में सभी 10 आरोपियों को दोषी ठहराया है। इस मामले में कुल 11 आरोपी थे, जिनमें से एक की मृत्यु हो गई थी। अदालत ने 2 महिलाओं सहित सभी 10 आरोपियों को 29 लोगों की हत्या और 15 को हत्या के प्रयास का दोषी पाया। सजा पर फैसला 16 सितंबर को होगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक मंडल की सिफारिश के बाद 8 उच्च न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कर दी गई है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी जानकारी दी। महिला क्रिकेट में संयुक्त अरब अमीरात के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए 2020 एशिया कप के ग्रुप ए मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान ने भारत के सामने जीत के लिए 56 रन का लक्ष्य रखा था। भारत ने 8 ओवर 4 गेंद में 3 विकेट खोकर 57 रन बनाए और आसानी से लक्ष्य हासिल कर लिया। बाएं हाथ की स्पिनर श्री चंडी ने 7 रन देकर 3 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने सेमीफाइनल मुकाबले में मलेशिया के नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टेन वी क्योंग को हराया। मौसम विभाग ने कल तक पूर्वोत्तर राज्यों, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कराईकाल तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कल तक बिजली चमकने और तेज हवाओं के चलने की संभावना व्यक्त की गई है। पूर्वोत्तर राज्यों, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड में ऐसी स्थिति बने रहने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi has urged young Indians to dream even bigger than previous generations and build global consulting, accounting, financial and legal firms capable of leading the world. Mr. Modi said, "Today Indians are leading the top companies of the world, so why can't companies built by Indians lead the world?" The Prime Minister was addressing centenary celebrations of Sri Ram College of Commerce at Delhi University yesterday evening. Mr. Modi said, "India's 7.8% quarterly growth amid global uncertainty reflects its economic strength." He said, "India has come a long way from policy paralysis to policy dynamism." He said, "The world is watching India become the fastest growing major economy."
1: दुनिया भारत को फ्रजाइल फाइव बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही है। अभी हफ्ते भर में ही भारत की इकोनॉमी को लेकर कई सारी पॉजिटिव खबरें आई। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है। ये 7.8% की ग्रोथ भी ऐसे समय में आई है जब वेस्ट एशिया का युद्ध चल रहा है।
2: Presenting hard economic data to counter persistent critics, the Prime Minister detailed that between April and June, electricity production increased by 9%. Mr. Modi said overall vehicle sales surged by over 20% during the period, driven by 20% growth in two-wheelers and nearly 30% in three-wheelers. He stressed that an 8% increase in steel and cement consumption proves that construction, housing and commercial activity are expanding rapidly. Mr. Modi shared that smartphone exports now exceed 2.5 lakh crore rupees, while domestic defense production has hit an all-time high of nearly 2 lakh crore rupees. Contrasting past struggles with today's achievements, the Prime Minister emphasized that terrorism has been defeated with armed forces confidently striking enemies in their own homes and peace restored from Jammu and Kashmir to the northeast. President Draupadi Murmu has appointed Dr. Dinesh Sharma as a

भरत तथा शत्रुघ्न की अनुपस्थिति में राम वनगमन, महाराज दशरथ का स्वर्गवास आदि जो भी घटनाएं घटी, उनके फलस्वरूप भरत का हृदय ग्लानी से भर गया था। शोक और परिताप की ऐसी अवस्था में इस मनःस्थिति से उबारने के उद्देश्य से मुनिवर वशिष्ठ ने सांत्वना भरे जो उपदेश दिए, प्रस्तुत प्रकरण में आप उनका वर्णन सुनेंगे। मुनि का उपदेश था, स्वर्गवासी महाराज का वचन अवश्य सत्य करो, शोक त्याग कर प्रजा का पालन करो। तुम्हें अपने कर्तव्य का पालन करते देख श्री राम और जानकी भी सुख पाएंगे। श्री राम के लौट आने पर राज्य उन्हें सौंप कर स्नेह भाव से उनकी सेवा करना। मंत्रीगण ने भी भरत को गुरुवर वशिष्ठ की आज्ञा पालन करने का परामर्श दिया। माता कौशल्या ने अपने हृदय में धीरज धारण कर मुनिवर वशिष्ठ के उपदेशों का आदर करने का अनुनय किया।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान, कलाकार थी रंजना जोगलेकर। आकाशवाणी चाईबासा से अब सुनिए भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम समर्पण। इस दैनिक कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं हरिओम शरण।

कार्यक्रम समर्पण में आज के कलाकार थे हरिओम शरण। कार्यक्रम अभिवरण, अब से थोड़ी देर बाद सुगम संगीत होगा, 7 बजे जोहार चाईबासा, 8 बजे समाचार प्रभात का प्रसारण होता है, मॉर्निंग न्यूज 8:15 बजे और प्रादेशिक समाचार 8:30 बजे। उसके बाद आप सुन सकते हैं लोक संगीत कार्यक्रम माटी की महक में।

विविधा, ये दैनिक कार्यक्रम होगा पूर्वाह्न 9 बजे, 9:30 बजे रस रंजन, 10 बजे फिल्म संगीत और 10:30 बजे से आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे।

सांध्यकालीन सभा में मुख्य समाचार के बाद 5:02 पर कार्यक्रम में अभिवादन होगा और आज जय भारती कार्यक्रम फौजी भाइयों के लिए 5:05 पर।

5:30 आप सुन सकते हैं खेती गृहस्थी कार्यक्रम, 6:00 मुख्य समाचार, 6:02 पर हो अखाड़ा, 6:30

बजे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम होंगे, 10 बजे इस केंद्र से गज़लों का कार्यक्रम होगा महफिल, 10:30 बजे फिल्म संगीत कार्यक्रम सुरों के रंग में, 11 बजे हिंदी समाचार, 11:05 पर इंग्लिश न्यूज़, और आज की सभा संपन्न होगी रात्रि 11:11 पर। तो ये था आज का कार्यक्रम अभिवरण।

7:45 बज रहे हैं और प्रस्तुत है सुगम संगीत का हमारा कार्यक्रम। कलाकार हैं के ज्योति।

प्रातः के 7 बज रहे हैं और आकाशवाणी चाईबासा से अब सुनिए जोहार चाईबासा। इसका आगाज लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों से, फिल्म का नाम है आपकी कसम।

कुछ पुरानी सी यादें थीं तकिए तले, कुछ अधूरी सी बातें थीं होंठों पर, जिन्हें कहना भी चाहा मगर कह न सके, वही बातें बनी रात की हम सफर।

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

अब आइए सुनते हैं कुछ देशभक्ति गीत। इस कड़ी में यह है शीर्षक गीत, फिल्म का नाम है फिर भी दिल है हिंदुस्तानी।

0: To learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: नई दिल्ली में इस महीने की 12 और 13 तारीख को आई ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 500 से अधिक संस्थागत निवेशक वित्त मंत्री और उद्योगपति शामिल होंगे। ये आयोजन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समानांतर होगा। सम्मेलन का उद्देश्य ब्रिक्स के 21 सदस्य देशों और साझेदार देशों में संप्रभु पूंजी का उपयोग भरोसेमंद बुनियादी ढांचे ऊर्जा और डिजिटल क्षमता परियोजनाओं के लिए करना है। एक रिपोर्ट। संप्रभु धन कोष, पेंशन कोष और परिवार कार्यालय कुल मिलाकर $1 ट्रिलियन मूल्य की संपत्ति का प्रबंधन करते हैं। सम्मेलन में सीमा पार निवेश, गैर डॉलर निपटान और भुगतान प्रणालियों पर चर्चा होगी। इसके अलावा भारत की यूपीआई भुगतान प्रणाली और ब्राजील की पिक्स भुगतान प्रणालियों को जोड़ने तथा डिजिटल मुद्राओं में कारोबार पर भी चर्चा होने की संभावना है। ये शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब ब्रिक्स देश व्यापार गतिशीलता, अमेरिकी शुल्क के दबाव और उच्च डॉलर लागत के समाधान के लिए स्वयं को अनुकूलित कर रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। समाचार कक्ष से फरहत नाज। छत्तीसगढ़ में जगदलपुर की राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की विशेष अदालत ने झीरम घाटी में हुए माओवादी हमले के मामले में सभी 10 आरोपियों को दोषी ठहराया है। इस मामले में कुल 11 आरोपी थे जिनमें से एक की मृत्यु हो गई थी। अदालत ने दो महिलाओं सहित सभी 10 आरोपियों को 29 लोगों की हत्या और 15 को हत्या के प्रयास का दोषी पाया। सजा पर फैसला 16 सितंबर को होगा। दिल्ली में नकली दवा कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि दिल्ली पुलिस की अपराध नियंत्रण शाखा ऐसी आपराधिक गतिविधियों की पहचान के लिए लगातार निगरानी कर रही है, जिससे गलत लेबल वाली और नकली दवाओं के निर्माण और वितरण को रोका जा सके।
2: केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO आपराधिक गतिविधियों से जुड़ी जानकारी मिलने पर दिल्ली पुलिस और अन्य जांच एजेंसियों के साथ मिलकर काम करता है। इसी लगातार निगरानी और कार्रवाई के तहत दिल्ली अपराध शाखा ने इस साल अप्रैल में दिल्ली में बिना लाइसेंस वाली जगह से गलत लेबल वाली और खराब गुणवत्ता की रेबीज वैक्सीन जब्त की थी। पिछले महीने की 27 तारीख को एक सूचना के जरिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने सभी राज्यों के ड्रग्स कंट्रोलर से कहा कि वे अपने इंस्पेक्टर स्टाफ को अलर्ट करें और दवा के गलत लेबल वाले बैच की आवाजाही, वितरण और उपलब्धता पर कड़ी नजर रखें। DCGI ने यह भी पुष्टि की है कि संबंधित बैच का कोई भी हिस्सा किसी दूसरे देश में निर्यात नहीं किया गया था। अस्पतालों, क्लिनिकों और सरकारी हेल्थ केयर सेंटरों में दी जाने वाली वैक्सीन सिर्फ लाइसेंस वाली फार्मेसियों के जरिए ही दी जाती है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: महाराष्ट्र के मेलाघाट और पेंच बाघ अभयारण्य गिद्धों के पुनर्वास मामले में देश के सबसे सफल स्थलों के रूप में उभरे हैं। इन केंद्रों में गिद्धों को पाला गया और उनके जीवित रहने की दर उत्साहजनक रही है। एक रिपोर्ट।
3: बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS के अनुसार दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच दोनों अभयारण्यों में कुल 29 गिद्ध छोड़े गए थे। BNHS ने कहा है कि यह सफलता दर्शाती है कि गिद्धों को पर्याप्त शिकार और कम मानवीय हस्तक्षेप वाले बाघ अभयारण्यों में छोड़ना एक प्रभावी तरीका साबित हो सकता है। ये परिणाम देश में घटती गिद्ध आबादी के संरक्षण और पुनर्स्थापना के प्रयासों को महत्वपूर्ण प्रोत्साहन देते हैं। प्रार्थना के साथ माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: झारखंड सरकार के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू का दिल का दौरा पड़ने से गिरिडीह के मर्सी अस्पताल में निधन हो गया है। देर रात तबीयत खराब होने के बाद उन्हें रात करीब 2 बजे अस्पताल लाया गया, जहां सुबह करीब 4 बजे उनका निधन हो गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुदिव्य कुमार सोनू के निधन को अपनी व्यक्तिगत क्षति बताते हुए कहा कि उन्होंने अपना जीवन झारखंड की अस्मिता, अधिकार और स्वाभिमान की लड़ाई को समर्पित कर दिया। ईरान की नौसेना ने हॉर्मुज जलड़

0: मध्य से गुजर रहे तीन तेल टैंकरों और अमरीका से जुड़े तीन जहाजों पर हमले का दावा किया है। इससे पहले अमरीका ने फारस की खाड़ी और ओमान सागर में तीन ईरानी तेल टैंकरों पर हमला किया था। महिला क्रिकेट में दुबई में टी20 एशिया कप के ग्रुप ए मैच में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया है। पाकिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 18 ओवर और एक गेंद में महज 55 रन बनाकर आउट हो गई। ये टी20 में उसका अब तक का सबसे कम स्कोर है। भारत ने 8 ओवर 4 गेंद में ये लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत की ओर से स्पिनर श्री चरणी और प्रेमा रावत ने 3-3 जबकि दीप्ति शर्मा ने 2 विकेट हासिल किए। ये मैच हरमनप्रीत का बतौर कप्तान 150वां टी20 मैच था। वे पुरुष या महिला क्रिकेट में ये उपलब्धि हासिल करने वाली पहली कप्तान हैं। बैडमिंटन में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी तीसरी बार चाइना मास्टर्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में उनका मुकाबला आज चीन के हेजीटिंग और रेन जियांग यू की जोड़ी से होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी एक्स पर @AIRNews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है नवीन सक्सेना।
2: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज में दिए गए वक्तव्य को प्रमुखता दी है। युवा ही विकसित भारत बनाएंगे, मुझे पूरा भरोसा। दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री की युवाओं को सलाह को सुर्खी बनाया है, बड़े सपने देखें और पूरा करने में जान लगा दें। जनसत्ता ने खतरा शीर्षक से IIT मंडी के शोध को प्रकाशित किया है। हिमाचल में आकार में तेजी से बढ़ रही 9 हिमनद झीलों की पहचान हुई। एक दशक में हिमालय क्षेत्र में हिमनद झीलें करीब 30% बढ़ी। 457 साल बाद बदलेगा दुनिया का नक्शा, लिखता है राजस्थान पत्रिका। संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव पारित, भारत सहित 164 देशों का इक्वल अर्थ मानचित्र के पक्ष में वोट। वर्ष 1569 में बने मर्केटर प्रोजेक्शन की जगह वर्ष 2018 के इक्वल अर्थ प्रोजेक्शन को बढ़ावा देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। अमर उजाला ने न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर को प्रमुखता दी है। 1200 बेकाबू AI एजेंट्स ने इंटरनेट पर बना ली खुद की सरकार। पकड़े जाने के डर से मिटाए सबूत, OpenAI और एंथ्रोपिक ने रोकी सबसे ताकतवर मॉडल की ट्रेनिंग। नवभारत टाइम्स ने परवरिश पृष्ठ पर AI की बढ़ती दखलंदाजी को प्रमुखता दी है। पेरेंट्स की जगह तो नहीं ले रहा AI, मम्मी पापा नहीं समझ पा रहे बच्चों को चैटबॉट से क्या हो रहे हैं नुकसान। पत्र ने बचाने के रास्ते भी दिए हैं। चैट हिस्ट्री जरूर देखें, अपना ज्यादा से ज्यादा समय दें, AI को दोस्त बनने से रोके और हर जवाब तुरंत मत लेने दें।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील। भारतीय युवा परामर्श, लेखा, वित्त और कानून से जुड़ी ऐसी संस्थाओं का निर्माण करें जो वैश्विक स्तर की हों। भाजपा के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया। NIA की विशेष अदालत ने 2013 में छत्तीसगढ़ के झीरम घाटी हत्याकांड में 10 माओवादियों को दोषी ठहराया। नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान आए ब्रिक्स सम्मेलन में 500 से अधिक संस्थागत निवेशक, वित्त मंत्री और उद्योगपति शामिल होंगे। और क्रिकेट में भारत ने दुबई में महिला टी20 एशिया कप मैच में पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। इसके साथ चल प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Nishit Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi addresses centenary celebrations of Shriram College of Commerce at Delhi University, calls upon young Indians to build global consulting, accounting, financial and legal firms capable of leading the world. BJP Rajya Sabha MP Dinesh Sharma appointed Lieutenant Governor of Andaman and Nicobar Islands. NIA Special Court convicts 10 Maoists in 2013 Chhattisgarh Jhiram Valley Massacre case. IBRICS Summit to be held in New Delhi on the sidelines of BRICS Summit on the 12th and 13th of this month. Over 500 institutional investors, finance ministers and business leaders to participate in the two-day event. And in cricket, India beat Pakistan by 7 wickets in the Women's T20 Asia Cup match in Dubai. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has urged young Indians to dream even bigger than previous generations and build global consulting, accounting, financial and legal firms capable of leading the world. Mr. Modi said, today Indians are leading the top companies of the world, so why can't companies built by Indians lead the world? Prime Minister was addressing the centenary celebrations of Sri Ram College of Commerce, SRCC, at Delhi University yesterday evening.
4: दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें
3: Mr. Modi said India's 7.8% quarterly growth amid global uncertainty reflects its economic strength. He said India has come a long way from policy paralysis to policy dynamism. He said the world is watching India become the fastest growing major economy. Mr. Modi shared that smartphone exports now exceed 2.5 lakh crore rupees, while domestic defense production has hit an all-time high of nearly 2 lakh crore rupees.
4: देश की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग अपने ऑल टाइम हाई पर है आज भारत करीब करीब 2 लाख करोड़ रुपए का डिफेंस प्रोडक्शन कर रहा है 2013-14 में हम 600-700 करोड़ रुपए का डिफेंस एक्सपोर्ट करते थे आज ये आंकड़ा करीब करीब 40,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है
3: The Prime Minister said the SRCC has given generations of students the opportunity to learn, grow and make a difference over the years. Mr. Modi said the college has distinguished itself over the years, making a mark for academic excellence. He stated that former Finance Minister Arun Jaitley was an alumnus of SRCC. He said SRCC alumni has left their mark in every sector from arts to politics. Mr. Modi added that together 140 crore Indians will make India both Viksit and Atmanirbhar.
4: मुझे विश्वास है हम 140 करोड़ भारतीय मिलकर अपने देश को विकसित भी बनाएंगे आत्मनिर्भर भी बनाएंगे आने वाले समय में भारत मैन्युफैक्चरिंग का हब होगा आने वाले समय में रिसर्च एंड इनोवेशन का हब हिंदुस्तान होगा भारत एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की सुपर पावर होगा
3: The Prime Minister highlighted the profound significance of this 100-year milestone for both the college and the nation's education sector and paid tribute to founder Sri Ram and bowed to his enduring vision. Education Minister Prahlad Joshi in his speech praised SRCC for maintaining its high standard over the years. He said today India is the third largest startup ecosystem under the leadership of Prime Minister Modi. He said that there is a requirement of skilled human resources in the global market. President Draupadi Murmu has appointed Dr. Dinesh Sharma as the Lieutenant Governor of the Andaman and Nicobar Islands. Dr. Sharma will succeed Admiral Devendra Kumar Joshi, who was serving as Lieutenant Governor of the islands since October 2017. Dr. Sharma is presently a BJP Rajya Sabha MP from Uttar Pradesh and has also served as Deputy Chief Minister of the state. Talking to Akashwani News, Dr. Sharma said, whatever assignment is given by the party to him, he will try his level best to perform it.
5: Whatever instruction the Honorable Prime Minister gives are always acceptable to everyone. I always worked as a party worker and it is our responsibility to follow whatever directions our party leadership gives. My only desire is to fulfill the trust that the Prime Minister has placed in me.
3: In Chhattisgarh, the National Investigation Agency's special court in Jagdalpur has convicted all 10 accused in Cheram Valley Maoist attack case under various charges. A total of 11 accused were tried in the case, of whom one died during the trial. The court found all 10 accused, including two women, guilty of the murder of 29 people and attempt to murder 15 others. The order of the quantum of punishment has been reserved for September 16th. In May 2013, Maoists attacked a convoy of Congress leaders in Jhelum Valley. 29 people, including senior Congress leaders, were killed in this dastardly attack. Jharkhand Urban Development Minister Sudhiv Kumar Sonu passed away at Mercy Hospital in Giridih after suffering a heart attack. He reportedly complained of ill health late at night and was brought to the hospital at around 2 a.m., where he passed away at around 4 a.m. The news of the minister's demise has cast a pall of grief across Giridih and the entire state of Jharkhand, with a large number of supporters, party workers and well-wishers reaching the hospital. Chief Minister Hemant Soren describes Sudhev Kumar Sonu's demise as a personal loss and said that he had dedicated his life to the struggle for Jharkhand's identity, rights and self-respect. This is Akashwani giving you the news.
6: Stay updated, stay ahead. Follow us on X at AIR News Alerts and on Instagram at AIR News Alerts.
3: More than 500 institutional investors, finance ministers and business leaders will participate in the inaugural iBRICS Summit on the sidelines of BRICS Summit in New Delhi on the 12th and 13th of this month. The two-day summit is designed to connect sovereign capital with bankable infrastructure, energy and digital capacity projects across 21 BRICS member states and partner nations. Sovereign wealth funds, pension funds and family offices attending the iBRICS Summit manage a total wealth of $1 trillion. They will discuss cross-border investments, non-dollar settlements and payment systems among BRICS economies. The summit comes at a critical juncture as BRICS economies adapt to shifting trade dynamics, U.S. tariff pressures and high dollar clearing costs. At BRICS Chair 2026, India will be hosting the 18th BRICS Summit on September 12th and 13th at Bharat Mandapam in New Delhi. Union Home Minister Amit Shah arrived in Goa last night on a three-day visit, during which he will chair the 28th meeting of the Western Zonal Council. Today, he is scheduled to chair a Home Ministry meeting, address a press conference and inaugurate the BJP's new state office. We have more from our correspondent.
7: Amit Shah will begin his engagements today with a meeting to review important matters related to Goa. He will then address a press conference before inaugurating BJP's newly constructed state office, Atal Bhavan. Mr. Shah will also meet party's state core committee during the day. Tomorrow, his engagements include the Western Zonal Council meeting and the presentation of the President's police colour to Goa Police. Nikhil Upadhyay, Akashwani News, Padji.
3: Drug regulatory and law enforcement agencies have intensified coordinated action against illegal manufacture and distribution of misbranded drugs in New Delhi. The crime branch of Delhi Police has been undertaking continuous surveillance to identify criminal activities related to the manufacture and distribution of misbranded and spurious drugs. We have more from our correspondent.
8: The Central Drugs Standard Control Organization, CDSCO, works in close coordination with Delhi Police and other enforcement agencies whenever leads relating to such criminal activity emerge. As part of this continuing surveillance and enforcement activity, Delhi Crime Branch had seized misbranded and not of standard quality rabies vaccine in April this year from the unlicensed premises in Delhi. Through a communication on 27th of last month, the Drugs Controller General of India, DCGI, requested all state drugs controllers to alert their inspectorate staff and maintain strict vigilance over the movement, distribution and availability of the misbranded vaccine batch of the drug. A total of 4 persons have been arrested by the Delhi Police in connection to this case. Neetika Gupta, Akashwani News, Delhi.
3: Sumail Ghar and Panch Tiger Reserves in Maharashtra have emerged as India's most successful sites for the reintroduction of captive bred vultures, recording encouraging survival rates. Details from our correspondent.
9: According to the Bombay Natural History Society, BNHS, 29 vultures released across the two reserves between December 2025 and January 2026 recorded survival rates of up to 78%. BNHS said the success demonstrates the viability of shifting bird release enclosures to prey-rich and inviolate tiger habitats. The results are a significant boost to ongoing efforts to conserve and restore India's declining vulture populations. The encouraging survival rates offer hope that such conservation efforts will help revive vulture populations and ensure a stronger future for these important birds. With C. Prarthana, Madhuri Pange, Akashwani News, Mumbai.
3: The National Board of Examinations in Medical Sciences has successfully conducted the NEET PG 2026 examination for the affected candidates of the ION Digital Zone Sitapura Test Center in Jaipur. In a social media post, Ministry of Health and Family Welfare said that the examination was held across five test centers in Jaipur in a secure, fair and transparent manner and concluded smoothly yesterday. The government has debunked a video circulated by several social media accounts claiming that the runway at the Indira Gandhi International Airport of Delhi is submerged in rainwater. The fact-checked unit of the Press Information Bureau said that the claim is fake and the video is from April 2024 when Dubai Airport experienced rare heavy rainstorms causing planes to struggle to navigate through flood water. The naval force of Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps has claimed that it carried out strikes against three oil tankers traveling through what it described as an unauthorized route in the strategic Strait of Hormuz, as well as three vessels allegedly affiliated with the United States. The development came after the United States reportedly struck three Iranian oil tankers in the Persian Gulf and the Sea of Oman. In women's cricket, India defeated Pakistan by 7 wickets in a one-sided Women's Asia Cup T20 match in Dubai. Pakistan were bowled out for just 55 in 18.1 overs, their lowest ever total in T20 internationals. Young spinners Sri Charani and Prema Rawat took 3 wickets each, while Deepthi Sharma claimed 2. India chased down the target in 8.4 overs, with captain Harmanpreet Kaur remaining unbeaten on 18. The match also marked Harmanpreet's 150th T20 international as India's captain, making her the first international captain, male or female, to reach the milestone. India have now won 7 of the 8 T20 Asia Cup meetings against Pakistan. In badminton, India's Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty have entered the China Masters final for the third time. The world number 5 pair defeated Malaysia's Noor Mohammad Azrin Ayub and Tan Wee Kyong 21-15, 18-21, 21-11 in the semi-final. The Asian Games champions will face China's He Jingting and Ren Zhangyu in the final today as they look to clinch their second title of the season. The India Meteorological Department has forecast heavy rainfall over Bihar, East Rajasthan, Haryana, Chandigarh, Delhi, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Uttarakhand and parts of northeastern states for today. And now for a look at today's newspapers, it's over to Shagun Chopra.
10: Thank you, Nishit. News of Prime Minister Modi lauding 7.8% GDP growth, slamming critics, betting on Gen Z in his address at Delhi University's SRCC centenary celebrations is carried prominently by all the dailies. Census to begin early in 4 poll-bound states of UP, Punjab, Goa and Uttarakhand is the top story in Hindustan Times. CBI books Subhash Chandran LIC Housing Finance Loan Fraud Case by Sunday Pioneer. Rajya Sabha MP Dinesh Sharma named Andaman and Nicobar Islands Lieutenant Governor according to a report in the Sunday Tribune. Putin Zelensky to hold strikes, US envoys in Moscow for talks to end war is the front page story in the Asian Age. And finally, Maruti Suzuki launches new Baleno at base price of 6.09 lakhs, says a report in Financial Express. And with that, it's back to you, Nishit.
3: Thank you, Shagun. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi addresses centenary celebrations of Sri Ram College of Commerce at Delhi University, calls upon young Indians to build global consulting, accounting, financial and legal firms capable of leading the world. BJP Rajya Sabha MP Dinesh Sharma appointed Lieutenant Governor of Andaman and Nicobar Islands. NIA Special Court convicts 10 Maoists in 2013 Chhattisgarh Jhiram massacre case. IBRICS Summit to be held in New Delhi on the sidelines of BRICS Summit on the 12th and 13th of this month. Over 500 institutional investors, finance ministers and business leaders participate in the two-day event. And in cricket, India beat Pakistan by 7 wickets in the Women's T20 Asia Cup match in Dubai. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
11: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे इस छोटे से अंतराल के बाद। वेक्टर जनित रोग, मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, कालाजार और जापानीज इंसेफेलाइटिस से बचाव के लिए मच्छरों से अपना बचाव करें। अपने घर के आसपास सफाई रखें, जल जमाव न होने दें, पानी के बर्तनों को ढक कर रखें, पूरे आस्तीन के कपड़े पहने और हमेशा मच्छरदानी के अंदर सोएं।
12: बुखार होने पर ओझागुनी के पास ना जाएं, अपने गांव की सहिया को बताएं या नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, मुफ्त जांच और उपचार कराएं।
11: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
13: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। झारखंड सरकार के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू का दिल का दौरा पड़ने से हुआ आकस्मिक निधन, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने जताया शोक। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि मतदाता 15 सितंबर तक मतदाता सूची में करा सकते हैं संशोधन। SIR के तहत तैयार मतदाता सूची को रखा जाएगा स्थायी अभिलेख के रूप में। रांची नगर निगम ने सामुदायिक भवनों की ऑनलाइन बुकिंग की शुरू। पहले चरण में जोड़ा गया 5 भवनों को। रांची मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा राज्य के 16 जिलों में आज बादल छाए रहने और बारिश का अलर्ट किया गया। और शहीद एतवा उरांव फुटबॉल टूर्नामेंट में SK ब्रदर्स ने जय मसीह गिरजा टोली लोयो को ट्राईबेकर में 5-3 से हराकर खिताब किया अपने नाम। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड सरकार के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू का दिल का दौरा पड़ने से गिरिडीह के मर्सी अस्पताल में निधन हो गया। मंत्री के निधन की खबर से गिरिडीह समेत पूरे झारखंड में शोक की लहर है और बड़ी संख्या में समर्थक, पार्टी कार्यकर्ता तथा शुभचिंतक अस्पताल पहुंच रहे हैं। झामुमो जिला अध्यक्ष संजय कुमार सिंह के अनुसार मंत्री के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए पहले झामुमो जिला कार्यालय और फिर उत्सव उपवन में रखा जाएगा। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुदिव्य कुमार सोनू के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने उनके निधन को व्यक्तिगत क्षति बताया है। गिरिडीह में राजकीय सम्मान के साथ राज्य के शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू का अंतिम संस्कार किया जाएगा। गिरिडीह DC रामनिवास यादव ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा इसकी तैयारी की जा रही है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसमें शामिल होंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6, नाम स्थानांतरण और विवरण सुधार के लिए फॉर्म 8 तथा आपत्ति या नाम विलोपन के लिए फॉर्म 7 जमा करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2026 है। उन्होंने साहिबगंज के बरहड़वा में सभी पात्र भारतीय नागरिकों से अपील की है कि वे समय से फॉर्म अवश्य जमा करें।
14: जो है 15 सितंबर सबको आवेदन देने के लिए अंतिम तिथि है। किसी का नाम SAR में दर्ज करना है, या तो किसी के ऊपर में आपत्ति है, आपका बूथ में परिवर्तन चाहिए, आपका नाम में कोई परिवर्तन चाहिए, कुछ सुधार करना है, आपका फॉर्म 8 भराना है। फॉर्म 6, 7, 8 जरूर भरा दीजिए ताकि रोल में नाम आना बहुत महत्वपूर्ण है।
13: गिरिडीह के बगोदर में चल रहे मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य पर भाकपा माले के पूर्व विधायक विनोद कुमार सिंह ने कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने जिला निर्वाचन पदाधिकारी और राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मांग की है कि मतदाताओं की सुविधा के लिए सत्यापन कैंप प्रखंड कार्यालय के बजाय उनके संबंधित पंचायतों में ही आयोजित किए जाएं। वहीं गिरिडीह DC रामनिवास यादव ने सरिया में BLO के साथ बैठक कर सभी पात्र मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने का निर्देश दिया है।
15: 18 वर्ष जिनका उम्र अधिक हो गया है 1 अक्टूबर 2026 को, उन सभी का हम लोग फॉर्म 6 मंगवा रहे हैं। उनको आ रही कुछ भी समस्या, प्रॉब्लम, अड़चन को दूर करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ SIR का भी हम लोगों ने यहाँ देखा, नोटिस और क्लेम ऑब्जेक्शन का टाइम पीरियड चल रहा है, सुनवाई पंचायत वार चल रही है, सभी लोग एडिशनल AR लोग कर रहा है, उसमें क्या समस्या आ रही है, डॉक्यूमेंट्स बनाने में क्या दिक्कत आ रही है, उसकी भी हम लोगों ने सुना।
13: राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने अल्बर्ट एक्का चौक पर श्री कृष्ण जन्मोत्सव समिति द्वारा आयोजित श्री कृष्ण जन्माष्टमी समारोह में श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भगवान श्री कृष्ण का जीवन आस्था, कर्मयोग और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष की प्रेरणा देता है। उन्होंने दही हांडी प्रतियोगिता को टीम भावना, सहयोग और संतुलन का प्रतीक बताते हुए कहा कि ऐसे आयोजन युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व और आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। रांची नगर निगम ने नागरिकों की सुविधा के लिए सामुदायिक भवनों की ऑनलाइन बुकिंग शुरू की है, जिसके तहत पहले चरण में 5 भवनों को जोड़ा गया है। आज से बुकिंग शुरू होगी। शहर के इंदिरा गांधी चौक, ईस्ट जेल रोड, न्यू पुंदाग, इलासिया कम्युनिटी हॉल और ग्वाला टोली स्थित भवनों को स्वर्ण रेखा और पलाश श्रेणी में बांटकर क्रमशः 25,000 रुपये और 15,000 रुपये GST के साथ बुकिंग दर तय की गई है। साथ में 5,000 रुपये रिफंडेबल सिक्योरिटी जमा होगी। नागरिक नगर निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर बुकिंग कर सकते

0: सकते हैं। नगर आयुक्त ने कहा कि जल्द ही शेष 11 भवनों को भी इस प्रणाली से जोड़ा जाएगा। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑन इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को सेवा संकल्प अभियान के रूप में मनाने की तैयारी कर रहे हैं। इस संबंध में बुंडू में जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक एक महीने तक चलने वाले इस अभियान के दौरान विभिन्न सामाजिक और जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
1: आगामी 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक एक महीना सेवा संकल्प अभियान कार्यक्रम चला, इसके लिए कार्यकर्ता के बीच एक कार्यशाला था, क्या क्या कार्यक्रम है उन सारे चीजों के बारे में, ताकि कार्यक्रम जन जन तक पहुँच सके।
0: राज्य में जेपीएससी और जेएसएससी की विभिन्न परीक्षाओं में कथित अनियमितता, पेपर लीक, ओएमआर लीक, लेन देन और सेटिंग के आरोपों को लेकर आंदोलन करने वाले छात्रों पर दर्ज प्राथमिकी वापस लेने की मांग के संबंध में कल मुख्यमंत्री सचिवालय में एक ज्ञापन सौंपा गया। इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से छात्रों पर दर्ज मामलों को तत्काल रद्द करने और आंदोलन के दौरान छात्रों के साथ कथित मारपीट करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में गड़बड़ी दूर कराने और भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो ने कल सिमडेगा के बानों में छात्रों से मुलाकात की और कहा कि सरकार भर्ती व्यवस्था में सुधार करे।
2: 24 जिला का 24 संकल है जिसमें एक आवाज है भर्ती व्यवस्था में सुधार, एक आवाज है पैरवी से नहीं संघर्ष से नौकरी, पहचान से नहीं योग्यता से नौकरी। ये नहीं होगा तो झारखंड का आत्मा बिक रहा है, झारखंड चौपट हो जाएगा। इसलिए हम अपील करते हैं सिमडेगा वासियों, आप लोग इस मुहिम से जुड़िए, इस आंदोलन से जुड़िए। इस व्यवस्था से घर घर के लोग तबाह है, घर घर के लोग परेशान है।
0: झारखंड में मानसून का असर लगातार बदल रहा है। आज और कल झारखंड के कई जिलों में बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आज रांची, देवघर, बोकारो और रामगढ़ समेत 16 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। शहीद एतवा उरांव स्मारक न्यास द्वारा रांची में आयोजित फुटबॉल टूर्नामेंट 2026 के फाइनल में एसके ब्रदर्स ने जय मसीह गिरिजा टोली लोयो को ट्राई बेकर में 5-3 से हराकर खिताब अपने नाम किया। इस प्रतियोगिता का कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने उद्घाटन किया। विजेता एसके ब्रदर्स को मुखिया सोहंती एक्का ने 80,000 रूपये नकद व ट्रॉफी और उप विजेता जय मसीह गिरिजा टोली लोयो को विमला देवी ने 50,000 रूपये नकद व ट्रॉफी देकर सम्मान किया। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित अधिकांश अखबारों ने अलग अलग खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने रांची में आयोजित श्रीकृष्ण जन्माष्टमी समिति का आयोजित दही हांडी प्रतियोगिता की खबर को सचित्र प्रकाशित किया है। प्रभात खबर की सुर्खी है, जीएसटी संग्रह में देश से आगे झारखंड, फिर भी राज्य को नुकसान। दैनिक जागरण का शीर्षक है जेएनजी से बोले पीएम, बड़े सपने देखें और उन्हें पूरा करने में जान लगा दें। और हिंदुस्तान ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड सरकार के नगर विकास मंत्री सुदेव्य कुमार सोनू का दिल का दौरा पड़ने से हुआ आकस्मिक निधन, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने जताया शोक। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा, मतदाता 15 सितंबर तक मतदाता सूची में करा सकते हैं संशोधन। एसआईआर के तहत तैयार मतदाता सूची को रखा जाएगा स्थायी अभिलेख के रूप में। रांची नगर निगम ने सामुदायिक भवनों की ऑनलाइन बुकिंग की शुरू, पहले चरण में जोड़ा गया है 5 भवनों को। रांची मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा राज्य के 16 जिलों में आज बादल छाए रहने और बारिश का अलर्ट किया गया। और शहीद इतवाउराव फुटबॉल टूर्नामेंट में एसके ब्रदर्स ने जय मसीह गिरिजा टोली लोयो को ट्राई बेकर में 5-3 से हराकर खिताब किया अपने नाम। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

ध्वनि तरंगों की ताल पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र, और अब हम लेकर आए हैं माटी की महक। आइए सुने हो लोकगीत कलाकार बाबूराम सोए और साथियों से।

माटी की महक का आप सुन रहे थे। ये कार्यक्रम जो कि प्रतिदिन प्रसारित होता है, और इस दैनिक कार्यक्रम में आज के कलाकार थे बाबूराम सोए और साथी।

ध्वनि तरंगों की ताल पर इस समय आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के का चाईबासा केंद्र, और अब वक्त हो चला है कार्यक्रम विविधा का, जिसमें सबसे पहले आइए रोशनी डालते चलें आज के दिवस पर। आज भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है, जो शाम 7:29 तक रहेगी। इसके बाद आज एकादशी तिथि भी शुरू हो जाएगी, जिसका उदय अगले दिन। आज रविवार का दिन है, जो हिंदू धर्म में भगवान सूर्य देव की उपासना के लिए शुभ माना जाता है।

महान खोजकर्ता फर्डिनेंड मैगलन के जहाजी बेड़े का एकमात्र बचा हुआ जहाज विक्टोरिया आज ही के दिन स्पेन लौटा था। इसके साथ ही इंसानी इतिहास में पहली बार समुद्री मार्ग से समूची पृथ्वी का चक्कर लगाने का जो सफर है आज ही पूरा हुआ था। महान ब्रिटिश वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने आज ही के दिन विभिन्न तत्वों के परमाणुओं को दर्शाने के लिए प्रतीकों का उपयोग शुरू किया था, जिससे रसायन जो विधा है उसकी दिशा ही बदल गई। 1870 में आज ही के दिन अमेरिका के वायोमिंग राज्य में लुइसाइन स्वैन के कानूनन पहला वोट डालने वाली महिला बनकर इतिहास रचा था। श्रोताओं, आज ही के दिन सन 1889 में भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बड़े भाई शरद चंद्र बोस का जन्म और यश जौहर आज ही के दिन 1929 में भारतीय सिनेमा के दिग्गज फिल्म निर्माता और धर्मा प्रोडक्शन के संस्थापक यश जौहर का जो जन्मदिन है वो आज ही है। और हम आपको बताते चलें कि आज जो शगल है पढ़ने का वो कम होता जा रहा है। दुनिया जो है स्क्रॉल करती जा रही है, मोबाइल सबके हाथों में है और कभी स्नैपचैट तो कभी इंस्टाग्राम तो कभी फेसबुक कभी व्हाट्सएप, ये जो वैश्विक दुनिया है डिजिटल माध्यम से पैसों का आदान प्रदान हो रहा है UPI के माध्यम से। इस जो दुनिया है जो आभासी दुनिया के दुनिया मतलब उनका जो नाम दिया गया है वो है आभासी दुनिया, तो इस आभासी दुनिया के मायाजाल में आज का दिन जो है मील का पत्थर है, क्योंकि आज जो है वो किताब पढ़ने का दिन है। जी हाँ, नेशनल रीड अ बुक डे, हर दिन एक किताब पढ़ें। आज लोगों को सोशल मीडिया से दूरी बनाकर कम से कम एक किताब पढ़ने या उसके कुछ पन्ने पलटने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

हमने समझा था बस एक ही तूफान आया है। क्या खबर थी कि अभी कई तूफान और भी हैं। एक जख्म मिला तो हमने उसे किस्सा बना डाला। शहर में दर्द के कई मेहरबान और भी हैं।

करवटें बदलते रहे सारी रात हम, नींद आँखों से जाने कहाँ रूठ गई। चांद खिड़की से चुपचाप देखता रहा और तन्हाई दिल में उतरती गई। कुछ पुरानी सी यादें थीं तकिए तले, कुछ अधूरी सी बातें थीं होठों पर, जिन्हें कहना भी चाहा मगर कह न सके। यही बातें, वही बातें, वही बातें बनी रात की हम सफर। तेरी आहट का वहम दरवाजे तक ले गया, हर दस्तक पे दिल ने कहा तू आया होगा, मगर खुला तो वहां सिर्फ खामोशियां थी और लगता था जैसे कोई मुस्कुराया होगा। तमाम रात चांद से तेरा पता पूछते रहे, तमाम रात खुद ही भी गुप्तगू करते रहे। सुबह हुई तो आंखें थी नम, दिल था खामोश और हम थे कि फिर भी तेरा नाम लेते रहे। करवटें बदलते रहे तमाम रात, एक नगमे के पीछे, एक याद के पीछे, एक ऐसे ख्वाब के पीछे जो मुकम्मल न हो सका। सिंह तेरी कलम भी उसी ख्वाब के पीछे रही।

कर्तव्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं, सत्य से बढ़कर कोई कर्म नहीं, निष्काम कर्म ही जीवन की पहचान है, यही गीता का सबसे सरल ज्ञान है। न युद्ध से भागो, न भय से हारो, अपने धर्म के पथ पर अडिग रहो। जीत मिले तो विनम्र रहना, हार मिले तो फिर से खड़े रहना। सिंह ने जब गीता का संदेश समझ लिया, जीवन के हर प्रश्न का उत्तर पा लिया। उस फल की नहीं केवल कर्म की आस है, यही कृष्ण का ज्ञान, यही जीवन का प्रकाश है।

6 सितंबर। महज कोई तारीख भर नहीं, इतिहास की धड़कन है। जो बीत गया उसकी याद भी और आने वाले कल की सीख भी। सन 1965 में जब सीमा पर संकट गहराया था, लाहौर के मोर्चे पर भारतीय सैनिकों ने साहस का परचम लहराया था। रात के सन्नाटे को चीर कर जब सैनिक आगे बढ़े थे, माटी की रक्षा की खातिर अनगिनत सीने अडिग खड़े थे। वह 6 सितंबर याद दिलाता है, देश सिर्फ नक्शे की लकीर नहीं, उसकी रक्षा में लगी हर सांस भारत माँ की तस्वीर सही।

उसने कहा था मेरा इंतज़ार मत करना, और मैं उसके जाने के बाद से हर शाम को दरवाज़े पर टांग आया हूँ शाम को दरवाज़े पर टांग आया हूँ उसने कहा था मैं लौट कर नहीं आऊँगी। मैंने सुना तो था, मगर दिल ने उसकी आवाज़ में लौट आने की आहट सुन ली थी। वो गई तो कुछ भी साथ नहीं ले गई, न कोई तस्वीर, न कोई ख़त, न कोई निशानी, बस मेरी नींद अब और अपने साथ ले गई। अब रातें बहुत लंबी होती हैं और सुबह उसकी खामोशी से भीगा मिलता है। कभी कभी लगता है वो यहीं कहीं है, हवा के किसी कोने में, चाय की ठंडी प्याली में, या उस पुराने गीत में जिसे सुनते ही दिल अचानक उदास हो जाता है। उसने कहा था भूल जाना मुझे, अजीब बात थी, उसे मालूम नहीं था कि कुछ लोग भुलाए नहीं जाते, बस उम्र भर उसके बिना जीना सीख जाते हैं। सिंह अब उससे क्या शिकायत करें, उसने तो बस एक बात कही थी, हम ही थे जो उसे जिंदगी समझ बैठे। उसने कहा था

सिफर को खाली समझने की भूल मत करना। ऐसी खामोश बिंदु से तो हर हिसाब शुरू होता है। एक तरफ दुनिया की सारी दौलत और दूसरी एक सिफर, और वक्त हंसकर कहता है आखिर में सब बराबर। नाम, शोहरत, रिश्ते, रुतबे सब अपनी अपनी गठरी लेकर आए, मगर लौटते वक्त हाथ वही रही खाली। सिफर में रात भी है, सिफर में सुबह भी, सिफर में खोना भी और पाने की वजह भी। जिसे तुम शून्य कहते हो वहीं अनगिनत संभावनाएं पलती हैं। एक बीज भी तो मिट्टी में जाकर सिफर होता है, तभी जंगल बनता है। मैंने जब खुद को घटाया तो दुनिया बढ़ती चली गई। अहंकार का आखिरी अंक मिटा तो जिंदगी का असली अर्थ मिला। अब न जोड़ने की जल्दी है न घटाने का कोई गम। सिफर में अब सब समाहित हैं और सिफर में ही समूचा संसार।

बहुत जज़्ब करके टोका, मगर वह रुक नहीं पाया। मेरी आँखों ने समझाया, मगर वह झुक नहीं पाया। मैंने आवाज़ में अपनी कई मौसम समेटे थे, वो अपने फैसलों से एक कदम भी हट नहीं पाया। तो रीडर्स डे पर अगली कविता का करें इंतज़ार।

मन कहाँ होता है, ये है आज की आखिरी कविता। मन कहाँ होता है, माथे में, दिल में या आँखों के पीछे किसी अनदेखे कोने में। कहा किसी ने, आज्ञा चक्र में बैठा है मन, भौहों के बीच जहाँ विचारों की नदी बहती है। पर मेरा मन कहता है कि नहीं, मैं वहाँ नहीं हूँ जहाँ तुम मुझे ढूंढ रहे हो। मैं तो कभी किसी की आवाज़ में मिलता हूँ, कभी किसी पुरानी याद में, कभी बिना वजह आँखों में उतर आता हूँ। कभी गर्दन झुका देता हूँ, कभी आसमान दिखाता हूँ, कभी एक ही पल में 100 दिशाओं में भटक जाता हूँ। शायद मन कोई जगह नहीं, एक सफर है जो शरीर में रहते हुए भी हर पल कहीं और चला जाता है। और जब सब कुछ थम जाता है तब भीतर से आवाज़ आती है, मुझे ढूंढना हो तो अपने भीतर उतरना, मैं वहीं हूँ जहाँ मैं नहीं रहता।

0: और आवाज की दुनिया के दोस्तों, अब कार्यक्रम में विविधा में आपको मिलवाते हैं संतोष मुंडा जी से, और इनसे मंजू बोत्रा की गई भेंट वार्ता जो है उसका विषय है आयुर्वेद का महत्व। तो आइए सुने।
1: बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार।
2: हाँ नमस्कार आपको भी मैडम, मुझ सबको जो है।
1: तो मैं चाहूँगी आप अपना परिचय खुद दें।
2: जी मेरा नाम है संतोष मुंडा और मैं आबू जैसी रे रानू केंद्र चलाते हैं, रोगियों का उपचार का काम करता हूँ।
1: यानी आप ये आयुर्वेदिक चिकित्सा से जुड़े हुए हैं
2: जी।
1: ये आपने कहाँ से सीखा?
2: मैंने ये सीखा तो हमारा दादू ही है, लेकिन इसका कोर्स मैंने बिहार राजकीय आयुर्वेदिक केंद्र से मैंने ट्रेनिंग लिया इनका।
1: अच्छा, तो ये पूर्ण रूप से आप चिकित्सा में कब से जुड़े हैं?
2: मैं पूर्ण रूप से हो गया, मैं कम से कम 5 साल हो जाएगा मैम।
1: तो ये मैं जानना चाहूँ कि ये आयुर्वेदिक चिकित्सा जो है ये क्या है, आप इसके बारे में बतला दें हमारे श्रोताओं को।
2: जी मैं सबको ये बताना चाहूँगा, आयुर्वेद एक आयु सीमा को बढ़ाने वाला, जो कि प्रॉपरली इसमें ना केमिकल ना कुछ, पेड़ पौधा जिसमें भगवान का सृष्टि है, समयों से जो है ना ये आयुर्वेद चीज जो है ना चलते हुए आ रहा है, ये जड़ी बूटी जो हमारा गांव देहात के लोग इसे उपचार होते हैं। जी
1: तो इस उपचार के अंतर्गत आप के पास जो मरीज आते हैं हमारे क्षेत्र में
2: जी, हमारा पास उपचार ये होता है मैम, जैसे कि उसको हम लोग दवा के रूप में कूटते हैं और बनाते हैं। काफी नासेस का प्रॉब्लम हो गया तो जैसे पूर्वजों ने जो है पत्ता को लेके थोड़ा सा तेल में बना लेते, उससे मालिश करने से हमारा नस जो बंद हुआ वो जल जाता है। हमारा हड्डियां जोड़ों में जो दर्द होता है उनको मालिश से एक बहुत बड़ा सेवा है, दवा से भी बढ़कर है, तुरंत काम करता है। और काफी मरीजों को हम लोग मालिश करके भी ठीक करते, जोड़ों को बैठाते भी हूँ और हड्डी के लिए उनको भी जोड़ते हैं। कहने का मतलब ये हमारा प्राकृतिक चीज में बहुत सारा पेड़ पौधा में ताकत है, उसी से किया जाता है।
1: तो ये जो तेल आप लोग बनाते हैं मालिश के लिए वो कहाँ से लाते हैं?
2: जी ये जंगलों में जाते हैं, हमारा यहाँ जंगल आसपास के हैं, काफी जंगल में ही सब मिलता है, क्योंकि आसपास में तो आजकल काफी खदाने हो गए हैं, सब कोड़ काड़ के फेंक देते हैं, जानकारी नहीं है, तो काफी जंगल में जा करके उसको खोजना पड़ता है।
1: तो आप लोग कहाँ से खोजते हैं, खरीदते हैं?
2: जी कुछ बाहर से आता है मैम, जैसे कुछ हिमालय में होता है, कुछ जैसे एक ऐसे साधारण से नमक बोले तो सेंधा नमक हमारा आयुर्वेद में बहुत उपयोग होता है, जैसे कुछ चीज पाकिस्तान से आता है तो कुछ बाहर से आते हैं, हिमालय से आते हैं, ऋषिकेश जंगल से आता है, कुछ तो सरना से हम लोग, तो अलग अलग प्रांतों में अलग अलग जड़ी बूटी मिलती है।
1: तो आप कहाँ से व्यवस्था करते हैं ये जड़ी बूटियाँ?
2: मैं अधिकतम सिमरीपाट से हमारा आता है, बंदगांव के जंगल से आता है, इधर हमारा सरंडा साली, तो सरंडा में काफी खदान हो गया, तो मिट्टी के कारण पत्ता में उतना जो भी उनमें ताकत होना चाहिए वो सब नहीं है, तो काफी हम लोग जिधर खदान नहीं हुआ है वो जंगलों में घना जंगलों से लाते हैं।
1: तो आपके पास अभी जो है और भी कर्मचारी होंगे तो आपको इस काम में मदद करते हैं?
2: जी काफी कर्मचारी लोग हैं, क्योंकि अकेले से नहीं होगा, कूटना पड़ता है, हाथों से पीसना पड़ता है, तभी सब तैयार होता है। जी
1: तो ये जो चिकित्सा का कार्य कर रहे हैं आप लगभग 5 साल से कर रहे हैं ना?
2: जी जी।
1: तो यहाँ पर जो आपके यहाँ आते हैं हमारे क्षेत्र में मरीज, प्राय किस तरह के आते हैं? मालिश के लिए तो आते हैं ये हाथ पैर जोड़ दर्द वाले, और इसके अलावा और किस तरह से मरीज आते हैं?
2: अभी जी अभी के समय में मैडम हम लोग देखेंगे समाज में, और या कम उम्र में शादी या शादी, अब जब कोरोना के बाद काल से निसंतान दंपति बहुत आते हैं, जिनका संतान ही नहीं होता है। अगर संतान नहीं है तो ये हमारा समाज में बहुत दुख की भी एक बात है। तो काफी लोगों ने काफी बार कहीं पर चिकित्सा होने के बाद भी एलोपैथिक में भी लोग निराशा हो जाते हैं, तो वो मुझे लगता है कि कोरोना काल के बाद से आज के समय में निसंतान और कमर दर्द जोड़ दर्द तो आम चीज हो गया। जैसे नासे संबंधित अभी बहुत ज्यादा आ रहे हैं, कम उम्र में भी जैसे लोग 15 साल 18 साल हो रहा है उनका नस काम नहीं कर रहा, हड्डी में दर्द कर रहा है। ये अभी का जनरेशन जैसे हम लोग कोई भी चीज रासायनिक ज्यादा सेवन करने से, और भी बहुत सारा चीज है आमतौर पर सभी लोग हम लोग जानते हैं।
1: तो ये जो निसंतान आते हैं आप तो उनका भी इलाज करते हैं?
2: जी, ये हमारा प्राकृतिक इलाज भी होता है, इनका भी अच्छा उपचार है। हमारा वहाँ से करीब करीब 150 लोग, ये आम चीज है कि मेरा जो काम कर्मचारी लोग है उन्हीं का ही काफी लोग है, 4 जन करीब है, यहीं से हम लोग का दावा से हुआ है। लोग करीब किनका 12 साल, किनका 15 साल, किनका 25 साल, जिनका कोई कभी होगा ही नहीं बोल के, ये सब बात भगवान का भी आशीर्वाद है और जितना हमारा जड़ी बूटी में सब पावर है। जी,
1: आपने इस तरह का ये इलाज किया?
2: जी जी, हमारा चाईबासा में मैम काफी जगह टुंगरी एरिया में भी देखे, जहाँ पर कि बड़े बड़े चिकित्सक लोग बोलता है कि आप तो अब तक कभी संतान नहीं होगा, लोग निराश ऐसे अनेक लोग मॉल से आसपास में अनेक लोगों का हुआ। ही हमारा चाईबासा खास करके जिकपानी प्रखंड में बोला जाए हमारा चाईबासा एरिया में सबसे ज्यादा है। जी,
1: आप किस तरह से मतलब जांच करते हैं इनका?
2: जी, हमारा पास पेशाब पानी जो यूरिन का माध्यम से हम लोग देखते हैं, अगर कहीं डॉक्टर रिपोर्ट है, कहीं डॉक्टर के घर वालों गए हैं तो उनका रिपोर्ट के अनुसार कहीं पर सिटी स्कैन अल्ट्रासाउंड जो भी हमारा हॉस्पिटल में होता है उनके ये सभी सारा चीज देखते हैं, जिनका महिला में प्रॉब्लम है या पुरुष में प्रॉब्लम है, उनका कमियां को महिलाओं में या उनका पुरुष में कमी है तो उनका हम लोग करते हैं उपचार के हिसाब से।
1: और मान लीजिए किसी ने मतलब कभी जांच करवाया ही नहीं कहीं किसी डॉक्टर से, उनके पास जो रिपोर्ट नहीं है, तो आप उसका इलाज कर सकते
2: हैं? हाँ, पेशाब पानी का माध्यम से हम लोग देखते हैं जो हमारा पूर्वजों से चलते हुए आ रहा है, और उनसे बातचीत भी करेंगे क्या प्रॉब्लम, क्या समस्या होता है, आजकल आम चीज हो गया या पीरियड्स में का तकलीफ होता है या व्हाइट या तो सफेद पानी जाता है, ये सब सारा चीज उपचार करने के बाद और रोगी निरोगी रह करके और जरूर उनका प्राप्ति होता है।
1: अभी तकलीफ हुआ है। मैं एक बात जानना चाहूँगी, हर काम में देखिए कुछ ना कुछ समस्याएं होती है, और कभी कभी होता है कोई कोई काम करने में बहुत अच्छा लगता है, अपना एक उपलब्धि महसूस होती है ना। तो आपने अभी तक जो 5 साल से आप इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप चिकित्सा कर रहे हैं, बहुत से लोगों का इलाज कर रहे हैं, तो इसमें आपको कभी ऐसा हुआ होगा कि बहुत ही मुश्किल हुई होगी या फिर बहुत ही अच्छा लगा, अपना एक उपलब्धि महसूस हुई होगी, ऐसा कोई है?
2: जी हाँ मैम, शुरू में बहुत ही तकलीफ हुआ इसके बारे में, एक दावा से मिलाना, लोगों तक पहुंचाना, उसको बनाने में या कई जंगलों से खुद मैंने बागाविला जंगल से मैंने खुद जाता था, फिर सिमड़ी पड़ जाता था सरंडा से कलेक्ट करके, शुरुआत में बहुत कठिनाई हुआ और इसको बहुत ही संघर्ष को बयान नहीं किया जाता है। उन समय में ना दिन ना रात ऐसे जाते थे, और मेरा शुरू से भी था कि लोगों का बीच में कुछ सेवा में, आज हम अगर बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं उनके बारे में हम बोलना नहीं चाहेंगे, काफी लोग जो है ना पैसा खाते।
0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे आयुर्वेद का महत्व, इस पर संतोष मुंडा की भेंट वार्ता।

रस रंजन। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत और करवाते हैं आपका मनोरंजन। ये है फिल्म आशा का नगमा, लता मंगेशकर की आवाज़ में।

आज राष्ट्रीय पुस्तक पठन दिवस पर अगला नगमा, किताब खोलो तो कमरे में रोशनी उतर आई, जैसे खिड़की से कोई धूप चुपके से चली आई। एक पन्ने पर बचपन बैठा मुस्कुरा रहा था, दूसरे पर कोई बूढ़ा अपना घर बना रहा था। शामीन, यह है फिर आशिकी 2 का नगमा, अंकित तिवारी की आवाज़ में है।

अंगत, जैसे प्यार खुद सारे सुरों में ढल गया हो। तो ज़रा ठहरिए, दिल की धड़कनों को कुछ पल इस नगमे के हवाले कीजिए और खो जाइए उस दौर में जहाँ मोहब्बत इजहार से पहले आँखों में उतरती थी, फिल्म आराधना से रूप तेरा मस्ताना। लीजिए सुनते हैं मोहब्बत में डूबा हुआ सदाबहार नगमा।

कुछ गीत होते हैं जो कानों में, कानों से होकर दिल तक नहीं जाते, जो सीधे दिल की धड़कनों पर दस्तक देते हैं। आज का नगमा भी कुछ ऐसा ही है, थोड़ी शोखी, थोड़ी मस्ती और मोहब्बत का वो अंदाज जिसमें कदम ठहरते नहीं, थिरकने लगते हैं। ज़िंदगी ने अगर आज आपके चेहरे से मुस्कान उधार ले रखी है तो ज़रा उसे वापस मांग लीजिए। फिल्म आवारापन से सुजैन डिमेलो की आवाज़, माहिया, फिल्म आवारापन।

कार्यक्रम की रसरंजन कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं ये नगमा। फिल्म का नाम है दलाल।

ये आकाशवाणी चाईबासा है। पूर्वान्न के 10 बज चुके हैं और पेश है आज का फिल्म संगीत का हमारा ये कार्यक्रम।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं मिश्रित गीत। शामिन, जिंदगी हर रोज नया इम्तिहान देती है, कभी हंस आती है, कभी दर्द की पहचान देती है, कभी रास्ते रोक कर पूछती है थक गए क्या। मैं मुस्कुरा कर कहता हूँ अभी तो जान बाकी है, गिरने का डर हो तो सफ़र कैसे होगा, ठोकरों के बिना आदमी बेहतर कैसे होगा। जो रात से डरकर उजालों में छुप जाते हैं वो सूरज निकलने का हुनर कहाँ पाते हैं।

आज के फिल्म संगीत में मिश्रित गीत के रूप में ये रही आज की आखिरी पेशकश।

से ध्वनि तरंगों की ताल पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का चाईवासा केंद्र एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। अगला प्रसारण कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र के कार्यक्रम।

0: मेरे साथ है
1: सीमा।
0: तो कहीं मत जाइएगा, अगर आप काम कर रहे हैं तो रेडियो सुनते रहिए, हमारे साथ बने रहिए और थोड़ी सी बातें हम कर लेते हैं। सीमा,
1: पहले ये बताइए सुनीता, आज आप इतनी स्पेशल क्यों लग रही हैं मुझे?
0: आज क्या है सीमा?
1: आज है संडे, इतवार का दिन है।
0: संडे यानी फंडे, तो संडे का जो दिन होता है ना, तो आदमी रिलैक्स मोड में रहता है कि चलो आज संडे है। ये बात और है कि हम संडे भी अपने श्रोताओं के साथ बातें करते हैं, बहुत सारे उनको गाने सुनवाते हैं, लेकिन जो संडे का दिन है वो कामकाजी जो लोग हैं, जो वर्किंग है, उनके लिए थोड़ा आराम का दिन होता है, उनकी नींद पूरी होती है आज। और जब वो बाहर निकलते हैं ना आपकी तरह, जैसे आप अभी आ रही हैं, तो बन ठन कर निकलते हैं,

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: HIV एक विषाणु है जिसका संक्रमण HIV संक्रमित रक्त के उपयोग, संक्रमित नीडल या सीरिंज के उपयोग, संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कंडोम के यौन संबंध बनाने या संक्रमित गर्भवती माँ से उसके नवजात शिशु को हो सकता है। HIV एड्स की जानकारी के लिए नाको टोल फ्री नंबर 1-0907 पर संपर्क करें या नाको एड्स ऐप डाउनलोड करें। झारखंड राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: जोहार रांची कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है और इस कार्यक्रम में आज आपके साथ हैं सीमा और सुनीता, जो कि बहुत सारी बातें लेकर आई हैं। तो चलिए सीमा, देने करते हैं, शुरू करते हैं।
4: वैसे सुनीता, हमारा जो शहर है ना, एजुकेशन का, स्कूल्स का, टीचर्स का शहर है रांची।
3: बिल्कुल।
4: और कल तो काफी रौनक थी स्कूल्स में भी, सड़कों पर भी। स्टूडेंट्स अपने अपने टीचर्स के लिए प्रोग्राम प्रेजेंट कर रहे थे, प्रिंसिपल्स ने भी अपने टीचर्स को स्पेशल फील कराया। लेकिन कुछ बातें हैं जो मुझे आपसे और अपने श्रोताओं से करने का मन है।
3: सीमा देखिए, बातें बहुत सारी होती हैं और बातों को शेयर कर दिया जाए तो अच्छी बातें निकल कर सामने आती हैं। और बात हो रही है शिक्षा की, तो शिक्षा ऐसा क्षेत्र है जिस पर बात करने के लिए हम तो हमेशा तैयार रहते हैं। तो बताइए क्या कंसर्न है आपका।
4: देखिए, आज भी टीचर्स का ये कंसर्न है। अगर आप उनसे बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब बच्चों से पूछा जाता है कि आपको क्या बनना है, शायद 30-35 बच्चों में एक या दो ही हाथ उठते हैं। देखिए, आपको भी आपके टीचर्स ने पढ़ाया होगा सुनीता, और ये मैं कह सकती हूँ कि आज भी आपके दिमाग में 2 या 3 टीचर्स ही होंगे जो आपको याद रहे। मतलब कुछ खास टीचर्स होते हैं जो पैशनेटली पढ़ाते थे आपको।
3: बिल्कुल सही बात है।
4: और मुझे भी याद है कि किसी प्रोफेसर को जब हम कॉलेज में थे, थोड़ा लेट भी हो जाता था और अगर हमें ये पता चल गया कि सर आएंगे लेकिन थोड़ा लेट होगा उनको आने में, तो हम काफी देर तक वेट कर लेते थे और उनकी क्लास छोड़ देना एक भयंकर गलती की तरह लगता था। मतलब टीचिंग के लिए भी आपको बहुत कुछ में परफेक्ट होना होता है।
3: सही बात है।
4: कोई भी टीचिंग नहीं कर सकता, इसके लिए भी खास तरह की पढ़ाई के तरीके की और नॉलेज की बहुत ज्यादा जरूरत है।
3: सही बात है सीमा तुम्हारी। और हमारा देश जो है ना, वो तो शिक्षा में बहुत अहम स्थान रखता है। ये हमारा देश गुरुओं का देश है, जहाँ चाणक्य जैसे गुरु हुए, द्रोणाचार्य हुए, और सबसे बड़ी बात है ना, हमारे यहाँ गुरुकुल की प्रथा तब से थी जब कहीं स्कूल नहीं हुआ करते थे।
4: बिल्कुल।
3: में बच्चे पढ़ते थे और अपने आप को सबल और सक्षम बनाते थे। और अगर बात पढ़ाई की हो रही है ना, तो यहाँ जब लाइब्रेरी था, एक आज भी है लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी से किताबें लेकर लोग जब घर जाते थे या कहीं और बैठकर पढ़ते थे,
4: दूसरे देशों में भी जाते थे, नालंदा विश्वविद्यालय से किताबें लेकर जाते थे।
3: बिल्कुल। तो वो जो दौर था ना,
4: बिल्कुल
3: बहुत ही सुकून वाला था। पढ़ाई के प्रति बहुत लोग ये रहते थे, एकदम तैनात रहते थे, तत्पर रहते थे कि नहीं हमें पढ़ना ही है। तो पढ़ाई की तो अपनी अहमियत है ही, लेकिन अगर जैसा कि तुमने कहा कि टीचिंग प्रोफेशन के लिए आज किसी से पूछो तो 2 या 3 हाथ खड़े होते हैं, तो ये बहुत सोचने वाली बात है। कुछ सवाल, कुछ बातें मेरे मन में भी गहरी रूप से बैठी हुई हैं। 2-3 सवाल जो हमें और हमारे श्रोताओं को सोचने पर ज़रूर मजबूर करेंगे।
4: और पहला सवाल ये जिसके ऊपर हमें सोचना है कि आखिर क्यों हमने अपने बच्चों को ये तय करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया कि वो टीचिंग को अपना करियर बनाए। वैसे कुछ यंगस्टर्स इस प्रोफेशन में आ रहे हैं, लेकिन शुरुआत धीमी है, थोड़ी है मगर है, लेकिन काफी नहीं है।
3: हाँ बिल्कुल, जिसे देखो वो इंजीनियर, डॉक्टर और MBA करना चाहता है, सरकारी नौकरी में जाना चाहता है, लेकिन टीचर्स की ओर बहुत लोगों का रुझान नहीं है। लेकिन ये बात ज़रूर सोचनी चाहिए कि जिस किसी को भी पढ़ाने की इच्छा है, उसे ये प्रोफेशन अपनाना चाहिए, क्योंकि अगर लोगों में खुद रुचि होगी ना, तो बहुत अच्छे टीचर बनेंगे। और बात आती है दूसरे सवाल पे, क्या पढ़ाई सिर्फ मार्क्स के लिए होनी चाहिए? हम स्टूडेंट को सिखाते हैं सफल कैसे होना है, ये कौन सिखाएगा? असफल हो रहे हैं तो क्या करना है? जब हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो कि एक एवरेज स्टूडेंट भी लाइफ में अच्छा कर ले, तो खुद को कभी भी कमतर नहीं समझना चाहिए। टीचिंग प्रोफेशन में जिस दिन मेडिकल इंजीनियरिंग के साथ टीचिंग प्रोफेशन भी प्रायोरिटी बनेगा, बदलाव वहीं से आएगा।
4: और वो तो शिक्षक ही होते हैं ना सुनीता, जो आपको सिर्फ पढ़ाते नहीं हैं, आपकी जिंदगियां जो है वो बदलते हैं। और ऐसी कुछ बातें हमारे टीचर्स की जैसे हमें याद रह जाती हैं सुनीता, तो फिर हम कुछ प्ले करते हैं।
3: बिल्कुल, हमारे टीचर्स के लिए, क्योंकि हम, मुझे तो लगता है मुझे आज भी अपने बहुत सारे टीचर्स के नाम याद है,
4: तो एज अ सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड ये सॉन्ग प्ले करते हैं।
3: बिल्कुल।

0: वैसे बात हो रही है सीमा स्कूल की, तो हम ये भी बता दें कि हर छोटा परिवर्तन बड़े बदलाव के लिए रास्ता बनाता है। एक छोटी सी सीटी यानी देखने में एक छोटा सा विचार, लेकिन एक बहुत बड़े बदलाव का प्रयास। मेरा मतलब है सीटी बजाओ, उपस्थिति बढ़ाओ अभियान की। इसकी शुरुआत साल 2023 में DIT सिमडेगा द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के एक स्कूल में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में की गई थी।
1: और ये बहुत इंटरेस्टिंग है सुनीता, इसके अंतर्गत छात्रों को, स्टूडेंट्स को सीटी बांटी गई और स्कूल जाते समय स्कूल का मॉनिटर स्टूडेंट्स को इकट्ठा करता है और फिर सीटी बजाता है, फिर सारे लोग एक साथ स्कूल जाते हैं।

0: तो सुनीता, ये सीटी तो बहुत ही नेक काम के लिए बज रही है, और इसके साथ एक और पहल मैं जोड़ देती हूँ, रांची स्पीक। रांची स्पीक एक पहल है जिसने अंतर्मुखी बच्चों को बोलने के लिए प्रोत्साहित किया।
1: सीमा, हम सभी जानते हैं बोलना जरूरी है, बोल देने से सारी समस्याओं का हल निकलता है। बच्चे अगर बेझिझक अपनी परेशानी बोल देते हैं ना, तो बंद दिमाग के दरवाजे भी खुल जाते हैं।
0: ये बात बिल्कुल सही कही आपने। वैसे भी हम सभी आजकल ये चाहते हैं कि शुरू से बच्चे को तीन भाषाएं कम से कम आए और इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, तमिल, कुछ को भी शामिल करिए। और सुनीता, हम पहले झारखंड को भी अगर देखें तो कितनी सारी भाषाएं हैं, है ना, कुड़ुक, हो,
1: मुंडारी, नागपुरी, संथाली,
0: और इनकी लोकगीत जो है वो भी सुनने में बहुत कर्णप्रिय लगते हैं ये।
1: और भाषाओं की बात कर रहे हैं तो हिंदी तो अपनी भाषा है ही, जिससे हम तुरंत कनेक्ट हो जाते हैं किसी के साथ। और सबसे अच्छी बात आपने जो कही है ना सीमा, कि बोलना बेहद जरूरी है, और साथ ही साथ कुछ चीजों का आना भी बेहद जरूरी है।
0: बिल्कुल, और अलग भाषाओं के साथ अगर हम जुड़ेंगे तो फिर हम जानेंगे क्या धीरे धीरे, कि भले हमें शब्द वो समझ नहीं आ रहे हैं, बट कहीं ना कहीं इमोशंस से कनेक्ट कर पा रहे हैं।
1: बिल्कुल, और फिलहाल कनेक्ट करने के लिए जरूरी है, पता है क्या क्या बताओ,
0: फिर से एक सॉन्ग सुनना।
1: कौन सा? पंजाबी
0: डांस
1: क्या?
0: कुछ पंजाबी सुनाते हैं।
1: चलो चलो सुनिए।

0: सुनीता, आपको पता है इस सॉन्ग का बैकग्राउंड?
1: हाँ बिल्कुल
0: ये
1: नहीं
0: है
1: पता।
0: कि फादर ने अपने बेटे को एक लेटर लिखा है, ये
1: अच्छा
0: उस पर बेस्ड है। बहुत ही प्यारा गाना है और बैकग्राउंड तो यही है सॉन्ग का कि पिताजी की जो है वो तबीयत ठीक नहीं है और उसने एक लेटर लिखा है जिसमें उसने बेटे को अपनी तबीयत के बारे में बताया है। तो काफी इमोशनल सॉन्ग है ये।
1: और बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा सॉन्ग है, लेकिन एक बात मुझे पूछनी है।
0: बताइए,
1: आज किसको हैप्पी बर्थडे करना है?
0: रेडी है?
1: हाँ
0: एक्टर,
1: बिल्कुल।
0: डायरेक्टर, प्रोड्यूसर राकेश रोशन का जन्मदिन है आज। समा है सुहाना सुहाना, सुना
1: आज उनसे
0: आपने?
1: पहली मुलाकात होगी,
0: और ऐसे तमाम गाने उनके फिल्म्स के काफी हिट रहे हैं।
1: तो चलिए हम भी फिलहाल एक पसंदीदा गाना अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं। सीमा जी,
0: कभी आपने किसी की आंखों की तरफ देखकर ये महसूस किया है कि आप उसमें डूबती चली जा रही
1: और
0: हैं?
1: आंखें देखकर हम सारी दुनिया भूल भी तो जाते हैं।

0: ये आंखें देखकर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। सच में भूल ही गई थी कि आगे बात भी करना है। इतना सुंदर गीत आपने सुनाया ऐसी बात कि कुछ याद ही नहीं रहा।
1: और मैं कहीं भूल ना जाऊं, मुझे आपसे कुछ शेयर करना है सुनीता।
0: करो करो करो।
1: और शेयर ये करना है कि कल मैंने अंताक्षरी का एक कंपटीशन जीता है।
0: अरे बधाई हो बधाई। खाए मिठाई?
1: वो तो मैं आज नहीं लाई क्योंकि सुबह स्टूडियो आना था, बट मिठाई खिला दी जाएगी। पहले पहले सोचिए जरा, अक्सर अंताक्षरी खेलते वक्त भी हमें अक्सर पुराने गाने ही क्यों याद रहते हैं, है ना? जबकि हम नए गाने भी सुनते हैं, तो इसका क्या कारण है? क्या सोचती हैं आप?
0: बहुत गंभीर और धीर वाली बात है सीमा, ऐसा होता है। इसका एक कारण है, भाव और शब्द प्रधान होते हैं और पुराने गानों में ना ये हमें बेहद हमेशा देखने को मिले हैं। कहीं ना कहीं हमने खुद को उन गहरे उन गानों से कनेक्ट कर लिया है। जाहिर है कि कनेक्शन होगा तो शब्द वैसे ही याद रह जाएंगे।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और ऐसा नहीं होता था कि एक दो लाइंस याद है, कभी कभी पूरे के पूरे अंतरे याद रहते थे।
0: मुझे तो आज भी बहुत सारे याद हैं।
1: और इसमें हमें लगता है कि सबसे ज्यादा योगदान जो है वो हमारे रेडियो सुनने का है।
0: बिल्कुल, रेडियो है ही इतना प्यारा ना, और रेडियो है ही इतनी अच्छी चीज कि हमें कनेक्ट करके रखती है। और वैसे बात करें सीमा, तो इस दौड़ती भागती जिंदगी में जहाँ हर मिनट चीजें बदल जाती है, कब कहाँ क्या पुराना हो जाए पता ही नहीं चलता, लेकिन आज भी किसी बाजार में कोई ना कोई मिल जाएगा और वही अपना पुराना रेडियो ढूंढ रहा होगा।
1: कितनी सही बात कही आपने। कुछ चीजें जिंदगी से जिंदगी में आकर नहीं जाने के लिए हैं। और हम हमेशा कहते हैं कि यंग जनरेशन को भाषा पर काम करना है तो उन्हें रेडियो जरूर सुनना चाहिए।
0: हमें यह आदत अपने पेरेंट्स से मिली है, तो जो पेरेंट्स हमें सुन रहे हैं रेडियो जरूर ऑन रखिए। सिर्फ सॉन्ग्स के लिए नहीं, न्यूज के लिए, परिचर्चाओं के लिए और भी बहुत सारे जानकारियों के लिए,
1: और जानकारियों के साथ साथ भरपूर मनोरंजन भी आपके लिए।

0: भाई मन का मौसम तो सही हो गया सुनीता, और बाहर के मौसम के मिजाज के बारे में क्या कहना है आपका?
1: कल बारिश हुई नहीं, खिलकर धूप के लिए सावन का महीना गुजर गया, बारिश ने अपनी हरी छाप धरती पर छोड़ दी। इस बीच में एक गड़बड़ हो गई।
0: क्या?
1: वो ये हो गई कि हमारे जो काम में मदद करती है ना, उसने कहा वो अभी दो दिन नहीं आएंगी क्योंकि उसको धान रोपना है, और क्योंकि अब धान रोपने का कार्य अपने अंतिम चरण पर है।
0: ये तो मेरे साथ भी हुआ है सुनीता, लेकिन मुझे आशा मिली है कि दो तीन दिनों में वो आ जाएंगी वापस। वैसे रविवार का दिन, रात के मौसम का मिजाज, दिन के मौसम का मिजाज, संगीत का साथ, और ज्यादा तो नहीं थोड़ी इजाजत दे देते हैं अपने चाहने वालों को थोड़ा टीज करने की, और ये सब टीज करना, थोड़ा सा छेड़ना, ये सब तो इश्क का नमक है।
1: जुबा पे लगा लगा रे नमक इश्क का, क्या इसकी तो बात नहीं कर रही हो ना? ये तो सुना ही होगा तमाम लोग जिन्हें बेदर्दी की उपाधि मिलती है, तो क्या कहना है ये?
0: तो हम कह रहे हैं कि तमाम लोग जिन्हें बेदर्दी की उपाधि मिली हुई है, हम उनके लिए ये सॉन्ग प्ले कर देते हैं।
1: कर देते हैं नहीं।

0: तो सुनीता आपने तो मोहब्बत का समा बांध दिया और अभी तो मूड भी थोड़ा रोमांटिक सा हो रहा है और मुझे कुछ कहने का मन हो रहा है।
1: अरे भाई तो कह डालिए ना, किसने रोका है।
0: तो मौसम की खूबसूरती यूं ही बरकरार रहे, रहे ना बहुत कुछ पास फिर भी हमारे दिलों में बस प्यार रहे।
1: जिंदगी में आए चाहे कितनी भी धूप छाओ मगर हमें एक दूसरे पे एतबार रहे।

0: सीमा, जोहरा जी कार्यक्रम में थोड़ी सी अब और बातें कर लेते हैं हम, और वो भी बहुत जरूरी।
1: आज के समय में जब बढ़ते हुए स्क्रीन टाइम के लिए सभी की चिंता जायज है, बहुत जरूरी हो जाता है कि हम स्पोर्ट्स के लिए सभी को प्रोत्साहित करें।
0: बिल्कुल सही बात है, और ये नहीं सोचना चाहिए कि स्पोर्ट्स के लिए कोई उम्र होती है। उम्र का स्पोर्ट्स से कोई लेना देना नहीं है। खेल हमें और आपको जरूर खेलना चाहिए, चाहे फुटबॉल हो या हॉकी।
1: और सुनीता, आपने राज्य झारखंड की बात करें तो हम आपको बता देते हैं, जापान के आईटी नागोया में 19 सितंबर से एशियन गेम्स शुरू होने जा रहा है
0: जी।
1: और 4 खेलों में झारखंड के 7 खिलाड़ी दम दिखाएंगे अपना।
0: हॉकी टीम की बात करें तो उसमें शामिल होंगे सलीमा टेटे, निकी प्रधान, ब्यूटी डुंगडुंग और दीपिका सोरेन।
1: वहीं तीरंदाजी की बात करें तो अंकिता भगत होंगी और साइकिलिंग में सरिता कुमारी।
0: और क्रिकेट में अपने ईशान किशन भारतीय टीम की ओर से मैदान में उतरेंगे।
1: और मुझे तो लगता है सुनीता, जिंदगी का मैदान जो है ना, वो बिल्कुल खेल के मैदान की तरह ही होता है, जहां सभी कोशिश कर रहे हैं जीतने की
0: जी।
1: लेकिन जैसे जीत को स्वीकार कर लेते हैं हम, वैसे ही अगर हार को भी स्वीकार कर ले तो जिंदगी थोड़ी सहज हो जाएगी।
0: बिल्कुल सही बात है, हार हमें रोकने के लिए नहीं बल्कि खुद को समझने और निखारने का मौका देती है। हर हार के बाद निराश हो जाना स्वाभाविक है, लेकिन साथ ही साथ इस मायूसी से बाहर निकलना ही असली साहस, असली आशावादी होने की निशानी है।
1: और कई बार हम इस मायूसी से बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि न जाने कौन सा डर हमारे भीतर है, वो बैठा हुआ है अनदेखा सा, अनजाना सा।
0: तो जब डर ज्यादा हो तो खुद को कर्म करते हुए अपने प्रयास को ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि जब हमें कोई रास्ता नहीं दिखता है ना, तो ईश्वर हमारे लिए रास्ता बनाते हैं। बस कर्म आपको और हमें करना होता है।

0: बहुत ही सुकून मिला इस सॉन्ग को सुनने के
1: हाँ
0: बाद
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: सुनीता।
1: बिल्कुल। और कहते हैं ना, ईश्वर जो है हमारे लिए हमेशा अच्छा ही करते हैं, बस हमारा विश्वास उन पर बना रहना चाहिए।
0: वैसे आज हमने बहुत सारी बातें की और अभी हमारे पास कितना समय बचा हुआ है बताइए जरा।
1: समय ज्यादा तो नहीं है, 9 मिनट का समय है, और भी थोड़ी थोड़ी बातें बची हुई हैं, लेकिन फिलहाल अब अपने श्रोताओं को एक खूबसूरत सा गीत सुनाते हैं, फिर चलते चलते कुछ अच्छी सी बातें

0: तो सुनीता अब वक्त करीब आ रहा है जोहार रांची के संपन्न होने का। लेकिन जैसा कि हमने बातें की, बहुत अच्छा लगता है जब हमारे झारखंड के लोग या देश के लोग दुनिया के सामने अपने आर्ट को, एक्टिंग को रखते हैं।
1: बिल्कुल सही बात है, और इसमें से एक प्रियंका चोपड़ा है जो हमारे झारखंड की हैं, जो एक्टिंग की दुनिया में बहुत ही जिन्होंने नाम कमाया है और इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज जिनको किया गया है, और एक्टिंग के साथ साथ वो बहुत ही अच्छे स्पीकर हैं, सिंगर हैं। अपनी आवाज और अंदाज से उन्होंने इंटरनेशनल म्यूजिक की दुनिया में भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है।
0: छोटे से जीवन से कितना प्यार करूं पीलू हाला, आने के ही साथ जगत में कहलाया जाने वाला।
1: अरे अरे अरे अरे अरे भाई, रुको रुको रुको, क्या हो गया अचानक?
0: जब हम समय के बारे में सोचेंगे तो ऐसे ही भावनाएं कविताओं के माध्यम से मुखर हो जाती हैं।
1: लेकिन ऐसा है सीमा जी, मुझे जाना है, लेकिन अपने श्रोताओं को हम बता दें कि सीमा आपके साथ पूरे दिन बनी रहेंगी और एक से बढ़कर एक डांस नंबर आपको सुनने को मिलेंगे थोड़ी ही देर बाद आपके गीत कार्यक्रम में। और फिलहाल कार्यक्रम जोहार रांची से हम दोनों आपसे लेते हैं विदा, कहते हैं नमस्कार
0: जोहार।
1: और एक बात और, चलते चलते ये खूबसूरत सा जो नंबर है ना, उससे हम अपने श्रोताओं को कनेक्ट करते जाते हैं, बिकॉज आई एम फीलिंग सो एक्सोटिक।

कार्यक्रम जुहार रांची अभी आप सुन रहे थे सुनीता और सीमा के साथ। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। अगला कार्यक्रम अब से थोड़ी ही देर में।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं दोस्तों। हमारे स्टूडियो की कड़ी में 11:30 हो चुके हैं। ये वक्त है कार्यक्रम आपकी पसंद का।

फिल्म राजनीति से लिया हमने ये गीत आदेश श्रीवास्तव, शशि और रोजली निकोलसन की आवाजों में, बोल समीर के संगीत आदेश श्रीवास्तव का।

मोरा पिया मुझसे बोलत नहीं। आपकी पसंद पे ये गीत हमने सुनवाया। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, लक्षणपुर से विश्वनाथ साहू, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी और दतरेंगी से भागवत वर्मा।

डेंजरस इश्क से ये गीत आप सभी सुन रहे हैं हिमेश रेशमिया, राहत फतेह अली खान और श्रेया घोषाल की आवाजों में, बोल समीर अनजान के संगीत हिमेश रेशमिया का।

ये गीत अभी आपने सुना आप सभी की पसंद पर दुबिहा निवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय।

ये गीत आप सुन रहे हैं आप सभी की पसंद पर हरदेव मीका गांधी चौक रोपड़ पंजाब से बलविंदर वीरक जैतक वीरक और मीका वीरक।

फिल्म ऑल इज वेल से लिया है हमने अगला गीत, अरिजीत सिंह की आवाज में, बोल शब्बीर अहमद की और संगीत हिमेश रेशमिया का। आप सभी की पसंद पर ये गीत आप सुन रहे हैं। औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश।

आपकी पसंद ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। अगला कार्यक्रम अब से थोड़ी ही देर में।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12 बजने वाले हैं दोस्तों। ये वक्त है कार्यक्रम गृह लक्ष्मी का। आज इस कार्यक्रम में आपके साथ होंगी सुभाषिनी और लता रानी। इस कार्यक्रम की प्रस्तुति है गौरव कुमार पांडे की।

0: नमस्कार सखियों, मैं हूं आपकी सखी सुभाषिनी। स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में। हमेशा की तरह आज भी आपके लिए लेकर आए हैं कुछ जानकारियां, कुछ सुझाव और गीतों के साथ मनोरंजन। कार्यक्रम के सफर में हमारी एक और प्यारी सखी है
1: लता। तो बहनों, स्वीकार कीजिए अपनी सखी लता का भी प्यार भरा नमस्कार। हमारी सखियां अपने परिवार संग खुश होंगी और स्वस्थ भी होंगी और साथ ही इंतजार कर रही होंगी कि आज हम उनके लिए क्या लेकर खास आए हैं।
0: हाँ लता, बिल्कुल सही कहा तुमने। तो बहनों, आजकल हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं ना, जहाँ हम ये सोचते रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे या फिर सोशल मीडिया पर हमारी तस्वीर कैसे आएगी।
1: और नया फोन, नए कपड़े और दिखावे की चकाचौंध। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि बहनों, कोई मुश्किल आती है तो क्या ये दिखावा काम आता है? बिल्कुल नहीं। तब काम आती है हमारी बचत, हमारी समझदारी, हमारी सूझबूझ।
0: बिल्कुल सही कह रही हो तुम। आज हम एक ऐसी अंधी दौड़ में शामिल हो गए हैं जहां अमीर होना उतना जरूरी नहीं रह गया है जितना अमीर दिखना है ना। और इसी को कहते हैं बहनों, दिखावे की संस्कृति। लेकिन दिखावे में नहीं, बचत में समझदारी है बहनों।
1: और आजकल बाजार में बड़े बड़े बोर्ड को देखकर लोग खींचे चले जाते हैं, जहां लिखा होता है ले जाइए ब्रांडेड फोन सिर्फ 2000 के आसान किश्तों पर। अब जेब में पैसे ही नहीं हो, फिर भी दिखावे के लिए हम ईएमआई या क्रेडिट कार्ड के चक्कर में फंस जाते हैं।
0: हाँ, ये तो एकदम सही कह रही हो। और हम वो चीजें खरीद कर ले आते हैं जिनकी हमें कोई जरूरत ही नहीं। तो ऐसा हम अक्सर सिर्फ दिखावे के लिए ही करते हैं। अब तो बहनों, चादर देखकर पैर पसारने वाली कहावत तो पुरानी हो गई है। अब लोग क्या करते हैं ना लता, लोन पर नई चादर ही ले आते हैं।
1: ये भी बड़ी अजीब बात हो गई है। और यह भी है कि बहनों, लेकिन जब बैंक अकाउंट से किस्तें कटती हैं तो मानसिक तनाव तो झेलना ही पड़ता है। दिखावे से कुछ पल की वाह वाही तो हम ले लेते हैं, लेकिन सुकून की नींद सिर्फ और सिर्फ बचत के द्वारा एक सुरक्षित बैंक बैलेंस ही दे सकता है।
0: तो बचत का मतलब कंजूसी करना या घुट घुट कर जीना बिल्कुल भी नहीं है। बचत का मतलब है अपनी प्राथमिकताओं को समझना, यानी कि कौन सी चीज बहुत ज्यादा जरूरी है उसे ही हम खरीदे। बचत का मतलब है आज अपनी फिजूल खर्ची पर थोड़ा सा कंट्रोल करना, ताकि आपका आने वाला कल आज से ज्यादा खूबसूरत और सुरक्षित रहे।
1: बड़ी अच्छी बात कही तुमने सुभाषिनी। और आशा करते हैं कि मैंने अपनी जो जीवन के आने वाले पन्ने हैं उसे खूबसूरत बनाएंगे हमारी इन बातों को सुनकर। और बहुत ही सही बात यह भी है बहनों कि सोचिए, भगवान न करे अचानक कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए या नौकरी में कोई उतार चढ़ाव आ जाए, तब क्या वो महंगे कपड़े या सामान आपका जो बिल है वो चुका पाएंगे? नहीं ना। तब वही आपकी छोटी छोटी बचत आपकी आरडी एफडी आपके काम आएगी।
0: हमें ये समझना जरूरी है बहनों कि बचत हमें सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत नहीं बनाती, वो आपको मानसिक आजादी और आत्मविश्वास भी देती है। हमें अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा बदलाव तो करना ही होगा।
1: हाँ, एक छोटा सा नियम बनाइए बहनों, पैसा आने पर पहले बचत कीजिए, फिर जो बचे उससे खर्च कीजिए। अपनी खुशियों को दिखावे के तराजू में बिल्कुल मत तौलिए। समझदारी इसी में है कि आपका आज भी सुरक्षित हो और आपका कल भी मुस्कुराता रहे।
0: तो आज ही इस दिखावे की रेस से बाहर निकलिए, बजट बनाइए और फिजूल खर्चे पर ब्रेक लगाइए और निवेश की आदत डालिए, सबसे बड़ी बात, क्योंकि दिखावे में नहीं बचत में समझदारी है। और फिर जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहेंगे और हंसी है तो कभी गम भी आएंगे। तो बस बहनों के लिए हम इसी बात पर उनके लिए एक गीत प्रस्तुत करते हैं, जो बहुत ही सुंदर गीत है।
2: सबके कदम देखो रम पम पम

0: ये देख कैसे
1: हैप्पी बर्थडे भाई
0: देखा
2: हाँ मेरा फेवरेट कलर हमेशा शॉपिंग
3: आई नो माँ बट खर्चा करने की भी यही उम्र है राइट
4: सेविंग करने की भी यही उम्र है
5: आई नो बा सेव करो सही जगह निवेश करो रकम पर ब्याज मिलेगा जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा
3: आई नो ना
5: आरबीआई कहता है
6: करो सही शुरुआत बनो फाइनेंशियली स्मार्ट
7: ये कस्टमर केयर कहाँ है हाँ मैडम
6: जी
7: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है
6: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए
7: पर ये होगा कैसे
6: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें
7: अच्छा और अगर कोई बदलाव हो
6: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं
7: बस समझ गया
6: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं
8: आरबीआई कहता है
9: जानकार बनिए सतर्क रहिए
10: तो मैंने एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में और बहनों जैसा कि आज है रविवार तो प्रस्तुत है हमारा आज का विशेष कार्यक्रम वट वृक्ष जिसके अंतर्गत हम हमारी तीसरी पीढ़ी हमारे मार्गदर्शक विषय पर आज हम चर्चा करेंगे है ना सुभाषिनी
11: बिल्कुल तो बहनों जीवन की आपाधापी भागदौड़ और आधुनिकता की इस तेज रफ्तार में क्या कभी हमने ठहर कर ये सोचा है कि हमारे घर की नींव किन कंधों पर टिकी है वे कौन हैं जिन्होंने अपनी जवानी को खपाकर हमारे आज को रोशन किया है जी हाँ बहनों हम बात कर रहे हैं हमारी तीसरी पीढ़ी की यानी हमारे घर के बड़ों की
10: हाँ बहनों भारतीय संस्कृति में वट वृक्ष केवल एक वृक्ष नहीं बल्कि जीवन संस्कार संरक्षण और पीढ़ियों के बीच मजबूत संबंधों का प्रतीक है अपनी विशाल शाखाओं गहरी जोड़ों जो जड़ें हैं जिसको हम परिवार के लिए एक जोड़ मानते हैं और दूर तक फैलती छांव के कारण वट वृक्ष हमेशा यह संदेश देता है कि जीवन में जितना ऊंचा उठना जरूरी है उतना ही अपनी जड़ें जो है उससे जुड़ी रहना भी आवश्यक है
11: बहुत खूब आज के बदलते दौर में जब हमारी आज की पीढ़ी आधुनिकता तकनीक और तेज रफ्तार जीवन शैली के बीच आगे बढ़ रही है तब परिवार की जो यही तीसरी पीढ़ी है उसकी भूमिका बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और ये तीसरी पीढ़ी बिल्कुल वट वृक्ष के समान हो जाती है और अपनी छांव में हमें जगह देती है शरण देती है
10: हाँ सुभाषिनी मैंने एक परिवार में दादा दादी और नाना नानी उस वट वृक्ष की तरह होते हैं जिनकी जड़ें अनुभवों से मजबूत होती है और जिनकी छांव आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षा प्रेम और सही दिशा देती है उन्होंने जीवन के अनेक उतार चढ़ाव देखे होते हैं जो हमें अब भी देखना बाकी होता है और जब उनके अनुभव हमारे सामने होते हैं ना तो ये रास्ते बड़े आसान लगने लगते हैं
11: बिल्कुल तो इसीलिए वटवृक्ष की छांव में रहना बहुत सुकून देता है ना तो संघर्ष सफलता असफलता रिश्तों की अहमियत और जीवन के मूल्यों का जो अनुभव उनके पास होता है वो नई पीढ़ी के लिए किसी अनमोल धरोहर से कम नहीं है और ये नई पीढ़ी को इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना होगा और ये हमारा काम है कहे एक तरह से कि हमारा कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों को उस छांव के बारे में समझाएं बताएं उनका एहसास दिलाएं कि ये जो वट वृक्ष है उसकी छांव बहुत ही सुकूनदायी होती है
10: हाँ बिल्कुल सही हमारे समाज में तीसरी पीढ़ी केवल उम्र के आंकड़े से तय नहीं होते वे तो अनुभवों के हुए अटूट ग्रंथ है जिनके हर पन्ने पर जीवन का कोई ना कोई गहरा सबक लिखा होता है जिन्हें हम अक्सर तीसरी पीढ़ी कहकर संबोधित करते हैं और वास्तव में वे हमारे परिवार और समाज के सबसे मजबूत मार्गदर्शक हैं
11: बिल्कुल और आज के जैसा कि आजकल डिजिटल युग का दौर चल रहा है और जहां हर सवाल का जवाब हम तुरंत फोन उठाते हैं और इंटरनेट पे ढूंढ लेते हैं, जहां जीवन के असली संकटों, रिश्तों के ताने बाने और विषम परिस्थितियों से उबरने का हुनर केवल हमारी तीसरी पीढ़ी के पास ही मिलता है। जो हम लोग सर्च करते हैं गूगल में या इंटरनेट पर, तो वो तो सिर्फ किताबी बातें कह लो या, लेकिन जो इनके पास जो होता है ना, वो सालों का अनुभव रहता है। वो इन सारी बातों से गुजर कर इस मुकाम पर पहुंचे हुए होते हैं, इसलिए उनका, उनकी जो छांव है, उनका जो हुनर है या कहें अनुभव है, उन्हें हमें लेना चाहिए।
10: हाँ बिल्कुल सुभाषनी, तभी तो वो हमारी धरोहर है ना। पर देखो ना, जैसे कि झारखंड की सांस्कृतिक माटी को ही ले लीजिए, हमारी परंपराओं, लोकगीतों, जीवन मूल्यों और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीने की कला को अगर किसी ने सहेज कर रखा है तो वह हमारी यह तीसरी पीढ़ी है। और उन्होंने जीवन की आंधियों को झेला है, उतार चढ़ाव देखे हैं, इसलिए जब वे कोई सलाह देते हैं तो उनमें महज ज्ञान नहीं बल्कि बरसों के अनुभव की सच्चाई छुपी होती है।
11: बिल्कुल, और इसीलिए जो हमारे जो ये वटवृक्ष हैं, उनका सानिध्य कहा जाता है कि बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन आज का एक कड़वा सच ये भी है बहनों, कि अक्सर आधुनिकता की दौड़ में हम उन्हें पीछे छोड़ देते हैं, और बहुत ही मुश्किल से ऐसे घर होते होंगे जहां हमें ये वटवृक्ष का छांव मिलता है। हम ये भूल जाते हैं कि वृक्ष जितना पुराना होता है, उसकी छाया उतनी ही गहरी और फल जो होते हैं ना, उतने ही मीठे होते हैं।
10: बहुत खूब कहा तुमने सुभाषिनी। तीसरी पीढ़ी का मार्गदर्शन किसी दिशा सूचक यंत्र की तरह नहीं होता। जब युवा पीढ़ी राह भटकने लगती है ना, तब उनका एक धीमा सा स्पर्श और प्यार से कहा गया एक शब्द भी जो है वो हमें रास्ता दिखा देता है। वे हमें सिखाते हैं कि धैर्य क्या है, त्याग क्या है, और विषम परिस्थितियों में भी अपने मूल्यों से समझौता न करना क्या होता है।
11: बिल्कुल,
10: जो कि हमें कोई किताब या कोई संदेश हमें नहीं बता सकती। ये जो हमारे धरोहर हैं, उनके अनुभव, उनकी छांव, उनका सुकून ही हमें बता सकता है।
11: जैसा कि हमने कहा ना कि जो हमारी परंपराएं हैं, हमारी संस्कृति है, वो जो जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित होती है, जो बोलकर या कहानियों के रूप में जो ये हमें समझाते हैं या छोटे बच्चों को जो बताया जाता है, वो ज्यादा दिमाग में रह जाता है और वो उससे ज्यादा सीखने को मिलता है। क्योंकि आज अगर हम अपने बच्चों को देखें तो हम जितना किताबी बातें उनको सिखाएंगे या किताब पढ़ने के लिए देंगे, उससे अगर अच्छा उन पर ज्यादा प्रभाव डालता है कि हम कुछ बोल कर उन्हें समझाएं या कहानी के रूप में समझाएं। और तभी तो कहते हैं ना कि दादा दादी की कहानियां या नाना नानी की कहानियां बहुत ही प्रेरणादायी होती हैं, और जो छोटे बच्चे हैं उनको अगर उनका सानिध्य मिल जाए ना, तो वो बस क्या कहने।
10: बिल्कुल सुभाषनी, और बचपन में सुना हुआ वो दादा दानी दादी की जो कहानी है, वो आज भी हमारे जहन में।
11: बिल्कुल,
10: तो बहनों आइए आज इस मंच के माध्यम से हम स्वयं से एक वादा करें कि हम अपनी इस तीसरी पीढ़ी को केवल सम्मान ही न दें, बल्कि उनके करीब बैठे, उनकी बातें सुने और उनके विशाल अनुभव को अपने जीवन में उतारे, उनका हाथ थाम कर चलना सीखे।
11: बिल्कुल, क्योंकि जो समाज अपने बड़ों का आदर करता है, वही समाज वास्तव में उन्नति की सही दिशा में आगे बढ़ता है। तो इसीलिए जो हमारे माता पिता हैं, हमारे जो घर के जो वट वृक्ष कह लो, हमारे मार्गदर्शक हैं, उनका सानिध्य बहुत सुकून देता है, और ये कह लो कि धरती पर एक भगवान के ही तरह है।
10: बिल्कुल,

0: तो बहनों, इस खूबसूरत गीत के बाद अब हम हमारे पास कुछ जानकारी बची है आपसे साझा करने के लिए, है ना लता?
1: बिल्कुल।
0: तो आज जो हम बहनों के लिए जानकारी लाए हैं वो कौन सी जानकारी है लता?
1: वो है सबसे महत्वपूर्ण विषय हमारा, हमारी आज की जानकारी जुड़ी है हमारी सेहत से।
0: बिल्कुल,
1: यानी कि सेहत है तो सब कुछ है।
0: जिसकी बातें हम लोग हमेशा करते हैं और बहनों से भी बोलते हैं कि कामना है कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगी, है ना?
1: बिल्कुल बहनों, अक्सर हम सब अच्छे स्वास्थ्य की ही तो कामना करते हैं, पौष्टिक भोजन लेते हैं, व्यायाम करते हैं ताकि हम बीमार न पड़े। लेकिन सखियों, स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ बीमारियों से दूर रहना नहीं, स्वास्थ्य का मतलब है शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से पूरी तरह फिट रहना, है ना?
0: बिल्कुल। तो आज की आधुनिक और प्रतिस्पर्धा से भरी दुनिया में इंसान भौतिक सुख सुविधाओं और जो धन दौलत है उसके पीछे इतनी तेजी से भाग रहा है कि उसने अपने स्वास्थ्य को पीछे छोड़ दिया है। सुबह हुई नहीं कि हम महिलाओं की ही अगर सबसे पहले बात करें तो हम महिलाएं ही सुबह उठती हैं तो बच्चों को तैयार करना है, टिफिन देना है और ऑफिस जाना है या ऑफिस भेजना है उसके लिए जल्दी जल्दी तैयारी करती हैं और जल्दी जल्दी जो कुछ भी मिला वो खा लेती हैं और सेहत को अनदेखा कर देती हैं।
1: ये तो बिल्कुल सही कह रही हो तुम सुभाषनी, क्योंकि मुझे लगता है कि अमूमन हर महिला की यही टाइप, जो लाइफ स्टाइल है ये यही होती है, और खासकर सुबह की।
0: हाँ।
1: और पैसा कमाने के लिए अपनी सेहत दाव पर लगा देते हैं हम, और बाद में उसी सेहत को वापस पाने के लिए कमाया हुआ सारा पैसा खर्च कर देते हैं। पर सच तो ये है बहनों कि यदि सेहत है तो जीवन में सब कुछ है, और यदि सेहत ही नहीं है तो जीवन शून्य है।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही लता तुमने कि पहले तो हम पैसे के पीछे भागते हैं और जब फिर अपनी सेहत पर ध्यान नहीं देते हैं फिर बीमार पड़ जाते हैं, और जो बीमारी में वो सारा हमारा जो पैसा है वो खर्च हो जाता है। तो कितना भी अमीर बन जाए कोई भी, यदि वो किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है तो उसका पैसा उसके किसी काम का नहीं रहता।
1: बिल्कुल,
0: ये बात हमें समझनी होगी। धनवान आदमी अगर है तो वो आलीशान बिस्तर पर सो तो सकता है पर चैन की नींद खरीद नहीं सकता। वो महंगे महंगे पकवान खरीद तो सकता है पर बीमारी के कारण खा नहीं सकता।
1: वाह, बहुत खूब कहा तुमने सुभाषनी। और इसी तरह बहनों, एक साधारण कमाने वाला व्यक्ति जो शारीरिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ है वह सूखी रोटी खाकर भी गहरी और शांतिपूर्ण नींद लेता है। वह जीवन के हर पल का आनंद उठा सकता है। और तुलनात्मक की जो तुमने सुभाषनी बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स दिए कि हम सोने के स्टेज पर तो सो सकते हैं लेकिन शायद वो नींद हमें सोने नहीं देगी।
0: बिल्कुल। और वही बीमार व्यक्ति न केवल दुख और खुद भी दुखी रहता है बल्कि वो अपने परिवार पर भी आर्थिक और मानसिक बोझ बन जाता है, क्योंकि अगर वो स्वस्थ है तो उसका परिवार भी हंसी खुशी रहेगा और स्वस्थ रहेगा, और बीमार पड़ जाएगा तो लोग उसकी सेवा में लगेंगे और मानसिक रूप से परेशान होंगे, अगर अस्पताल जाना है आना है तो बहुत परेशानी होती है, और आर्थिक रूप से तो परेशानी होती ही है। तो तभी तो कहा जाता है कि पहला सुख निरोगी काया, यानी जिसका अर्थ है जीवन का सबसे पहला और अनमोल सुख एक स्वस्थ शरीर है। अगर हमारे पास स्वस्थ शरीर है, शरीर वो चाहे कितना भी बाहरी रूप से सुंदर हो लेकिन अगर अंदर से भी उसे हम मजबूत नहीं बनाएंगे तो कोई काम का नहीं रहेगा।
1: बिल्कुल, यह बहुत जरूरी है हमारा स्वस्थ रहना बहनों। स्वस्थ रहने के लिए हमें अपनी दैनिक आदतों में सकारात्मक सुधार करना ही होगा, जैसे संतुलित और पौष्टिक आहार सबसे पहली महत्वपूर्ण बात, नियमित योग और व्यायाम करना, पर्याप्त नींद लेना, और सबसे जरूरी है मानसिक शांति और सकारात्मक दृष्टिकोण रखना।
0: बहुत ही सुंदर बात कही तुमने। जैसे कि हम लोग अगर भोजन करते हैं तो ऐसा नहीं कि कुछ भी खा लिया, भोजन हमें ऐसे देखना होगा कि उसमें सारी पौष्टिक चीजें वो शामिल है कि नहीं, खुद के लिए भी और परिवार के दूसरे सदस्यों के लिए भी। और नियमित योग और व्यायाम करना, लोग कहते हैं ना कि समय नहीं मिलता, तो अगर आप समय निकाले तभी तो समय मिलेगा। तो इसीलिए योग और व्यायाम जरूर करें। सुबह समय नहीं मिलता तो शाम
1: शाम
0: में
1: को भी
0: समय आप निकाल सकती हैं। तो अगर आप खुद तैयार हो तो सब कुछ, फिर आपको समय भी मिलेगा और सारी चीजें भी अच्छी तरह से हो जाएंगी।
1: बिल्कुल, इसीलिए तो महात्मा गांधी ने भी कहा है, यह स्वास्थ्य ही है जो आपका असली धन है, ना कि सोने और चांदी के टुकड़े। इसीलिए बहनों, जीवन के अन्य सभी कार्य करते हुए अपनी सेहत का अच्छे से ख्याल रखें, पहली प्राथमिकता दें, क्योंकि सेहत अच्छी होगी तभी हमारा भविष्य उज्जवल होगा और खुशहाली भी हमारे साथ होगी।
0: बिल्कुल।
1: सुभाषिनी, बातें तो बहुत है, जैसे कि तुमने समय के बारे में कहा, तो समय वाकई में कम है
0: कम
1: और
0: है।
1: समय हो चला है अब बहनों से विदा भी लेने का। तो बहनों, आपको चलते चलते बता दें कि आज के हमारे कार्यक्रम की प्रस्तुति गौरव कुमार पांडे की थी,
0: और इसी के साथ आपकी सखी सुभाषिनी
1: और लता को दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार।
1: गृह लक्ष्मी।

कार्यक्रम गृहलक्ष्मी अभी आप सुन रहे थे सुभाषिनी और लता के साथ। कार्यक्रम की प्रस्तुति थी गौरव कुमार पांडे की। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12:30 हो चुके हैं दोस्तों। ये वक्त है कार्यक्रम भारत भारती का। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे आंचलिक लोकगीत। आज आप सुनेंगे लोकगीत मगही भाषा में। कलाकार हैं सिसोदिनी सिंह और साथी।

भारत भारती आंचलिक लोकगीत के अंतर्गत आपने सुने कुछ लोकगीत मगही भाषा में। कलाकार थी सिसोदिनी सिंह और साथी। हम आकाशवाणी के नाट्य केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की खड़ी में 12:45 हो चुके हैं दोस्तों। ये वक्त है कार्यक्रम लोकगीतों के कार्यक्रम लोक रंग का। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे खड़िया भाषा में लोकगीत। कलाकार होंगे इग्नेसियस केरकेट्टा और साथी।

लोकरम कार्यक्रम के अंतर्गत खड़िया भाषा में लोकगीत अभी आप सुन रहे थे। कलाकार थे इग्नासियस किरकेट्टा और साथी। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 1 बजने वाला है। हिंदी और अंग्रेजी में समाचार के लिए आइए आपको दिल्ली लिए चलते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से बड़े सपने देखने तथा लेखा, वित्त, कानून और परामर्श से जुड़ी ऐसी संस्थाओं के निर्माण की अपील की है जो वैश्विक स्तर की हों। वे कल दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारतीय मूल के कई लोग दुनिया की शीर्ष कंपनियों का नेतृत्व कर रहे हैं।
1: भारत की ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म्स क्यों नहीं हो सकती? हमारी अकाउंटिंग फर्म, हमारी लीगल फर्म, हमारी फाइनेंशियल फर्म, ये सब ग्लोबल लीडर्स क्यों नहीं बन सकती? हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें?
0: श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद भारत की तिमाही वृद्धि दर 7.8% रही है, जो इसकी बढ़ती आर्थिक क्षमताओं को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि भारत ने नीतिगत मामलों में गतिरोध से गतिशीलता तक का लंबा सफर तय किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज सबसे तेजी से आर्थिक प्रगति करता हुआ देश है।
1: दुनिया भारत को फ्रजाइल फाइव बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है। और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है।
0: मध्य प्रदेश के सागर जिले में जहरीली शराब पीने से 9 लोगों की मौत हो गई है। 12 से अधिक लोगों का उपचार चल रहा है। प्रशासन ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। छत्तीसगढ़ में जगदलपुर की राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की विशेष अदालत ने झीरम घाटी में माओवादी हमले के मामले में सभी 10 आरोपियों को दोषी ठहराया है। अदालत ने आरोपियों को 29 लोगों की हत्या और 15 अन्य की हत्या के प्रयास का दोषी पाया। इनकी सजा पर अंतिम फैसला 16 सितंबर को होगा। मई 2013 में झीरम घाटी में कांग्रेस नेताओं के काफिले पर हमला हुआ था। इसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं सहित 29 लोग मारे गए थे। नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 1,344 हो गई है। 590 विदेशी नागरिकों सहित लगभग 5,000 लोग अभी भी लापता हैं। अब तक 13,100 से अधिक लोग बचाए जा चुके हैं। मृतकों की पहचान के लिए डीएनए परीक्षण की सहायता भी ली जा रही है। चीन के चियांगशी प्रांत में तेज बारिश के बाद भूस्खलन में 2 लोगों की मौत हो गई है। तूफान सॉडेल से कई दिनों की मूसलाधार बारिश के कारण ये आपदा आई।

0: ईरान के कुर्द शहर सरंदज में एक ईंधन टैंकर में विस्फोट होने से 11 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग घायल हुए हैं। ये टैंकर कई कारों से टकराने के बाद आग की चपेट में आ गया। रिपोर्ट के अनुसार ब्रेक प्रणाली में खराबी के कारण ये दुर्घटना हुई। डॉक्टर दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। वे अवकाश प्राप्त एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी का स्थान ग्रहण करेंगे। डॉक्टर शर्मा फिलहाल उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सांसद हैं और वे राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर आई ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में वित्त मंत्री और 500 से अधिक संस्थागत निवेशक तथा उद्योगपति शामिल होंगे। आई ब्रिक्स का उद्देश्य ब्रिक्स के 21 सदस्य और साझेदार देशों में संप्रभु पूंजी का उपयोग, विश्वसनीय बुनियादी ढांचे, ऊर्जा और डिजिटल क्षमता परियोजनाओं के लिए करना है। इस सम्मेलन में सीमा पार निवेश, गैर डॉलर निपटान और भुगतान प्रणालियों पर भी चर्चा होगी। भारत की अध्यक्षता में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में संपन्न होगा। सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी तीसरी बार चाइना मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गए हैं। खिताबी मुकाबले में आज दोपहर 1:50 पर भारतीय जोड़ी का सामना चीन के हे जी टिंग और रेन जियांग यू से होगा। उधर दुबई में 2020 महिला क्रिकेट एशिया कप के ग्रुप ए मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया है। पाकिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 19वें ओवर में महज 55 रन पर ही सिमट गई। जवाब में भारत ने 8 ओवर और 4 गेंद में ये लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani. The news read by Lalima Aneja Dang. Prime Minister Narendra Modi has urged young Indians to dream even bigger than previous generations and build global consulting, accounting, financial and legal firms capable of leading the world. Mr. Modi said, "Today Indians are leading the top companies of the world, so why can't companies built by Indians lead the world?" The Prime Minister was addressing centenary celebrations of Shriram College of Commerce, SRCC, at the Delhi University yesterday evening.
2: हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें?
1: Mr. Modi said India's 7.8% quarterly growth amid global uncertainty reflects its economic strength. He said, India has come a long way from policy paralysis to policy dynamism. He said, the world is watching India become the fastest growing major economy. BJP Rajya Sabha MP Dinesh Sharma has been appointed Lieutenant Governor of Andaman and Nicobar Islands. Dr. Sharma will succeed Admiral D.K. Joshi, retired, who took over as the Lieutenant Governor of Andaman and Nicobar Islands on October 8, 2017. Dr. Sharma, 62, earlier served as Deputy Chief Minister of Uttar Pradesh. His Rajya Sabha term was to end on November the 25th. A Rashtrapati Bhavan communique issued late last night said that Dr. Sharma's appointment will come into effect from the date he assumes charge of his office. Well, more than 500 institutional investors, finance ministers and business leaders will participate in the inaugural iBRICS Summit on the sidelines of BRICS Summit in New Delhi on 12th and 13th of this month. The two-day summit is designed to connect sovereign capital with bankable infrastructure, energy and digital capacity projects across 21 BRICS member states and partner nations. Sovereign wealth funds, pension funds and family offices attending the iBRICS summit manage a total wealth of $1 trillion. They will discuss cross-border investments, non-dollar settlements and payment systems among BRICS economies. As BRICS Chair 2026, India will be hosting the 18th BRICS summit on September 12th and 13th at Bharat Mandapam in New Delhi. In Nepal, the death toll from the devastating flash flood stands at 1,344, while around 5,000 people, including nearly 590 foreign nationals, remain missing. More than 13,100 people have been rescued so far. A 60-year-old woman was rescued alive after being trapped under mud and debris for 10 days in Nuwakot district. Authorities are facing difficulties in identifying the deceased, with DNA testing being used in several cases. The naval force of Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC, has claimed that it carried out strikes against three oil tankers traveling through what it described as an unauthorized route in the strategic Strait of Hormuz, as well as three vessels allegedly affiliated with the United States. The development came after the United States reportedly struck three Iranian oil tankers in the Persian Gulf and the Sea of Oman. In Egypt, television presenter Sara Khalifa and 11 others have been sentenced to death by hanging after being convicted of drug trafficking. A court found them guilty of running a criminal gang that imported raw materials to manufacture and sell illegal drugs while also possessing unlawful firearms. Khalifa, who had hosted a crime-focused TV show called Mission Impossible, has denied all allegations and claimed she only saw the narcotics when authorities forced her to pose for photos with them. In badminton, India's Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty have entered the China Masters final for the third time. The world number 5 pair defeated Malaysia's Noor Mohammad Azrin Ayub and Tan Wee Kiong 21-15, 18-21, 21-11 in the semi-final. And that's the end of this news bulletin.
3: नमस्कार, आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। राज्य के कैबिनेट मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू का हुआ आकस्मिक निधन, पूरे राजकीय सम्मान के साथ आज गिरिडीह में किया जाएगा अंतिम संस्कार, मुख्यमंत्री होंगे शामिल। राज्य सरकार ने मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू के निधन पर घोषित किया दो दिवसीय राजकीय शोक, कल बंद रहेंगे राज्य सरकार के सभी कार्यालय। झारखंड में मतदाता सूची पुनरीक्षण के तहत संशोधन के लिए अब तक मिले 5.5 लाख से अधिक आवेदन, 19 अक्टूबर को जारी की जाएगी अंतिम मतदाता सूची। रांची व आसपास के इलाकों में आज और कल हो सकती है हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश, 9 और 10 सितंबर को राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना। जापान में खेले जाने वाले एशियन गेम्स 2026 में राज्य के 7 खिलाड़ी अलग अलग खेलों में भारतीय टीम का करेंगे प्रतिनिधित्व। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड के कैबिनेट मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू का आज आकस्मिक निधन हो गया। दिवंगत मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू की अंत्येष्टि आज अपराह्न 3:30 बजे पूरे राजकीय सम्मान के साथ गिरिडीह में हरसिंह रायडीह घाट में किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसमें शामिल होंगे। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने राज्य के माननीय मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू के असामयिक निधन को राज्य के लिए अपूर्णीय क्षति बताया है। एक ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि सुदिव्य कुमार सोनू के निधन का समाचार अत्यंत दुखद एवं हृदय विदारक है। ईश्वर शोकाकुल परिजनों एवं समर्थकों को इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के कैबिनेट मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू के निधन पर गहरी संवेदना प्रकट की है। एक ट्वीट संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि देर रात उनके असामयिक निधन की खबर मिली। उनका निधन राज्य के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू के निधन पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने भी शोक व्यक्त किया है।
4: राज्य के लिए बहुत बड़ी क्षति है। बहुत जानकार और समय पड़ने पर बहुत कड़े निर्णय लेने की उनकी क्षमता थी। कैसे झारखंड के हितों की रक्षा हो उसके लिए सदैव तत्पर रहे। हम लोगों ने भी उनसे बहुत कुछ सीखने का काम किया है। तो आज विश्वास नहीं हो रहा है कि इस तरह की बात, इस तरह की घटना हो गई है।
3: मंत्री सुदेव्य कुमार सोनू के निधन पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर और खिजड़ी विधायक राजेश कच्छप ने भी शोक व्यक्त किया है। कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर ने निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे हमारे राज्य के लिए एक संकट मोचक की तरह काम करते थे।
5: मेरे बहुत नजदीकी साथी थे, बतौर मंत्री हुए बहुत अच्छा काम कर रहे थे। राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के लिए वो संकट मोचक के रूप में थे। एक राजनीतिक सूझबूझ रखने वाले व्यक्ति, उनके जाने की क्षतिपूर्ति संभव नहीं है।
3: केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू समेत अन्य नेताओं ने भी दिवंगत मंत्री सुदेव्य कुमार सोनू के निधन पर शोक व्यक्त किया है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि उनका निधन राज्य के लिए अपूर्णीय क्षति है।
6: झारखंड सरकार के मंत्री और इस तरह असामयिक निधन निश्चित रूप से बहुत ही क्षति हुई है। मिलनसार थे, लोगों से मिलना, बात करना और बहुत अच्छे विचार से लोगों से अपनी बात भी करते थे, समस्या का समाधान भी देते थे, तो हमें लगता है कि ये पुण्य क्षति है।
3: राज्य सरकार द्वारा नगर विकास मंत्री सुदेव्य कुमार सोनू के आकस्मिक निधन पर 6 और 7 सितंबर को 2 दिवसीय राजकीय शोक मनाने का निर्णय लिया गया है। इस अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके रहेंगे तथा किसी प्रकार का राजकीय समारोह नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार ने कल सभी कार्यालय बंद रखने का निर्णय लिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव विनोद कुमार पांडे ने बताया कि मंत्री सुदेव्य कुमार सोनू के निधन के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पार्टी के सभी प्रस्तावित कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया है। इस क्रम में कल राज्य के सभी प्रखंड मुख्यालय पर MMDRA एक्ट के विरुद्ध होने वाले 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। इधर भाजपा ने भी अपने सभी राजनीतिक कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया है। आज शाम प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य साहू की प्रेस वार्ता को स्थगित कर दिया गया है। आकाशवाणी के ताज़ातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत अब तक फॉर्म 6 के लिए 3,41,000 से अधिक और फॉर्म 8 के लिए 2,18,000 से ज्यादा आवेदन मिले हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अनुसार दावा व आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2026 है, जबकि अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 19 अक्टूबर 2026 को किया जाएगा। राजधानी रांची में अपराध पर नियंत्रण और पुलिस पब्लिक के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने की दिशा में रांची पुलिस ने नई पहल शुरू की है। रांची के SSP राकेश रंजन ने लोगों के साथ जनवार्ता कर उनके क्षेत्र की समस्याओं, आपराधिक गतिविधियों और नशे के कारोबार से जुड़ी जानकारियां प्राप्त की।
7: जनवार्ता प्रोग्राम के तहत जो है अलग अलग एरियाज के लोगों से मिल रहे हैं और उनसे उनकी समस्याओं को जान रहे हैं और पुलिसिंग को उनके क्षेत्र में कैसे बेहतर किया जाए, इस पर भी हम लोग सार्थक परिचर्चा जो कर रहे हैं। पुलिसिंग में कहाँ पे गैप्स रह जा रहे हैं, कहाँ पे सुधार की आवश्यकता है, उनकी जो शिकायत थी पुलिस के प्रति उसको भी हम लोगों ने सुना और समझने का प्रयास किया।
3: राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,43,900 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,45,000 रुपये प्रति किलो है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 6 और 7 सितंबर को रांची व आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं 9 और 10 सितंबर को राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। चतरा जिले में पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण जलप्रपात, तालाब और जलाशयों में जलस्तर बढ़ा हुआ है। इसके मद्देनजर जिले के उपायुक्त रवि आनंद ने जिले वासियों और खासकर अभिभावकों से अपील की है कि वे इन स्थानों पर बारिश के दौरान अपने बच्चों और परिवार के सदस्यों को अनावश्यक रूप से न जाने दें। एशियन गेम्स 2026 की शुरुआत जापान में 19 सितंबर से हो रही है। 4 अक्टूबर तक चलने वाले एशियन गेम्स 2026 में इस बार राज्य के 7 खिलाड़ी अलग अलग खेलों में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। इनमें महिला हॉकी में हॉकी टीम की 4 खिलाड़ी सलीमा टेटे, निक्की प्रधान, ब्यूटी डुंगडुंग और दीपिका सोरेंग शामिल हैं, जबकि तीरंदाजी में अंकिता भगत, साइकिलिंग में सरिता कुमारी और क्रिकेट में ईशान किशन भारत का

प्रतिनिधित्व करेंगे। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। रांची नगर निगम ने नागरिकों की सुविधा के लिए सामुदायिक भवनों की ऑनलाइन बुकिंग शुरू की है, जिसके तहत पहले चरण में 5 भवनों को जोड़ा गया है। आज से बुकिंग शुरू हो गई है। नागरिक नगर निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर बुकिंग कर सकते हैं। दुमका के तालझारी थाना क्षेत्र के नेमारी पाथर गांव में डायन के आरोप में 84 वर्षीय बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई। एसडीपीओ नवल किशोर सिंह ने बताया कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 महिलाओं को गिरफ्तार और एक किशोरी को निरुद्ध किया है, जबकि 3 फरार पुरुष आरोपियों की तलाश जारी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य के कैबिनेट मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू का हुआ आकस्मिक निधन। पूरे राजकीय सम्मान के साथ आज गिरिडीह में किया जाएगा अंतिम संस्कार। मुख्यमंत्री होंगे शामिल। राज्य सरकार ने मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू के निधन पर घोषित किया 2 दिवसीय राजकीय शोक। कल बंद रहेंगे राज्य सरकार के सभी कार्यालय। झारखंड में मतदाता सूची पुनरीक्षण के तहत संशोधन के लिए अब तक मिले 5.5 लाख से अधिक आवेदन। 19 अक्टूबर को जारी की जाएगी अंतिम मतदाता सूची। रांची व आसपास के इलाकों में आज और कल हो सकती है हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश। 9 और 10 सितंबर को राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश की है संभावना। और जापान में खेले जाने वाले एशियन गेम्स 2026 में राज्य के 7 खिलाड़ी अलग अलग खेलों में भारतीय टीम का करेंगे प्रतिनिधित्व। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 1:20 हो चुके हैं दोस्तों। ये वक्त है उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम अनुरंजनी का। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज के कलाकार हैं सिद्धेश्वरी देवी। आप खमाज में ठुमरी प्रस्तुत करेंगी।

अनुरंजनी उप शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में आज के कलाकार थे सिद्धेश्वरी देवी। आपने इनसे खमाज में ठुमरी गायन सुना। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 1:45 हो रहे हैं दोस्तों। ये वक्त है कार्यक्रम सुगम संगीत का। इसके अंतर्गत आइए सुनते हैं भूपेंद्र और मिताली की गाई कुछ गजलें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की आर्थिक क्षमता और नीतिगत गतिशीलता देश को विकसित राष्ट्र की ओर ले जा रही है। भारतीय कंपनियों से वैश्विक नेतृत्व का आह्वान किया। भारत ने समान क्षेत्रफल वाले विश्व मानचित्र को अपनाने के संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का समर्थन किया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारतीय मानचित्र के अनुसार दर्शाने की बात दोहराई। कहा, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से कोई समझौता नहीं। मध्य प्रदेश के सागर जिले में जहरीली शराब से 10 लोगों की मौत, कई अस्पताल में भर्ती। ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य में अमेरिका के 3 टैंकरों और जहाजों पर हमला किया। तेज बारिश के बाद बिहार और उत्तर प्रदेश में बाढ़ की स्थिति गंभीर हुई। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले में आज सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना चीन के हे जी टिंग और रेन रियांग यू से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से बड़े सपने देखने और दुनिया का नेतृत्व करने का आह्वान किया है। वे कल दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब भारत के लोग दुनिया की बड़ी कंपनियों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, तो भारतीय कंपनियां भी दुनिया का नेतृत्व कर सकती हैं। उन्होंने युवाओं से यूनिकॉर्न बनाने, ड्रोन तकनीक में नवाचार करने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में आगे बढ़ने का आह्वान किया।
1: भारत की ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म्स क्यों नहीं हो सकती? हमारी अकाउंटिंग फर्म, हमारी लीगल फर्म, हमारी फाइनेंशियल फर्म, ये सब ग्लोबल लीडर्स क्यों नहीं बन सकती? हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं, तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें?
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया भारत की तेज आर्थिक वृद्धि और नीतिगत बदलावों की सराहना कर रही है। उन्होंने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की 7.8% की तिमाही आर्थिक वृद्धि देश की क्षमताओं को दर्शाती है।
1: जो दुनिया तब भारत में पॉलिसी पैरालिसिस से चिंतित थी, वो दुनिया आज भारत के पॉलिसी डायनामिज्म की चर्चा कर रही है। तब दुनिया भारत को फ्रजाइल फाइव बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही। अभी हफ्ते भर में ही भारत की इकोनॉमी को लेकर कई सारी पॉजिटिव खबरें आई। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है।
0: श्री मोदी ने मेक इन इंडिया की सफलता का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत अब प्रमुख निर्यातक राष्ट्र बन रहा है। स्मार्टफोन का निर्यात 2,50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है, जबकि देश का रक्षा उत्पादन करीब 2,00,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री ने देश में तेजी से हो रहे बुनियादी ढांचे के विकास का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जिन परियोजनाओं को पूरा होने में पहले दशकों लगते थे, वे अब कुछ ही वर्षों में पूरी हो रही हैं। उन्होंने रेलवे के विद्युतीकरण का उदाहरण देते हुए कहा कि वर्ष 2014 तक 30% से भी कम रेल लाइनों का विद्युतीकरण हुआ था, जबकि पिछले 12 वर्षों में लगभग 100% रेलवे विद्युतीकरण किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह 3 दिवसीय गोवा दौरे पर हैं। वे कल रात गोवा पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री शाह आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे।
2: अमित शाह ने आज मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत के साथ गोवा से जुड़े अहम मुद्दों पर समीक्षा बैठक की। इसके बाद वे जल्द ही मीडिया से बातचीत करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। अमित शाह आज बीजेपी के नए प्रदेश कार्यालय अटल भवन का उद्घाटन भी करेंगे। वे पार्टी की स्टेट कोर कमेटी के सदस्यों से भी मुलाकात करेंगे। कल 28वें वेस्टर्न जोनल काउंसिल मीटिंग की बैठक में शामिल होंगे और गोवा पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस कलर प्रदान करेंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: मध्य प्रदेश के सागर जिले में जहरीली शराब पीने से 10 लोगों की मौत हो गई है, जबकि करीब 35 लोगों का अस्पताल में उपचार चल रहा है। इनमें कुछ की हालत गंभीर है। यह मामला बांदा थाना क्षेत्र के नौरोजा और घुघरा खुर्द गांवों का है। शुरुआती जांच में शराब में मिथाइल अल्कोहल होने की आशंका जताई गई है। कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मामले की जाँच के आदेश दिए हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्रालय ने समान क्षेत्रफल वाले विश्व मानचित्र को लेकर भारत का रुख स्पष्ट किया है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में समान क्षेत्रफल वाले मानचित्र से जुड़े प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है। उन्होंने कहा कि भारत के संप्रभु क्षेत्र, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी शामिल है, उन्हें भारत के आधिकारिक मानचित्र के अनुसार ही दिखाया जाना चाहिए। किसी भी गलत या भ्रामक चित्रण को भारत स्वीकार नहीं करेगा। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को लेकर सरकार का रुख स्पष्ट तथा अडिग है। उन्होंने ये भी कहा कि ये प्रस्ताव किसी खास मानचित्र, प्रक्षेपण या किसी देश की सीमा के चित्रण का समर्थन नहीं करता। होर्मुज जल डमरू मध्य के आसपास अमेरिका ईरान संघर्ष में इस सप्ताह एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। दोनों पक्षों ने होर्मुज जल डमरू मध्य और उसके आसपास जहाजों पर हमले किए हैं। कल के ताजा घटनाक्रम में अमेरिका की केंद्रीय कमान सेंटकॉम ने कहा कि उसने ईरान के 3 तेल टैंकरों को निष्क्रिय कर दिया है। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने भी दावा किया है कि उसकी नौसेना ने होर्मुज जल डमरू मध्य के संरक्षित क्षेत्र में घुसने का प्रयास कर रही रिमोट से संचालित अमेरिका की एक नाव को निशाना बनाया है। अमेरिका के दूत आज यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचेंगे। शांति प्रक्रिया के तहत अमेरिकी दूतों की यह यूक्रेन की पहली यात्रा है। इससे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कल क्रेमलिन में अमेरिकी दूतों स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुश्नर से मुलाकात की थी। बातचीत के बाद राष्ट्रपति पुतिन ने कीव पर रूसी हमलों को 3 दिन के लिए रोकने का आदेश दिया। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन भी सोमवार तक मॉस्को पर हमले रोकने के लिए तैयार है। नेपाल में अचानक आई विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या 1,344 हो गई है। 590 विदेशी नागरिकों सहित लगभग 5,000 लोग अभी भी लापता हैं। अब तक 13,100 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है। मृतकों की पहचान के लिए DNA परीक्षण की सहायता ली जा रही है। 1,270 अज्ञात शवों का विवरण नेपाल पुलिस की वेबसाइट पर दिया गया है। भारत और चीन की टीमों की सहायता से कई पनबिजली परियोजनाओं में बचाव अभियान अब भी जारी है। उधर चीन के चियांगशी प्रांत में तेज बारिश के बाद भूस्खलन में 2 लोगों की मौत हो गई। तूफान सॉडेल से कई दिन की मूसलाधार बारिश के कारण ये दुर्घटना हुई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@airnewshindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। उत्तर प्रदेश में तेज बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण 24 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज चित्रकूट जिले में स्थिति और राहत बचाव कार्यों का जायजा लिया।
4: राज्य की कई नदियां अभी भी उफान पर हैं। बदायूं, गाजीपुर और बलिया में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और फरुखाबाद में खतरे के निशान के नजदीक पहुंच गई है। वहीं लखीमपुर खीरी और बाराबंकी में शारदा तथा अयोध्या और तुर्तीपार बलिया में घाघरा नदी का जलस्तर भी खतरे के निशान के पार पहुंच गया है। चित्रकूट के राजापुर में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल वाराणसी में वरुणा नदी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ राहत शिविर में पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात की और राहत सामग्री बांटी। उधर मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक प्रदेश के पूर्वी हिस्से और आगामी 2 दिनों तक पश्चिमी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: बिहार के कई हिस्सों में भी बाढ़ के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है। इस बीच मौसम विभाग ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में कल तक बारिश की आशंका है। वहीं दिल्ली में भी लगातार दूसरे दिन बारिश हो रही है। इसके चलते कई इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक की रफ्तार धीमी हो गई है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, झारखंड और छत्तीसगढ़ में कल बिजली गिरने की भी संभावना है। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियां तेज हो गई हैं। ये विशेष सम्मेलन 12 और 13 सितंबर को भारत मंडपम में आयोजित होगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि आयोजन की सुरक्षा तैयारियों के अंतर्गत आज सुबह दिल्ली पुलिस ने मोटर काफिले की रिहर्सल की और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।
5: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर NDMC क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को और भी मजबूत किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस के अनुसार यमुना नदी के किनारे सुरक्षा उपायों की भी समीक्षा की गई है। इस बीच NDMC नई दिल्ली के प्रमुख इलाकों में सौंदर्यकरण और सड़कों के स्वरूप में सुधार से जुड़े कार्य कर रही है। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्रिक्स के सदस्य और साझेदार देशों के नेताओं, आउटरीच देशों तथा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों को एक मंच पर एकत्रित करेगा। समर्थ के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: हमारे संवाददाता ने बताया कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर आईब्रिक्स शिखर सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में वित्त मंत्री और 500 से अधिक संस्थागत निवेशक तथा उद्योगपति शामिल होंगे। आईब्रिक्स का उद्देश्य ब्रिक्स के 21 सदस्य और साझेदार देशों में संप्रभु पूंजी का उपयोग, विश्वसनीय बुनियादी ढांचे, ऊर्जा तथा डिजिटल क्षमता परियोजनाओं के लिए करना है।
6: सम्मेलन में सीमा पार निवेश, गैर डॉलर निपटान और भुगतान प्रणालियों पर चर्चा होगी। इसके अलावा भारत की UPI भुगतान प्रणाली और ब्राजील की पिक्स भुगतान प्रणालियों को जोड़ने तथा डिजिटल मुद्राओं में कारोबार पर भी चर्चा होने की संभावना है। ये शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब ब्रिक्स देश व्यापार गतिशीलता, अमेरिकी शुल्क के दबाव और उच्च डॉलर लागत के समाधान के लिए स्वयं को अनुकूलित कर रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। समाचार कक्ष
0: भारतीय वायुसेना की सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम दूसरे अल अलामीन अंतरराष्ट्रीय एयर शो में भाग लेने के लिए मिस्र पहुंच चुकी है। ये एयर शो 8 से 10 सितंबर तक अल अलामीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आयोजित किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि टीम सुनियोजित प्रदर्शनों की श्रृंखला के माध्यम से सटीकता, पेशेवर अंदाज और उड़ान कौशल का प्रदर्शन करेगी। मंत्रालय ने यह भी बताया कि सारंग टीम देश में ही डिजाइन और निर्मित उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ध्रुव का संचालन करेगी। डॉक्टर दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। डॉक्टर शर्मा फिलहाल उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सांसद हैं और वे राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि वे अपनी नई जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगे।
7: जो निर्देश होगा, जो भी प्रधानमंत्री जी का, वो सबको स्वीकार है और हमेशा मैं एक कार्यकर्ता की तरह रहा हूँ, तो जो भी हमारे पार्टी का नेतृत्व आदेश देता है वो सिद्ध करना हमारा काम है। जो प्रधानमंत्री जी का विश्वास है उसको पूरा करूँ, यही मेरी इच्छा है।
0: आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में शहरी स्थानीय निकायों के साधारण चुनाव कराने के लिए सांविधिक नियम जारी किए हैं। ये नियम महापौर, अध्यक्षों और वार्ड सदस्यों के प्रत्यक्ष चुनाव के साथ साथ उपमहापौर और उपाध्यक्षों के अप्रत्यक्ष चुनाव के लिए बनाए गए हैं। संशोधित कानूनों के तहत नगर निगमों के महापौर और नगर पालिकाओं तथा नगर पंचायतों के अध्यक्षों का चुनाव मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष तौर पर किया जाएगा। सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी तीसरी बार चाइना मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गए हैं। भारतीय जोड़ी का मुकाबला चीन के हे जी टिंग और रेन जियांग यू से होगा। विश्व के पांचवें नंबर की भारतीय जोड़ी ने सेमीफाइनल में मलेशिया के नूर मोहम्मद, अजनियन अयूब और टेन वी कियोंग को पराजित किया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की आर्थिक क्षमता और नीतिगत गतिशीलता देश को विकसित राष्ट्र की ओर ले जा रही है। भारतीय कंपनियों से वैश्विक नेतृत्व करने का आह्वान किया। भारत ने समान क्षेत्रफल वाले विश्व मानचित्र को अपनाने के संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का समर्थन किया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारतीय मानचित्र के अनुसार दर्शाने की बात दोहराई। कहा, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से कोई समझौता नहीं। मध्य प्रदेश के सागर जिले में जहरीली शराब से 10 लोगों की मौत, कई अस्पताल में भर्ती। ईरान ने होर्मुज जलडमरों मध्य में अमेरिका के 3 टैंकरों और जहाजों पर हमला किया। और चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले में आज सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना चीन के हे जी टिंग और रेन जियांग यू से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: दोस्तों, दोपहर समाचार अभी आप सुन रहे थे हमारे दिल्ली केंद्र से। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2:30 हो चुके हैं। दोस्तों, ये वक्त है 40 भाइयों के कार्यक्रम जय भारती का। ये कार्यक्रम आज आप सुनेंगे सीमा तिवारी के साथ।

0: जय भारती। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। फौजी भाइयों, मैं हूं आपके साथ सीमा तिवारी। वो हवाएं न जाने उनका संदेश लाई हैं या नहीं, वो हवा तो उनके दर से होकर आ रही होगी। ऐसे न जाने कितने प्रश्न आप सभी के मन में आते होंगे। जय भारती कार्यक्रम में हमारी कोशिश है उन परतों को भी छूने की जो आपने थोड़ा संभाल कर, थोड़ा बचा कर और थोड़ा छुपा कर रखा है। उन आँखों के भीगे कोनों को भी हमने महसूस किया है, उस मुलाकात की बेचैनी को।
1: मैं चाहता हूँ कि हम दोनों का बिजली का बिल एक ही एड्रेस में आए।
0: पहले कनेक्शन तो एक हो जाए।

फौजी भाइयों, आप सभी की तरफ हम सभी देखते हैं हक से, आशा से, विश्वास से। हर किसी को आपने संभाला है, बॉर्डर पर ही नहीं बल्कि देश के ऊपर कोई संकट आए, आपको आवाज दी जाए, आप सबसे पहले आते हैं। बाढ़ हो, कोई परेशानी हो, लेकिन आपके सामने आपके अपने चाहने वाले आपके लिए ही रो दें तो क्या कहला कहकर बहलाया आपने। ये काजल लगाने के लिए होते हैं, बहाने के लिए नहीं।

दोस्तों, जय भारती कार्यक्रम में हमारी कोशिश यही रहती है कि हम अपने सैनिक भाइयों को केवल युद्ध भूमि के वीर के रूप में नहीं, बल्कि एक पिता, एक पति, एक भाई, एक प्रेमी और सबसे बढ़कर एक संवेदनशील इंसान के रूप में महसूस करने की कोशिश करें, क्योंकि सरहद पर खड़े आप पत्थर की तरह मजबूती के साथ खड़े तो हैं, लेकिन आप पत्थर नहीं, आपका दिल पत्थर नहीं। आपको भी ठंड लगती है, आपको भी घर की याद आती है, आपको भी किसी के फोन का इंतजार है, किसी के संदेश का इंतजार है। आपका दिल भी उसी शिद्दत से धड़कता है जितना कि हमारा। हम अपने प्रेम के पास रहकर जीवन जीते हैं और आप अपने प्रेम से दूर रहकर हमारे जीवन की हिफाजत करते हैं। उन तमाम सैनिकों के नाम जिनकी वजह से हमारे घरों की रातें बेफिक्र हैं, उन परिवारों के नाम जिनका इंतजार भी देश सेवा का एक मौन हिस्सा है।

और कभी आपकी डायरी में जो आपने लिखा था, पढ़ा हमने और महसूस किया, इस तरह आता हूँ बाजारों के बीच, जैसे नींद आ जाए बेदारों के बीच, मैं मुसलसल मुलतवी होता हुआ, हर घड़ी हर गाम तैयारों के बीच, लड़खड़ाने लगती है सांसें मेरी, हर नफस हर हाल हमवारों के बीच।

जय भारती। ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे सीमा तिवारी के साथ। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2:55 होने वाले हैं। अगला कार्यक्रम अब से थोड़ी ही देर में।

0: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की खड़ी में 2:55 बस होने वाले हैं। ये वक्त है प्रादेशिक समाचार का।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नूतन लकड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को बड़े सपने देखने और दुनिया का नेतृत्व करने का आह्वान किया। नई दिल्ली में श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जब भारतीय लोग दुनिया की बड़ी कंपनियों का नेतृत्व कर सकते हैं तो भारतीय कंपनियां भी दुनिया का नेतृत्व कर सकती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया भारत की तेज आर्थिक वृद्धि और नीतिगत बदलावों की सराहना कर रही है।
1: दुनिया भारत को फ्रजाइल फाइव बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही है। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है।
0: राज्यपाल संतोष गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और विधायक कल्पना सोरेन हेलीकॉप्टर से आज गिरिडीह पहुंची। सभी ने मंत्री सुदिव्य कुमार के आवास पर पहुंचकर शोक संवेदना जताई। इधर मंत्री सुदिव्य कुमार के निधन पर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। भाजपा, कांग्रेस और झामुमो के नेताओं ने उनके निधन को अपूर्णीय क्षति बताते हुए शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने श्री कुमार के निधन को बेहद दुखद बताया।
2: हम सब लोगों के बीच नहीं रहे, ये दुखद घटना है। मैं समझता हूँ कि गिरिडीह में उनकी जो रिक्तता है वो तो कोई पूर्ति नहीं कर सकता है। घटना अपने आप में बड़ा दुखद है और स्वाभाविक है। लगता हूँ कि भाई एक तो दिलेर थे और सदन में भी हमें लगता है कि हर लोगों की जवाब देने की वो कोशिश भी करता, बोलते भी थे, नहीं उनको हाजिर जवाबी भी थे।
0: राज्य सरकार ने मंत्री और झामुमो के वरिष्ठ नेता सुदिव्य कुमार के निधन पर आज और कल दो दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। इस दौरान राज्य सरकार के सभी निर्धारित कार्यक्रम रद्द रहेंगे और कल सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। राजकीय शोक के दौरान नियमित रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाने वाले सरकारी भवनों पर तिरंगा आधा झुका रहेगा। 56 वर्षीय सुदिव्य कुमार का आज तड़के गिरिडीह के एक निजी अस्पताल में हृदयाघात से निधन हुआ। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। गौंग था। आज रांची स्थित अपने आवास पर कार्यकर्ताओं और नागरिकों से मुलाकात की। उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और उनके त्वरित समाधान का भरोसा दिलाया। इस दौरान कई मामलों के समाधान के लिए उन्होंने संबंधित अधिकारियों से दूरभाष पर बात की। श्री सेठ ने अधिकारियों को समस्याओं पर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। पूर्वी सिंहभूम जिले के एग्रीको क्लब हाउस परिसर में आज आगामी दुर्गा पूजा को लेकर विधिवत भूमि पूजन किया गया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच आयोजित भूमि पूजन में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास मुख्य यजमान के रूप में शामिल हुए। भूमि पूजन के साथ ही इस वर्ष दुर्गा पूजा की तैयारियों का शुभारंभ हो गया है। रांची पटना राष्ट्रीय मार्ग 33 पर रामगढ़ की चुट्टुपाली घाटी में आज एक कंटेनर के कार को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में कार सवार और रामगढ़ के पुलिस उपाधीक्षक अकरम रजा के निकटतम संबंधी की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हुए हैं। घायलों का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस के अनुसार ब्रेक फेल होने के बाद कंटेनर ने कार को अपनी चपेट में लिया। पलामू जिले के हैदर मोहम्मदगंज मुख्य पथ पर सबनवा गांव के समीप सड़क हादसे में आज एक स्कूटी सवार युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद पिकअप वाहन का चालक वाहन लेकर फरार हो गया। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने करीब 3 घंटे तक मुख्य सड़क जाम रखी, जिसे पुलिस और प्रशासन के समझाने पर हटाया गया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 3 बज चुके हैं दोस्तों। ये वक्त है कुछ फिल्म संगीत का आनंद लेने का।

मन है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कुछ फिल्मी गीत। हम आकाशवाणी के नाट्य केंद्र से बोल रहे हैं। हम आपको बता दें, 3:10 पर आप सुन सकेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से पॉडकास्ट सीरीज पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।

0: Embong successfully completed the 77-kilometer ultra marathon and secured first position in 21-kilometer age category. Meena Kumari Subba secured second runner-up in the open 77-kilometer category, while Susmita Rai claimed first position in her age category in the 77-kilometer event and second position in the 42-kilometer event. Sanmaya Subba secured fifth position in her age category in both the 77-kilometer and 42-kilometer events, while Binita Kami secured first position in her age category in the 42-kilometer event. Shobha Rai secured third position in her age category in the 21-kilometer Surya Spiti Challenge.
1: Mainti Kamangar, Sikkim se. Sikkim se Spiti tak ka mera safar mere liye sirf ek marathon mein hissa lene ka yatra nahi thi, balki khud ko chunauti dene aur apni simaon ko pehchanne ka anubhav tha. To Sikkim ke pahadon se nikalkar Spiti ghati ke kathin aur unchai wale raston tak pahunchna apne aap mein romanchak था. तो 77 किलोमीटर की अल्ट्रा मैराथन पूरी करना मेरे लिए आसान नहीं था, क्योंकि मैं जब गाजा पहुंच गई थी स्कीम से तो उस समय मेरा हेल्थ ठीक नहीं था, मतलब बिगड़ गया था पूरी तरह से. तो एक दो दिन तो मैं पूरी तरह से बीमारी पड़ी रही और 77 का रन था जिस दिन, तो उस दिन से एक दिन पहले मैंने डॉक्टर से भी कंसल्ट की थी कि मैं कल करूं या ना करूं, रन करूं या ना करूं. तो उन्होंने देखकर फिर कुछ क्वेश्चन किया, तो उसके बाद कर सकते हो बोला, तो मैंने 77 किया. तो ये 77 किलोमीटर के अल्ट्रा मैराथन पूरी करना मेरे लिए आसान नहीं था. कई बार शरीर थक गया और मन ने रुकने को कहा, लेकिन मैं खुद को हिम्मत दी और आगे बढ़ती रही. रास्ते की खूबसूरत हरियाली वादियों ने मेरा उत्साह बनाए रखा. तो फिर 30 तारीख को फिर जो था 21 किलोमीटर का हाफ मैराथन था, 21 किलोमीटर जो सुमदो में हुआ था. तो उसमें 21 किलोमीटर की दौड़ में अपने आयु वर्ग में प्रथम स्थान हासिल करना मेरे लिए बेहद गर्व और खुशी का पल था. सबसे बड़ी खुशी इस बात की थी कि वो रास्ता बहुत ऊपर की तरफ था ना, जो ऊंचाई की तरफ था, 10 किलोमीटर ऊंचाई की तरफ ही दौड़ना था, उसके बाद ही नीचे फिर आना था. तो इस बात की सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि मैं स्पीति में है सिक्किम का प्रतिनिधित्व कर सकी. इस यात्रा ने मुझे सिखाया कि दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास से हम अपने सोच से कहीं आगे जा सकते हैं. ये 77 किलोमीटर जो अल्ट्रा मैराथन हुआ था उसे काजा जो कुंजुमला वैली में हुई थी, जहाँ पे जो हाई

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो के घड़ी में 3:25 बस होने ही वाले हैं दोस्तों। ये वक्त है रांची मेलेडीज का।

वो हमसे अनजान रहे जिनकी हम पहचान रहे, दोनों चुप थे यानी वो दोनों एक जुबान रहे।

शोर की इस भीड़ में खामोश तन्हाई से तुम, जिंदगी है धूप तो मदमस्त पुरवाई से तुम। आज मैं बारिश में जब भीगा तो तुम जाहिर हुए, जाने कब से रह रही थी मुझ में अंगड़ाई से तुम। चाहे महफिल में रहूं चाहे अकेले में रहूं, गूंजती रहती हो मुझ में शोख तन शहनाई से तुम।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

0: स्वयं ही घट पड़े भारतीय सेना।
1: तेरा मेरा रिश्ता क्या, तूने अब तक सोचा क्या, वाकिफ हूं मैं सीरत से, अब सूरत पे पर्दा क्या, हम तुम चांद नदी कश्ती, सच होता हर सपना क्या।

ख्वाबों में जो एक शहर बना देता है मुझको, जब आँख खुली हो तो वो चेहरा नहीं होता। किसकी है ये तस्वीर जो बनती नहीं मुझसे, मैं किसका तकाजा हूँ कि पूरा नहीं होता।

रांची मेलेडीज अभी आप सुन रहे थे सीमा तिवारी के साथ। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 4 बजने वाले हैं। बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे अब तक के मुख्य समाचार।

नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं नूतन लकड़ा। राज्यपाल संतोष गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज गिरिडीह के हरिसिंह रायडी स्थित स्वर्गीय सुदिव्य कुमार के आवास पहुंचकर उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात कर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुदिव्य कुमार का आकस्मिक निधन झारखंड के लिए अपूरणीय क्षति है और राज्य ने एक कर्मठ जनप्रतिनिधि तथा समर्पित मंत्री खो दिया है। उन्होंने कहा कि सुदिव्य कुमार के योगदान और सेवाओं को सदैव

स्मरण किया जाएगा। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने उच्च शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार के निधन पर गहरा शोक जताया है। आज गिरिडीह में श्रद्धांजलि देने के बाद उन्होंने कहा कि मंत्री के निधन से हुई क्षति की भरपाई संभव नहीं। इधर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि सुदिव्य कुमार उनके लिए सिर्फ एक साथी मंत्री नहीं बल्कि भाई के समान थे और उनकी कमी हमेशा महसूस होगी। राज्य सरकार ने मंत्री और झामुमो के वरिष्ठ नेता सुदिव्य कुमार के निधन पर आज और कल दो दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। इस दौरान राज्य सरकार के सभी निर्धारित कार्यक्रम रद्द रहेंगे और कल सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। राजकीय शोक के दौरान सरकारी भवनों पर तिरंगा आधा झुका रहेगा। 56 वर्षीय सुदिव्य कुमार का आज तड़के गिरिडीह के एक निजी अस्पताल में हृदयाघात से निधन हुआ। राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा पर निकले छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो आज सिमडेगा पहुंचे। उन्होंने परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में युवाओं से मुलाकात की। हजारीबाग के कुम्हार टोली स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में दो दिवसीय विज्ञान मेला 2026 का आयोजन किया जा रहा है। विद्या विकास समिति की ओर से आयोजित मेले में राज्य भर से 701 बाल वैज्ञानिक भाग ले रहे हैं। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के नाट्य केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की खड़ी में 4:02 हो चुके हैं दोस्तों। ये वक्त है कार्यक्रम बाल सभा का। इस कार्यक्रम के सूत्रधार हैं अवधेश कुमार और शिल्पी। कार्यक्रम की प्रस्तुति गौरव कुमार पांडे की।

0: ज्ञान की ज्योति मन में जलाएं, सपनों को आप सच कर दिखाएं। किताबें हैं सच्ची साथी, इनसे मिलती नई प्रभाती।
1: बच्चों, हर अक्षर है ज्ञान का दीप, आज पढ़ेंगे कल बढ़ेंगे, अपने सपनों के रंग भरेंगे। इसलिए शिक्षा को बनाएं अपनी पहचान, दूर करें सारा अंधकार।
0: हाँ बच्चों, आप सभी के आंखों में भी एक सपना होगा, कोई डॉक्टर, कोई शिक्षक, तो कोई वैज्ञानिक, या फिर जो हमारे सामने नन्हा सा बच्चा बैठा है ना भैया, वो खिलाड़ी बनना चाहता हो।
1: लेकिन बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि इन सपनों तक पहुंचने का रास्ता कहां से शुरू होता है, उसकी चाबी कहां है?
0: बच्चों, उसकी चाबी है शिक्षा। शिक्षा वो ताकत है जो बंद दरवाजे को भी खोल सकती है। यहाँ एक बात और कहना चाहूंगी कि शिक्षा केवल किताबें पढ़ने और परीक्षा में अच्छे अंक लाने का नाम नहीं है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने दीदी। शिक्षा हमें सही और गलत में अंतर करना, सवाल पूछना, समस्याओं का समाधान ढूंढना और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना सिखाती है।
0: बच्चों, शिक्षा देती है सपनों को पंख, भर देती जीवन में उमंग। बच्चों, एक छोटी सी चाबी है और सफलता का बड़ा दरवाजा, वो है शिक्षा।
1: लेकिन बच्चों, ये चाबी तभी काम करती है जब आप इसे मेहनत, अनुशासन और अच्छे संस्कारों के साथ इस्तेमाल करते हैं। पढ़ाई में खूब मन लगाइए, मुश्किलों से घबराइए नहीं, अपने गुरुजनों का आदर सम्मान कीजिए और जहां उलझन हो उसका हल भी उनसे पूछिए।
0: हाँ बच्चों, एक बात याद रखिए कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, यह तो रोज की छोटी छोटी कोशिशों से बनती है। अगर आज गणित का कोई सवाल नहीं बन पाया तो हार मानकर छोड़िए मत, बल्कि उसे दोबारा बार बार प्रयास करिए।
1: और हाँ, पढ़ाई को बोझ मत समझिए, उसे नए अंदाज से पढ़िए, थोड़ा अंतराल भी लीजिए।
0: बिल्कुल बच्चों, जैसे किताबें आपकी सच्ची दोस्त है ना, वो हमेशा साथ रहती है, वैसे ही गुरु भी

0: आपके मार्गदर्शक हैं, इसलिए अपने गुरु का सम्मान कीजिए और उनकी बातों को ध्यान से सुना करिए।
1: हाँ बच्चों, शिक्षक का सम्मान केवल उनके सामने या कक्षा तक नहीं, बल्कि असली सम्मान है उनकी बात को ध्यान से सुनना, समय पर अपना काम करना, दिए गए होमवर्क को पूरा करना और विद्यालय में अनुशासित रहना तथा सभी कक्षाओं के प्रति जागरूक रहना और अपने कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक होना।
0: बच्चों, आपके गुरु केवल हिंदी, गणित, विज्ञान या सामाजिक विज्ञान नहीं सिखाते, वे आपको समय की कीमत, अनुशासन, ईमानदारी, दया और प्रकृति के प्रति जिम्मेवारी, माता पिता तथा सभी बड़ों के प्रति सम्मान, आपके कर्तव्य को भी वो सिखाते हैं।
1: हाँ बच्चों, इसलिए विद्यालय में सिखाई गई बातों को गौर से सुनिए। शिक्षक आपके भविष्य के निर्माता हैं, उनका सम्मान करना केवल एक दिन की जिम्मेदारी नहीं है बच्चों, बल्कि संस्कारों की इससे पहचान होती है।
0: बच्चों, शिक्षक की बात को कक्षा में ध्यान से सुनना चाहिए और समय पर आपको विद्यालय आना चाहिए। अपने विद्यालय के प्रांगण को स्वच्छ बनाने में सहयोग भी करें।
1: हाँ बच्चों, शिक्षक की सीख को अपने जीवन में उतारें और अपने सहपाठियों के साथ भी मधुर व्यवहार रखना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे के साथ पाठ्यक्रम को समझने और परीक्षा की तैयारी में इससे मदद मिलती है।
0: बच्चों, शिक्षक के सामने अपनी बात रखते समय सभ्य भाषा का प्रयोग करना चाहिए। मधुर और शालीनता से प्रश्न पूछिए।
1: बच्चों, शिक्षक के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना भी सीखें। जब पढ़ाई में कठिनाई आए तो बेझिझक उनसे पूछिए भी, और उन्हें पैर छूकर प्रणाम करना और उन्हें धन्यवाद कहना भी चाहिए।
0: बिल्कुल, बहुत सही बात भैया ने कही। और एक बात और कहना चाहूंगी कि अगर आपके टीचर किसी गलती को सुधारते हैं तो उसे अपमान मत समझिए। गुस्सा नहीं होना चाहिए, बल्कि सीखने का अवसर मिला, आप इसे इस बात को समझिए।
1: तो बच्चों, जैसे अपने माता पिता को आप सम्मान देते हैं, वैसे अपने टीचर को भी सिर्फ स्कूल में ही नहीं, स्कूल से बाहर भी उनका सम्मान करें।
0: बिल्कुल, और हमें उम्मीद है कि आप हमारे इस बात को ध्यान से सुने होंगे और आप हमें कभी निराश नहीं कीजिएगा, है ना बच्चों? क्योंकि गुरु बिन ज्ञान कहाँ। तो आइए अब आपको ले चलते हैं और सुनवाते हैं एक प्यारा सा बाल गीत।

0: अच्छा लगा ना ये गीत बच्चों आपको? अब आपकी बारी आती है सुनाने की, और हमें लगता है कि सब बच्चे तैयार हैं भैया, तो सुनाइए आप अपने मुख से आज क्या सुनाना चाहेंगे। आपका नाम क्या है?
1: जी मेरा नाम राजनंदिनी सिंह है।
0: और आप किस क्लास में पढ़ती हैं?
1: जी मैं कक्षा 6 अ की छात्रा हूँ।
0: और आज आप क्या सुनाएंगी?
1: जी 5 सितंबर को, कल ही हमने शिक्षक दिवस अपने कक्षा में मनाया था।
0: बिल्कुल।
1: मैं अपने दोस्तों से कुछ बातें साझा करना चाहती हूँ जिससे उन्हें समझ आए कि हम शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं। मैं अपनी बातों को शुरुआत इन लाइनों से करना चाहती हूँ। मैन हैज लर्न टू फ्लाई लाइक बर्ड्स, मैन हैज लर्न टू स्विम लाइक फिशेस, बट मैन हैज नॉट येट लर्न टू लिव लाइक अ ह्यूमन बीइंग। मतलब इंसान ने पक्षियों की तरह उड़ना तो सीख लिया है, इंसान ने मछलियों जैसा तैरना भी सीख लिया है, लेकिन अभी तक इंसान की तरह जीना नहीं सीखा है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के विचारों से जुड़ी यह पंक्तियाँ हमें एक बहुत बड़ा संदेश देती है। मनुष्य ने विज्ञान और तकनीक के सहारे आकाश की ऊंचाइयों को छू लिया, समुद्र की गहराइयों को नाप लिया और अंतरिक्ष तक पहुंच गया, लेकिन क्या केवल इतना ही विकास हमें एक श्रेष्ठ मनुष्य बना देता है? शायद नहीं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक महान शिक्षक, दार्शनिक और भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। उनका जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था। वे मानते थे कि शिक्षा का उद्देश्य केवल पुस्तकों का ज्ञान प्राप्त करना नहीं था या परीक्षा में अच्छे अंक लाना। सच्ची शिक्षा वह है जो हमारे भीतर ज्ञान के साथ विनम्रता, बुद्धि के साथ विवेक और सफलता के साथ संवेदनशीलता पैदा करती है। आज हमारे पास स्मार्टफोन्स हैं, स्मार्ट क्लासेस हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है। हम एक क्लिक में दुनिया के साथ जुड़ सकते हैं, लेकिन यदि हम अपने आसपास के लोगों के दुख को न समझ सके, किसी जरूरतमंद की सहायता न कर सकें और एक दूसरे का सम्मान न कर सकें, तो हमारी शिक्षा हमेशा के लिए अधूरी रह जाती है। डॉक्टर राधाकृष्णन का जीवन हमें यह सिखाता है कि एक अच्छा विद्यार्थी बनना महत्वपूर्ण है, लेकिन एक अच्छा इंसान बनना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण होता है। उनके जन्मदिन 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। ये दिन केवल शिक्षकों को फूल और कार्ड देना कर नहीं होता, बल्कि उनके द्वारा दिए गए ज्ञान और संस्कारों को अपने जीवन में उतारने का भी दिन है। तो इस शिक्षक दिवस पर हम अपने आप से एक छोटा सा प्रश्न पूछेंगे, क्या हम केवल आगे बढ़ रहे हैं या बेहतर इंसान भी बन रहे हैं? क्योंकि आसमान में उड़ना हमें सीख लिया है, समंदर की गहराइयों को भी जान लिया है, अब जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा बाकी है इंसान होकर इंसानियत जीना। महान शिक्षक और दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मेरा शत शत नमन।
0: बहुत सुंदर। और आपके

0: क्या क्या शौक हैं ये बताइए।
1: जी मेरे शौक तो कई हैं, लेकिन इनमें से मेरे कुछ बहुत मतलब मेरी फेवरेट हॉबीज कुछ ये हैं। जैसे मैं अभी हाल ही फिलहाल में मैंने कुछ बुक्स पढ़ना स्टार्ट की हैं, तो वो भी
0: जी,
1: मेरे हॉबीज में ऐड हो सकती हैं। और मुझे डांसिंग सिंगिंग बहुत पसंद है।
0: और कविता या कहानी पढ़ना सुनना पसंद है या नहीं?
1: जी मुझे पंचतंत्र की कहानियां बहुत पसंद आती
0: पसंद है।
1: हैं। जी
0: और कविताएं
1: कविताएं भी मैं कभी कभार पढ़ लेती हूँ।
0: सुनाना चाहोगी?
1: जी मुझे रहीम के दोहे बहुत अच्छे लगते हैं।
0: सुनाइए।
1: सर्व

0: अर्थात सर्वर जैसे, यानी पेड़ अपने फल खुद नहीं खाता, सर्वर अपने पानी खुद नहीं पीता, उसी प्रकार इसी तरह हमें अपने जीवन में भी करना चाहिए। हमें दूसरों के ऊपर दया दिखानी चाहिए, जिन्हें दया की आवश्यकता है, जिन्हें हमारी मदद की आवश्यकता है, हमें उनकी मदद जरूर करनी चाहिए।
1: बहुत सुंदर।
0: मैं अपने दोस्तों को एक छोटा सा राम जी का भजन भी सुनाना चाहती हूँ, जो कुछ इस प्रकार है।

0: जारुणम।
1: वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपका नाम क्या है?
2: मेरा नाम अथर्व तिवारी है।
1: अथर्व, आप किस क्लास में पढ़ते हैं?
2: मैं कक्षा 5B में पढ़ता हूँ।
1: अच्छा, कक्षा 5 में पढ़ते हैं। आपको क्या पढ़ना अच्छा लगता है?
2: मुझे SST और साइंस पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। मैं साइंस पढ़कर साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ।
1: साइंटिस्ट का काम क्या होता है?
2: साइंटिस्ट का काम कुछ आविष्कार करना होता है। मुझे साइंटिस्ट बन के देश के लिए कुछ करना है।
1: और आपकी हॉबीज क्या है और क्या क्या अच्छा लगता है आपको? खेलते भी हैं?
2: यस।
1: क्या खेलते हैं?
2: क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन।
1: क्रिकेट, फुटबॉल और बैडमिंटन भी खेलते हैं। अच्छा, इन तीनों में कौन सा खेल सबसे ज्यादा पसंद है आपको?
2: क्रिकेट।
1: क्रिकेट के दो खिलाड़ी का नाम बताइए जो भारत के लिए खेलते हैं।
2: विराट कोहली और MS धोनी।
1: MS धोनी कहाँ के रहने वाले हैं?
2: MS धोनी रांची के रहने वाले।
1: अरे वाह, और आप भी रांची में रहते हैं ना? आपको बॉलिंग अच्छा लगता है या बैटिंग करना अच्छा लगता है? क्या करना अच्छा लगता है या फील्डिंग करना अच्छा लगता है?
2: बैटिंग करना।
1: अच्छा, चलिए आज आप अपने दोस्तों को क्या सुनाने वाले हैं?
2: मैं आज आपके सामने एक कविता सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है रंग बिरंगी थाली सेहत वाली।
1: अच्छा, रंग बिरंगी थाली सेहत वाली, सुनाइए।
2: हरी सब्जियां, ताजे फल, छाछ ठंडी वाली, दाल गरम, रोटी नरम हो, थाली सेहत वाली। जितने रंग है इंद्रधनुष के उतने थाली में दिखते, हर पकवान है मन को भाता, सारे ही अच्छे लगते। ध्यान रहे खाने की थाली सदा भरी हो सेहत से, खाना बिल्कुल भी ना फेंके आता है बड़ी मेहनत से। स्वाद के संग सेहत का भी रखना होगा ध्यान हमें, कितना खाए और क्या खाए हो इसका भी भान हमें। तेल मसाले चीनी मैदे से दूरी हमें बनानी है, सजा सलादों से थाली को अपनी भूख मिटानी है। फलों का रस भी पीना है और ताजे फल भी खाने हैं, दाल भात और सब्जी रोटी के हम तो दीवाने हैं। पिज्जा बर्गर कभी न खाएं, मोमो देख के ना ललचाएं, डिब्बा बंद अनाजों से भी दूरी हमें बनानी है। खुद से प्रेम हमें करना है, हमने मन में ठानी है, होंगे स्वस्थ अगर हम तो ही मनेगी होली दिवाली, हो अपनी रंग बिरंगी थाली पर हो वो सेहत वाली।
1: बा, तो आपकी थाली खाकर तो सचमुच लोग सेहत वाले हो जाएंगे। सबसे ज्यादा खाना क्या पसंद है आपको? मम्मी का बनाया खाना या बाजार का खाना?
2: मम्मी का बनाया हुआ खाना।
1: रंग बिरंगी थाली सेहत वाली। तो बच्चों, आपने ये कविता सुनी, अर्थव ने ये कविता सुनाई, और इनकी जो रंगों से भरी थाली थी, रंग बिरंगी जो थाली थी, इसमें कई तरह की सब्जियां हो सकती हैं, फल हो सकते हैं ना, और घर का जो खाना है, दाल चावल रोटी और तरह तरह की सब्जियां। तो बच्चों को हर तरह की सब्जियां खानी चाहिए, है ना, उसे परहेज नहीं करना चाहिए, और बाहर का जो खाना है उससे ना करना चाहिए। नहीं, चलिए, बहुत अच्छी कविता।

0: अरे वाह दीदी, बच्चों ने तो मन ही लुभा लिया अपनी सुंदर सुंदर कविताएं सुनाकर और अपनी बातों से।
1: हाँ भैया।
0: अब हम बच्चों को एक जानकारी देंगे। बच्चों, जैसे आप सब ने रंग बिरंगे कपड़े पहन रखे हैं, वैसे ही एक रंग बिरंगी बातें आपको बताऊंगा जिसे सुनकर मुंह में पानी आने लगेगा।
1: और बच्चों जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और फिर सोचिए। अरे अरे अरे, अब तो खोल दीजिए। आपके सामने एक बड़ी सी थाली रखी है और उसमें लाल टमाटर, हरी मटर, गाजर, पीली छोंक वाली दाल, दही की कटोरी और रंग बिरंगे फल और उसपे गरम गरम पराठे।
0: वाह वाह वाह वाह वाह। तो बच्चों, ये थाली सिर्फ देखने में सुंदर नहीं है, ये आपके शरीर के लिए भी सेहत का खजाना है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि रंग बिरंगी थाली खाएं, सेहतमंद बन मुस्काएं।
1: बच्चों, अभी आपको पढ़ने के साथ साथ बढ़ना भी है, खूब खेलना भी है, और इन सभी के लिए चाहिए आपको रंग बिरंगी थाली।
0: अभी अर्थव ने भी अपनी कविता में इसी रंग बिरंगी थाली की बात करी थी। हम भी उस रंग बिरंगी थाली की बात कर रहे हैं क्योंकि उस रंग बिरंगी थाली में है लाल लाल टमाटर, हरी हरी सब्जियां, दाल और दही और तरह तरह के पकवान।
1: भैया मतलब थाली रंग बिरंगी यानी इंद्रधनुष वाली। आपकी थाली में अनाज, दाल, प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थ, हरी सब्जियां, मौसमी फल, दूध, दही के साथ पर्याप्त पानी की मात्रा भी होनी चाहिए बच्चों।
0: हाँ बच्चों, शरीर को पढ़ने, खेलने, बढ़ने और रोज के काम करने के लिए अलग अलग पोषक तत्वों की जरूरत होती है, इसलिए भोजन में भी विविधता होनी चाहिए बच्चों।
1: और इसके लिए भैया बच्चों को रंग भरना होगा खाने में। जैसे अभी हरे रंग की हमने बात की, तो हरा रंग के लिए पालक, सरसों का साग और मेथी बच्चों को खाना चाहिए।
0: लाल रंग की कौन सी सब्जियां होती हैं? हाँ, टमाटर, चुकंदर, ये सब लाल लाल होते हैं ना, तो इसको भी अपने खाने में शामिल करना चाहिए।
1: और पीला रंग, सभी दालों को खाइए बच्चों। और अभी का मौसम है भैया मक्का का, जब मक्का भुन जाता है तो पीला रंग का हो जाता है। और फल में केला, खरबूज और पके अमरूद को खाइए, तो ये आपके पीले रंग के होते हैं।
0: और नारंगी रंग के लिए संतरा, गाजर, पके आम, पपीता, आड़ू और खुबानी। बच्चों, इस तरह के रंग बिरंगे भोजन हमें ग्रहण करना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है और हम स्वस्थ रहते हैं। जब हमारे शरीर को ऊर्जा मिलेगा तभी हम अपना काम भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, खाने पीने की तो बातें हो गई, और हम हर हफ्ते हम आपको एक प्रेरक व्यक्तित्व के बारे में जानकारी देते हैं। तो कल आप लोगों ने क्या मनाया था? शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस किनकी याद में मनाया जाता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, शिक्षक दिवस हम लोग मनाते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष में, है ना? तो चलिए आज हम उन्हीं के बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं।
1: बच्चों, जब हम किसी महान व्यक्ति की कहानी सुनते हैं तो हमें केवल यह नहीं देखना चाहिए कि वह आगे चलकर कितना बड़ा बना, हमें यह भी देखना चाहिए कि उसने अपने जीवन की शुरुआत कहां से की और किन परिस्थितियों में आगे बढ़े। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जीवन हमें इसी बात की बहुत अच्छी सीख देता है।
0: बच्चों, सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तिरुतनी में हुआ था, जो उस समय मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा था और आज तमिलनाडु में है। उनके पिता का नाम सर्वपल्ली बीरास्वामी और माता का नाम सितम्मा था। उनके पिता राजस्व विभाग में काम करते थे और उनका पूरा परिवार साधारण परिस्थितियों वाला था।
1: बच्चों, राधा कृष्णन का बचपन तिरुतन्नी और तिरुपति में बीता। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा तिरुतन्नी में प्राप्त की और बाद में तिरुपति के हरमंसबर्ग इवेंजेलिकल लूथरन मिशन स्कूल में पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने वेल्लोर में शिक्षा प्राप्त की और आगे चलकर मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में अध्ययन किया।
0: वे पढ़ाई में बहुत अच्छे विद्यार्थी थे बच्चों। उनकी शैक्षणिक योग्यता के कारण उन्हें पढ़ाई के दौरान कई छात्रवृत्तियां भी मिली। यही बात उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण प्रेरक पक्ष भी है बच्चों। साधारण पारिवारिक परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और अपनी प्रतिभा तथा मेहनत के बल पर आगे बढ़ते गए।
1: बच्चों, राधा कृष्णन के जीवन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि वे शुरू में दर्शन शास्त्र पढ़ना पहली पसंद के रूप में नहीं चुन रहे थे।

0: बच्चों वो गणित पढ़ना चाहते थे, वो दर्शन शास्त्र नहीं पढ़ना चाहते थे, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उनके एक रिश्तेदार ने अपनी दर्शन शास्त्र की किताब उन्हें दे दी। इन्हीं किताबों से उनका दर्शन शास्त्र की ओर गहरा जुड़ाव हुआ। उन्होंने दर्शन शास्त्र में उच्च शिक्षा प्राप्त की और इसी विषय के महान विद्वान भी बने। तो बच्चों, ये प्रसंग हमें ये सीख देता है बच्चों कि कभी कभी जीवन में परिस्थितियां हमारे पसंद का रास्ता बदल देती है, लेकिन अगर हम उस रास्ते पर मेहनत और लगन से आगे बढ़ें तो वही रास्ता हमारी सबसे बड़ी सफलता बन सकती है।
1: बच्चों, पढ़ाई पूरी करने के बाद राधा कृष्णन ने अध्यापन का क्षेत्र चुना। उन्होंने दर्शन शास्त्र पढ़ाया और आगे चलकर मैसूर विश्वविद्यालय तथा कलकत्ता विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। वे केवल एक शिक्षक नहीं थे, बल्कि ऐसे विद्वान थे जिन्होंने भारतीय दर्शन को दुनिया के सामने मजबूती से प्रस्तुत किया।
0: बाद में वे आंध्र विश्वविद्यालय और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति भी बने। बच्चों, वे भारत के पहले उपराष्ट्रपति और बाद में भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने। उन्होंने 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक राष्ट्रपति पद संभाला। उन्हें 1954 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया।
1: बच्चों, डॉक्टर राधा कृष्णन का जन्मदिन 5 सितंबर को आता है। उनके महान शिक्षक और शिक्षाविद के रूप में योगदान के सम्मान में भारत में इस दिन शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह दिन हमें अपने शिक्षकों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने की याद भी दिलाता है।
0: हाँ बच्चों, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का बचपन हमें ये नहीं सिखाता कि सफलता केवल अच्छे साधनों से मिलती है, बल्कि उनका जीवन बताता है कि ज्ञान की इच्छा, मेहनत और पढ़ाई के प्रति लगन इंसान को बहुत आगे ले जा सकती है। तो बच्चों, आप कभी ये मत सोचिए कि हमारे पास ये साधन उपलब्ध नहीं है, ये साधन उपलब्ध नहीं है तो ये काम कैसे होगा। उनके पास भी बहुत सारे साधन उपलब्ध नहीं थे बच्चों, लेकिन उनके अंदर इच्छा थी, कुछ करने की, मेहनत करने का जज्बा था, पढ़ाई के प्रति वो ईमानदार थे और इसलिए वो इतना आगे बढ़े। आप भी बढ़ सकते हैं, बस इच्छा शक्ति होनी चाहिए, आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए।
1: बच्चों, उनके जीवन से हम 4 महत्वपूर्ण बातें सीख सकते हैं। पहली, परिस्थितियां कठिन हो तो भी पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। दूसरी, छात्रवृत्ति और मिलने वाले अवसरों का सही उपयोग करना चाहिए। तीसरी, जिस विषय को हम पढ़ रहे हैं उसे केवल परीक्षा के लिए नहीं बल्कि समझने और सीखने के लिए पढ़ना चाहिए। चौथी, एक अच्छा विद्यार्थी आगे चलकर एक अच्छा शिक्षक और समाज के लिए उपयोगी व्यक्ति बन सकता है।
0: इसलिए बच्चों, डॉक्टर राधा कृष्णन की कहानी को केवल एक महान राष्ट्रपति की कहानी मत समझिए। ये एक ऐसे विद्यार्थी की कहानी है जिसने साधारण परिस्थितियों में शुरुआत की, शिक्षा को अपना सबसे बड़ा साधन बनाया और आगे चलकर भारत के महान दार्शनिक, शिक्षक और राष्ट्रपति बने। उनका जीवन हमें यही संदेश देता है बच्चों कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, सीखने और आगे बढ़ने की इच्छा कभी छोटी नहीं होनी चाहिए, है ना बच्चों? तो चलिए, अब हमारे कार्यक्रम का समय भी समाप्त होने वाला है बच्चों। तो चलते चलते हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की जो प्रस्तुति थी वो गौरव कुमार पांडे की थी। तो अगले हफ्ते हम आपसे फिर मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए हमें दीजिए विदा। 1 2 3
1: जय हिंद बच्चों।

आप सुन रहे थे हमारे बाल श्रोताओं को समर्पित कार्यक्रम बाल सभा। सूत्रधार थे अवधेश कुमार और शिल्पी, प्रस्तुति थी गौरव कुमार पांडे की। यह आकाशवाणी का रांची केंद्र है और हमारे स्टूडियो के घड़ी में दोपहर के 4:30 और 18 सेकंड हो चुके हैं। दोस्तों आइए अब आपको हम हमारी तीसरी सभा में प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी दे रहे हैं।

इस कार्यक्रम विवरण के उपरांत यानी 4:35 पर हम लेकर हाजिर होंगे फिल्मी गीतों का खजाना कार्यक्रम सांझ सरगम में। 5 से आप सुनेंगे मुख्य समाचार और 5:02 पर समय होगा हमारे युवाओं को समर्पित कार्यक्रम युवानी का। आज चर्चा का विषय होगा खुशियां महसूस करना, रिश्तों और यादों में छिपी हमारी खुशियां। प्रस्तुति होगी श्रेया और निकिता की और प्रस्तुति गौरव कुमार पांडे की। शाम 5:23 पर वक्त होगा हमारे औद्योगिक प्रसारण श्रमिक लोग का। आज चर्चा का विषय होगा अच्छी सेहत का एक ही राह, संतुलित भोजन और स्वास्थ्य समाज। साथ ही साथ हम जानकारी लेंगे प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, हुनर को सम्मान, कारीगर को पहचान और साइबर ठगी से बचाव के विषय में। कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगी पूजा बोस और आशीष कश्यप और कार्यक्रम के प्रसिद्ध प्रस्तुति होगी प्रभु शरण की। और 6 से आप सुन सकेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार और 6:02 पर हम हाजिर होंगे कार्यक्रम खेती बाड़ी के साथ। आज आप जानेंगे प्लास्टिक से मुक्त गांव के विषय में, साथ ही साथ जैविक खाद कैसे बनाएं इस पर भी चर्चा होगी। विशेषज्ञ होंगे रमेश सिंह, भेंटकर्ता होंगे संजीव कुमार लाल, सूत्रधार होंगे झालेश्वरी और सुकेश और प्रस्तुति होगी प्रभु शरण की। शाम 6:30 पर वक्त रहेगा कार्यक्रम हमारी दुनिया का। आज बातें होंगी पर्यावरण बचाव, धरती बचाव के विषय में और साथ ही साथ खुर्टा वार्ता में आप जानेंगे पर्यावरण सुरक्षा, धरती की रक्षा के विषय में। वार्ताकार होंगे निरंजन कुमार, सूत्रधार होंगे झालेश्वरी सुकेश और प्रस्तुति प्रभु शरण की। और 7 आप सुन सकेंगे प्रादेशिक समाचार और 7:11 पर समय होगा जिले में आजकल का। सात 7:15 से आप सुनेंगे हिंदी साहित्यिक पत्रिका शतल, प्रस्तुति स्वर होगा प्रणव कुमार का और प्रस्तुति प्रभु शरण की। और 7:30 पर आप सुन सकेंगे स्पॉन्सर प्रोग्राम फार्म टू सिटी। और 7:45 पर संताली समाचार पत्र पत्रिका और 8 से हम लेकर हाजिर होंगे गीतों का खजाना कार्यक्रम रजनीगंधा में। और 8:15 पर समय होगा प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान का। क्या है सुर्खियों में ये आप जानेंगे रात 8:30 पर। और 8:45 से क्रमशः आप सुनेंगे हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। रात्रि 9:30 से रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम रिले किया जाएगा हमारे दिल्ली केंद्र से। और रात्रि 10 से वक्त होगा रवि वास्त्रीय अखिल भारतीय संगीत सभा का। आज कलाकार है मैसूर के ए श्रेणी के कलाकार एन आर पारस नाथ का कर्नाटक का गायन आप सुन सकेंगे। और रात्रि के 11 से क्रमशः आप हिंदी और अंग्रेजी समाचार सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। दोस्तों ये थे हमारे आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। और थोड़ी ही देर में हम हाजिर होंगे कार्यक्रम सांझ सरगम के साथ, जिसे आप सुनेंगे अपनी रेडियो हम सफर मौनिता के साथ।

नमस्कार दोस्तों, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है और मैं हूँ आपके रेडियो हम सफर मोनिता। हाजिर हूँ कार्यक्रम सांझ सरगम के साथ। दोस्तों, दिन भर की भाग दौड़, कामकाज की व्यस्तता और शाम के डलते छांव, ऐसे में दिल चाहता है कि कुछ पल सुकून के जो सिर्फ और सिर्फ अपने हों। जब शाम की ठंडी हवा और धीरे से दस्तक देती है तो यादें कुछ मीठी धुनें

क्या बात है दोस्तों, सचमुच कुछ नगमे वक्त की सीमाओं से परे होते हैं और साल बदल जाते हैं, मौसम बदल जाते हैं, लेकिन इन गीतों की ताजगी कभी कम नहीं होती। और सांझ सरगम की यह महफिल हर रोज आपके दिलों से होकर गुजरती है और हमारे कई श्रोताओं के हम सुनाते हैं प्यारे प्यारे गाने, जिससे कि उनके घर का आंगन पुरानी महक की तरह भर उठता है।

0: दोस्तों कार्यक्रम सांसर का मैं लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
1: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: दोस्तों पुनः स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सांझ सरगम में। शुरू का ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा और आप अपने के साथ जुड़े रहिए और चाय के चुस्कियां लेते रहिए और सुनते रहिए सांझ सरगम। चलिए दोस्तों वक्त हो चला है एक ऐसे गीत का जिसमें जज्बात भी हैं और एक हल्की सी उदासी भी, जो सांझ को और भी हसीन बना देती है। तो पेशे खिदमत है ये खूबसूरत सी रचना। सच बताइएगा आपको कौन से लम्हे याद आ रहे हैं।

दोस्तों, मोहब्बत भी क्या चीज़ है, मोहब्बत भी क्या चीज़ है, समझाई नहीं जाती, बस हो जाती है। और सच कहूँ तो ये चीज़ बताई भी नहीं जाती।

दोस्तों, घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि बस कुछ ही देर में सांझ ढलने को है और रात अपनी चादर फैलाने को बेताब है, और वक्त का पहिया कभी थमता नहीं। इसलिए अब इस महफिल से विदा लेने का समय आ चुका है, और उम्मीद है आज की शाम गीतों के इन सुरों ने आपके दिन भर की थकान को जरूर मिटा दिया होगा। कल फिर इसी समय पर सुर में यादों और तरानों का गुलदस्ता लेकर हम हाजिर होंगे आपके इसी पसंदीदा कार्यक्रम सांझ सरगम में। तब तक के लिए आकाशवाणी के रांची केंद्र से आप अपनी रेडियो हम सफर मान्यता को अनुमति दीजिए। आप सुनते रहिए आकाशवाणी का रांची केंद्र। स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।

0: आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रस्तुत है अब तक के प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं नूतन लकड़ा। राज्यपाल संतोष गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज गिरिडीह के हरिसिंह रायडी स्थित स्वर्गीय सुदिव्य कुमार के आवास पहुंचकर उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात कर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुदिव्य कुमार का आकस्मिक निधन झारखंड के लिए अपूरणीय क्षति है और राज्य ने एक कर्मठ जनप्रतिनिधि तथा समर्पित मंत्री को खो दिया है। उन्होंने कहा कि सुदिव्य कुमार के योगदान और सेवाओं को सदैव स्मरण किया जाएगा। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने उच्च शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार के निधन पर गहरा शोक जताया है। आज गिरिडीह में श्रद्धांजलि देने के बाद उन्होंने कहा कि मंत्री के निधन से हुई क्षति की भरपाई संभव नहीं। राज्य सरकार ने मंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता सुदिव्य कुमार के निधन पर आज और कल दो दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। इस दौरान राज्य सरकार के सभी निर्धारित कार्यक्रम रद्द रहेंगे और कल सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। राजकीय शोक के दौरान सरकारी भवनों पर तिरंगा आधा झुका रहेगा। बोकारो जिले के सेक्टर 6 बाजार में आज सुबह लगी आग में 8 दुकानें जलकर पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं। हालांकि घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। दमकल की 3 गाड़ियों की मदद से करीब 1 घंटे में आग पर काबू पा लिया गया। राज्य में 13 सितंबर तक गरज के साथ बारिश और वज्रपात की संभावना को देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की अपील की है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

श्रोताओं, आइए अब हम आपको जानकारी देते हैं आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। अब के कुछ देर बाद यानी शाम के 5:05 पर आप सुनेंगे फौजी भाइयों के लिए विशेष कार्यक्रम जय भारती। शाम 5:30 पर खेती गृहस्थी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। शाम 6 बजे आप सुनेंगे मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। हो अखड़ा कार्यक्रम का प्रसारण होगा शाम 6:02 पर। शाम 6:30 पर विकास योजनाओं पर आधारित कार्यक्रम सन्मार्ग का प्रसारण किया जाएगा। 7 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। इसके तुरंत बाद जिले में आजकल का प्रसारण किया जाएगा। 7:15 पर श्रोताओं की पसंदीदा फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम आपकी पसंद का प्रसारण किया जाएगा।

रात के 8 बजे हम लेकर आएंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा। रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही रात्रि 9 बजे आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। रात के 9:15 पर आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे। रात के 10 बजे आप सुनेंगे गजलों का कार्यक्रम महफिल। फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग श्रोता सुनेंगे रात के 10:30 पर। रात के 11 बजे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। और रात के 11:10 पर हमारी आज की सभा संपन्न होगी।

हम आकाशवाणी के चयबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं फौजी भाइयों के लिए विशेष कार्यक्रम जय भारती। इस कार्यक्रम में पहला गीत सुनते हैं फिल्म परिणीता से, आवाजें हैं श्रेया घोषाल और सोनू निगम की।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: जय भारती कार्यक्रम में श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं अभिजीत और अलका याग्निक के युगल स्वर में चलते चलते फिल्म का ये गीत।

0: क्या आप तनाव, चिंता, उदासी, मानसिक परेशानी या आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं? याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। मदद के लिए संपर्क करें रिनपास कांके रांची।
1: पिछले 100 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान, जहां अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और नशा मुक्ति का निःशुल्क उपचार उपलब्ध है। डायल करें 24/7 हेल्पलाइन नंबर 9471366 97, टोल फ्री नंबर 1444 99 या 1800345406 पर।
0: समय पर मदद लें, स्वस्थ मन, बेहतर जीवन पाएं। ऋण पास एवं झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: जय भारती कार्यक्रम में श्रोता भाई, अब सुनते हैं सर फिल्म का ये गीत कुमार शानू के स्वर में।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही जय भारती का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के चयबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर। शाम के 5:30 हो रहे हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम खेती गृहस्थी।

कार्यक्रम खेती गृहस्थी सुनने वाले सभी श्रोताओं को सुरेश चंद्र सोय का जोहार। श्रोताओं, हम आशा करते हैं आप सभी कुशल मंगल हैं। आज इस खेती गृहस्थी कार्यक्रम में हम चर्चा के माध्यम से हम जानकारी लेंगे मछली पालन की आधुनिक तकनीकी विषय पर। मनोरंजन करेंगे मुंडारी लोकगीत से, मुचरे मुंडा एवं साथियों के स्वर में, और भेंटवार्ता के माध्यम से हम परिचर्चा में बातें करेंगे डोबा निर्माण और सरकार की महत्वपूर्ण योजना और उसका लाभ के संबंध में, जिसमें प्रतिभागी के रूप में

कई हमारे किसान शामिल हैं, और अंत में पुनः उड़िया लोकगीत से मनोरंजन करेंगे। श्रोताओं, मछली पालन भारत देश का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है, जो वैश्विक मछली उत्पादन में लगभग 8% योगदान देता है। यह क्षेत्र देश की जीडीपी और कृषि के सकल मूल्य संवर्धन में करीब 7.43% का योगदान देता है, और जिसमें 3 करोड़ से अधिक लोगों की आजीविका और रोजगार इसमें मिलता है। और भारत सरकार ने 2026-27 में मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए 2761 करोड़ रुपए, जो सबसे अधिक वार्षिक बजटीय सहायता का प्रस्ताव दिया। ये साबित करता है कि हमारा देश मत्स्य पालन के क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहा है। परंतु इसके लिए आज जरूरी है कि हम उन तकनीकों को भी जानें, जिससे हम मछली पालन को एक उद्योग का रूप हम स्थापित कर पाएं। श्रोताओं, आज मछली पालन तेजी से बढ़ने का एक और कारण है कि कुछ मछलियां ओमेगा 3 फैटी एसिड का वाहक होती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जरूरी है। इसके लिए आज मछली पालन को कई नए तरीकों से पालने का प्रयास किया जा रहा है, और केंद्र सरकार प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत भी सहायता राशि उपलब्ध करा रही है। हमें इसका भरपूर लाभ लेना चाहिए। श्रोताओं, यदि हम मछली पालन की आधुनिक तकनीकों की बात करें, तो हम वर्षों से मछली पालन अपने तालाबों में, झीलों में करते हैं, परंतु उसकी देखभाल सही नहीं होने के कारण बहुत अधिक लाभदायक साबित नहीं होता है। वर्तमान समय में नए नए तकनीकें हमारे सामने हैं, जो हमारे मछली पालन किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत कर सकते हैं, और देश की अर्थव्यवस्था को भी काफ़ी अधिक मजबूती दे सकता है। इन तकनीकों में बायोफ्लोक तकनीकी है। इसमें सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया की मदद से पानी में मौजूद अवशिष्ट पदार्थों को प्रोटीन युक्त आहार में बदला जाता है। इससे दाने का खर्च कम होता है और कम समय में अधिक मछलियां पाई जाती हैं। ये एक बायोफ्लोक तकनीकी है। इसके साथ साथ और एक तकनीकी है आरिश रिसाइक्लिंग एक्वाकल्चर, जिसमें शेड बना करके, चबूतरा बना करके या टंकी बना करके हम उस मछली का पालन कर सकते हैं, और नए तकनीकी हैं। केज कल्चर है, जिसमें जहां नदियां हैं, बड़ी बड़ी तालाब है या झील है, उसके अंदर केज कल्चर से भी हम जलाशयों में, झीलों में या नदियों में हम मछली को पाल सकते हैं। समेकित मछली पालन, इस तकनीकी के तहत बत्तख पालन, शुकर पालन और बागवानी को एक साथ किया जाता है। यदि हम इस प्रकार की तकनीकों को अपनाते हैं, तो कम जमीन की भी जरूरत होती है, खास करके बायोफ्लोक और आरिस मॉडल जिसको हम कह सकते हैं, उसमें अधिक जगह की जरूरत नहीं होती है। टैंकों में हम पानी भर करके इन मछलियों को पाल सकते हैं। इसके लिए प्रशिक्षण की जरूरत है, और सरकार प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रही है। श्रोताओं, इस जानकारी के बाद आइए हम मनोरंजन करते हैं इस लोकगीत से।

0: श्रोता, अभी हम मनोरंजन कर रहे थे मुचिरे मुंडा एवं साथियों के स्वर में गाए मुंडारी लोकगीत से। इस लोकगीत के बाद आइए हम परिचर्चा के माध्यम से हम जानकारी लेते हैं डोबा निर्माण की जरूरत क्यों और सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं के संबंध में, जिसमें प्रतिभागी के रूप में जगमोहन सुरीन, राम होनहागा, यशवंत केसरी और शंको मुर्मू है। कार्यक्रम आयोजन कर रही है, योजनाएं चला रही है, साथ ही साथ आज जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, खेती योग्य जमीनों का आकार कम हो रहा है और झारखंड जैसे पठारी क्षेत्र में परती जमीन या बंजर जमीन की बहुतायत। यदि ऐसे जमीनों पर जहां बंजर जमीन हो, परती जमीन हो, उसका यदि हम विकास करते हैं तो कृषि के क्षेत्र में हम समृद्ध होंगे, ग्रामीण लोगों को रोजगार मिलेगा, पलायन कम होगी, बेरोजगारी कम होगी। तो आज हमारे आकाशवाणी चाईवासा स्टूडियो में डोबा निर्माण एवं राइस फिलो परती भूमि विकास योजना के साथ साथ सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी पर परिचर्चा के माध्यम से जानकारी देने के लिए जगमोहन सुरेन जी, वरिष्ठ जनसेवक बंदगांव, राम होनहागा पूर्णिया से खुटपानी प्रखंड, जसवंत केसरी पांडरसाली से, शंको मुर्मू बरुडंगवा से और कुंज बिहारी हस्ता राजनगर से, आप सबों का हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। जोहार
1: जोहार
2: जोहार।
0: आज हम सभी जानते हैं कि जल संकट की स्थिति उत्पन्न हो रही है। पहले आज से 40-50 साल पहले बारिश होती थी, आज कम हुई है और भूमिगत जल कम हो रही है। इसके कारण आज चापालन हो या कुआं का पानी का जल स्तर घटते जा रहा है। यदि यही स्थिति रही तो आने वाले समय में भयावह स्थिति होगी। तो सरकार की ओर से कई योजनाओं की चलाई जा रही है, इस पर हम चर्चा करते हैं।
1: जैसा ये हम लोग का आज का जो परिचर्चा है डोभा निर्माण के संदर्भ में, ये सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है
2: जी,
1: डोभा निर्माण
2: जी।
1: आज के दिन में आप देख रहे होंगे पूरे राज्य में डोभा निर्माण के अलावा अन्य किसी तरह की योजनाएं मनरेगा में नहीं चल रही है
2: जी।
1: और सरकार ने इसको पूर्ण रूप से सफलीभूत करने के लिए इसको दो पार्ट में बांट दिए
2: जी।
1: एक पार्ट हमारा जो है मनरेगा के तहत, मनरेगा में यह है कि किसानों या हमारे जॉब कार्ड धारियों के द्वारा ही डोभा का निर्माण किया जाए, और दूसरा उसमें एक पार्ट जोड़ दिए ताकि हमारे किसान लोगों का जमीन डोभा के नाम पे बर्बाद ना हो करके भूमि संरक्षण विभाग के तहत उनको पोकलेन से डोभा निर्माण कराने का प्रावधान कर दिया। क्योंकि पोकलेन से जब आपका डोभा का निर्माण की जाएगी तो 100% आपको 10 फीट की गहराई तक वो खोदी जाएगी
2: जी।
1: और इसका मुख्य उद्देश्य है, अभी जैसा हमारे बताया यहाँ सर ने कि यहाँ एक समस्या हो गई जल संकट की
2: जी।
1: या जैसा पानी की
2: जी।
1: आज से हम लोग 20 साल पूर्व देखते थे कि पर्यावरण की संतुलन होने के चलते बारिश जहाँ तहाँ या हमारे खरीफ में तो अक्सर बारिश होती थी। आजकल हम देखते हैं कि गिने माने बारिश हो रही है। और ये डोभा निर्माण का मुख्य उद्देश्य अपने गांव के बारिश की पानी को बर्बाद ना करते हुए गांव के हर कोने में, हर क्षेत्र में डोभा का निर्माण की जाए ताकि वहां की पानी को वहां छेकते हुए वहां का ह्यूमिडिटी माने आर्द्रता को बनाया रखा जाए, जिससे कि किसानों के जमीन तक नमी पहुंचे।
3: तो सरकार का ये बहुत ही अच्छा योजना है क्योंकि रात के दिनों में जो बारिश बहा के चली जाती
1: हाँ,
3: है
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
3: इस बारिश को अगर डोभा बनाने के बाद वहाँ पर वो बारिश जमा हो जाता है तो वो बारिश से हमारे किसान लोग को बहुत सारे लाभ होंगे, जैसे कि बागवानी करेंगे, पेड़ पौधे उगाएंगे। उस तरह करके बागवानी करने के बाद यहाँ से जो लोग पलायन कर जा रहे हैं
1: हाँ,
3: उस पलायन रुकेगा
1: हाँ, पलायन भी हमारा कई हद तक नियंत्रण हो सकेगा। और दूसरा एक ये है कि इसको यहाँ उदाहरण स्वरूप जैसा हमारे भारत देश में ही, जैसा आप चले जाएंगे केरला, आंध्र प्रदेश
2: जी,
1: और तमिलनाडु
2: जी,
1: ये सारे क्षेत्र में आज भी डोभा निर्माण के चलते हमारे किसान जो है ना पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर हो गए। ये आत्मनिर्भर हो गए उसमें, चूंकि मिश्रित खेती की पूर्ण संभावना है। अगर आप सही स्थान पे चिन्हित करते हुए डोहा का निर्माण कर देते हैं तो इसके लिए आप मत्स्य पालन कर सकते हैं।
2: जी जी।
1: आज के दिन में हमारे कई हाइब्रिड मत्स्य मिल जाते हैं, उनका बीज मिल जाते हैं, तो आपको लगभग सामान्यतः 3 महीना में ही आपको उसमें से अच्छा उपज मिलेंगे, अच्छा आमदनी आपको मिलेगी। दूसरा, सरकार के द्वारा इसमें क्या किया है, उद्यान विकास विभाग द्वारा, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा आपको उसमें से फलदार जो वृक्ष है वो एकदम निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे, जिससे किसानों को फलदार वृक्ष भी अगर आप डोभा के मेड़ में लगा देते हैं तो आज के दिन में कलमी वृक्ष में ऐसा स्थिति होती है जो आपका लगभग 1 से 1.5 साल के दरमियान आपको उसका उपज मिलने लगती है और आपको आमदनी बढ़ जाती है।
2: सर, एक सवाल और इसमें उठ रही है, जैसे कि ये सरकार के द्वारा चलाई जा रही है डोभा निर्माण का,
1: बिल्कुल,
2: तो डोभा निर्माण किस तरह का क्षेत्र में किया जाना चाहिए?
1: डोभा निर्माण के लिए सामान्यता है कि हमारे किसान, क्योंकि ये सरकार अनुदान आपको दे रही है
2: जी,
1: लेकिन आप जिस जगह को आप उपयुक्त मानते हैं
2: जी,
1: तो सरकार वहां बनाने को तैयार है, लेकिन हमारे किसान क्या है कि वो व्यर्थ जमीन को ज्यादा देते हैं, जिसको अपलैंड हम लोग बोलते हैं, टाड़ जमीन जिसे
2: जी,
1: बोलते
2: जी,
1: हैं
2: जी, जी, जी।
1: तो इससे क्या होती है, सरकार का मानसा है कि हमको डोभा 10 फीट गहराई तक पूर्ण कर देना है, तो उस पे आपको दूरगामी लाभ नहीं मिल पाती है। अगर उसको आप जहाँ जल जमाओ, जहाँ जल नियंत्रण जैसे जगह में आप उपयुक्त जगह को आप अगर उद्गार करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में आपका वो डोभा फलीभूत होगी।
4: सर, डोभा किस तरह के खेतों में बनाई जा सकती है, निर्माण से लाभों को क्या लाभ हुआ?
3: इसके लिए गांव में ग्राम सभा होना बहुत जरूरी
1: है, बिल्कुल,
3: क्योंकि बहुत से हमारे कृषक लोग कहां पर बनना चाहिए ये नहीं मालूम,
2: ये नहीं मालूम,
3: तो इन लोगों को वो कहना चाहिए, जैसे कि मुखिया हो, BDO हो, इस तरह लोगों का बैठकी बुला करके, जो जानकार लोगों का बैठकी बुला करके गांव के लोगों को इसके बारे में बताना चाहिए कि ऐसा जगह होना चाहिए और इससे आपको क्या क्या लाभ मिलेगा,
2: क्या लाभ मिलेगा,
1: ये बिल्कुल बिल्कुल
3: लोग को मतलब जानकारी देना चाहिए। जैसे कि मछली के बारे में, मछली से भी हो सकता है,
1: बिल्कुल,
3: और बागवानी
2: भी कर सकते हैं,
3: ऐसा स्थिति में इन लोग का वार्षिक आय बढ़ जाएगा,
1: वार्षिक आय बढ़ जाएगी तो निश्चित रूप से हमारे किसान आत्मनिर्भर होंगे, और जहाँ तक पलायन की स्थिति होगी ये स्वतः समाप्त हो
2: जाएगी, बिल्कुल,
3: और इससे क्या होगा, हमारे गरीब किसान लोग, कुपोषित बच्चे जो हो रहे हैं उन लोग भी खाने पीने का, मछली मतलब अच्छा आहार मिलेगा,
2: अच्छा
3: पैसा होगा तो अच्छा आहार
2: पौष्टिक तो उसी से मिल जाता है।
1: इसमें से उन लोग का बदलाव 3 तरह के स्टेज में हो जाएगी, जैसे पहला कि हमारी जो बुनियादी सुविधाएं के लिए हम दूसरे पर आश्रित नहीं होंगे, हम पूर्ण रूप से अपने इतना सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे, इतना निर्भर हो जाएंगे कि किसी के यहाँ हाथ फैलाने की जरूरत नहीं
2: पड़ेगी।
1: परिवेश में जैसा डोहा निर्माण में मनरेगा में ऐसी कर दी गई, मनरेगा के तहत ऐसा है ये योजना, मनरेगा में जैसा आपने ग्राम सभा के माध्यम से अपने खाता नंबर प्लॉट नंबर का आप जो है चिन्हित करके उपलब्ध करा दिए पंचायत सेवक को, इसके बाद सीधी पंचायत सेवक को आप जब दे दिए, आज के परिवेश में ग्राम पंचायती राज अधिनियम के लागू होने के पश्चात ये डोभा निर्माण की स्वीकृति के लिए BDO तक दौड़ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, मनरेगा में। और हमारे यहाँ जैसा 2 पार्ट हमने बताया, भूमि संरक्षण विभाग में इसमें और आपको सुविधा है,
2: हाँ।
1: ये पेमेंट होने का ये 2 तरीका अलग अलग है, जैसा हमारा सोयल कंजर्वेशन भूमि संरक्षण विभाग से जो हम पोकलैंड से खोद के जो बनाते हैं उसमें पेमेंट सीधे जो है उन किसानों को जिनका जो लाभुक या किसान जिनका डोहा निर्माण हो रहा है उनके खाता में सीधा RTGS के माध्यम से पैसा चला जाता है। तो ये पैसा जो चला जाता है, पहला पैसा चला जाता है 40%
3: डोहा निर्माण होने के बाद, जैसे कि बहुत से किसान लोग बागवानी हुआ, फलदार वृक्ष हुआ, मछली छोड़ा जा रहा है, तो एक एक कुछ किसान लोग इसका जो लाभ उठा रहे हैं तो और भी किसानों को दिखाने के लिए वहां तक अगर पहुंचा जाता है तो उन लोग का मन में और सोच बदलाव हम भी इस तरह करेंगे ये मतलब उनका मन में मतलब सोच होता है।
1: इसमें पिछले दिनों आप देखे होंगे हमारी सरकार की जो योजना थी, आपको 3 साल से लेके 7 साल से लेके 15 साल तक की जो योजनाओं की परिकल्पना की गई, सबसे पहला प्राथमिकता डोभा निर्माण पर दी गई, और ये पूरे गांव-गांव में, जिला के हर गांव-गांव में, पंचायत के हर गांव-गांव में ये कार्यशाला करते हुए इनका चयन किया गया। और इसमें अगर किसी तरह की चूक हो गई है तो हमारे किसान सुत गए हैं।
2: हाँ, जी, जी, जी, जी।
1: कि प्राप्त इसको डोभा निर्माण से के साथ साथ आपको, जैसा इसमें हमने बताया कि आपको लगता है कि आप आए दिन ये देखे होंगे मनरेगा के तहत डोभा निर्माण में कहीं कहीं कुछ विसंगतियां मिल रही
2: हैं। एकदम बिल्कुल
1: बिल्कुल, कहीं पूर्ण रूप से डोभा नहीं बन रही है, या 5 फीट 7 फीट के बाद जो है डोभा स्वतः वो लोग समाप्त कर देते हैं, जो दूरगामी लाभ नहीं होती है। इसीलिए उसी के समानांतर भूमि संरक्षण विभाग से ये प्रावधान की गई है कि हमारे इच्छुक किसान जो बागवानी भी करते हैं या मिश्रित खेती भी करते हैं, उन्हें पोकलेन से खोद करके सही रूप से।
0: हाँ, ये जो अभी आप बता रहे थे,
1: हाँ,
0: ये जो है एक तरह से जो हमारे कृषक भाई लोग हैं, तो ये जो डोबा जो जिस तरह से निर्माण होना चाहिए, उन लोगों को भी थोड़ा सा जो इस पर जमीन बर्बाद ना हो, किस जगह पर डोबा को निर्माण किया जाए
1: जाना चाहिए।
0: हाँ, तो उस पर जो है हमारे कृषक भाइयों को पूरी तरह से सालों भर का लाभान्वित हम लोग पा सके। इस तरह से कई कई जगह पर अभी आपने बताया है कि बना तो दिया गया है, अगर वहाँ पर जैसे पानी का जल जमाव
1: नहीं हो रहा है,

0: किसानों का ऐसा हो गया, जमीन तो वही सिमट के रह गया जो आपके परदादा के पास जो जमीन थे वही है।
1: हाँ, हाँ,
0: तो इसीलिए सरकार ने निर्णय लिया कि किसानों की इच्छा अनुसार डोभा का निर्माण करें, क्योंकि अभी तो आपको तालाब बनाने लायक जमीन नहीं रही,
1: नहीं, नहीं, नहीं।
0: तो इसीलिए जगह चिन्हित करके इसमें का जैसा 15x15x10 यानी 15 फीट 15 फीट लंबा और चौड़ा 15x15 करके और 10 फीट गहराई कर सिर्फ आपको 10 डिसमिल में होना है। दूसरा आपको 20 फीट लंबा 20 फीट चौड़ा गुना आपका गहराई 10 फीट वो सिर्फ आपको जो है माने सिर्फ आपको भी माने 15 डिसमिल में होना है। इसके बाद 25 फीट लंबा 25 फीट चौड़ा और 10 फीट गहराई जो होगा वो सिर्फ आपको 20 डिसमिल में होना है
1: जी। अच्छा।
0: और 30 फीट लंबा 30 फीट आपका चौड़ाई और 10 फीट गहराई वो सिर्फ 25 डिसमिल में होगा। इसीलिए ये सोचा गया कि चूंकि अब किसानों के पास पर्याप्त जमीन भी नहीं रह गई, और इसीलिए सरकार का ये उद्देश्य है कि वो सीमित जगह में ही अपना जल का नियंत्रण करते हुए मिश्रित खेती करें ताकि वो आत्मनिर्भर बने।
2: ₹1600
0: वो निःशुल्क है। और इसके बाद ये सरकार के द्वारा ये है कि आपको जैसा राइस फेलो के बाद अगर आपका जमीन देख रहे हैं कि अरहर लायक नहीं है तो आप उसमें सरसों बुन दीजिए, सरसों आपको 100% अनुदान है। और उसमें भी आपको आप एक हेक्टर में अगर आप बो दिए तो ऊपर से आपको वो आपका ₹1600 वो रखा हुआ है, सरकार आपको प्रोत्साहित कर रही है। और आने वाले समय में उन सारे चिन्हित किसानों को पहला प्राथमिकता कृषि से संबंधित योजनाओं में देना है। ये तो सरकार की तरफ से ये बहुत सकारात्मक पहल है विशेषकर किसानों के लिए,
2: दीर्घ दृष्टि
0: दूरगामी
2: किसानों के लिए ये बहुत ही योजना मतलब सरकार ने सोची है। और ये सारे किसान लोग को मालूम होगा और इससे बहुत लाभ उठा सकते हैं।
0: हाँ बिल्कुल,
2: और लाभ उठाने से जैसे कि डोभा का हुआ, राइस फ्लो का हुआ, इससे अगर लाभ उठाते हैं तो पर अपने अपने परिवार में बच्चे लोग अच्छा अच्छा स्कूल पढ़ा सकते हैं।
0: बिल्कुल,
2: अच्छा स्कूल में अगर पढ़ाई हो रहा हुआ, अच्छा शिक्षा मिला तो आगे की ओर बढ़ेंगे,
0: आगे उनका भविष्य उज्जवल
2: बनेंगे।
0: और दूसरा इसमें राइस फ्लो में एक और अतिरिक्त जो लाभ है, इसमें से भूमि संरक्षण विभाग को ये दायित्व सौंपा गया है।
1: हाँ सर, ये जो हाँ, आप बता रहे थे
0: इसमें जैसा मनरेगा से निर्मित, अगर आपके क्षेत्र में आपके गांव में सिंचाई से संबंधित जैसे मनरेगा से सिंचाई कुआं, मनरेगा से आपको अगर तालाब का निर्माण हुआ है तो इसमें सरकार लक्ष्य न रख करके जितने भी किसान आवेदन देंगे उनको 90% अनुदान में पंप सेट उपलब्ध करा रही, ताकि आने वाला समय में अच्छा वो सिंचाई करके अच्छा फसल उपजा करके अपना जो है आत्मनिर्भर बने, अच्छा आमदनी कर पाए
1: जी जी।
0: साथ ही साथ उसमें व्यवसायिक दृष्टिकोण से एक और चीज जोड़ दिए, यहाँ तक कि आपका आटा चक्की होलर मशीन तक उसमें 90% का छूट है
1: जी जी।
0: कल्टीवेटर तो छूट है ही 90%
2: जी जी।
0: किसानों को सिर्फ वंस टाइम एक बार 10% देना है, बाकी कोई ऋण नहीं।
2: तो सर ये लाभ उठाने के लिए किसान भाई लोग को किससे मिलना चाहिए, किससे मिल
0: ये किसान भाइयों को सीधे जो है इनको जनसेवक को एक आवेदन देना है, और आवेदन का प्रारूप एकदम सरल सीधा है
1: जी।
0: नाम
2: जी,
0: पिता का नाम
2: जी,
0: इसके बाद अपना आवासीय पता
2: जी,
0: दूसरा उसमें आपको जो है अगर मनरेगा से या कोई अन्य योजनाओं से भी आपका सिंचाई से संबंधित कोई योजना बनी है तो उनका योजना डिटेल्स देना है, और एक पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो दे देना है। वो आपको कहीं छंटने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि इसमें लक्ष्य ना रख करके सारे किसानों को लाभान्वित करने के लिए सरकार एक पहल की है कि सारे किसान इसका लाभ उठा सके।
2: बहुत ही अच्छा योजना है सरकार का ये, और ये योजना हम गांव गांव तक पहुंचाने करेंगे।
0: बिल्कुल,
2: प्रचार प्रसार लोगों के बीच में ऐसा मिलकर जुलते है ही, तो
0: ताकि हमारे सारे किसानों को लाभ
2: ये हम लोग का एक तो भारत के नागरिक होने के नाते अपने किसान भाई लोग को यहाँ तक पहुँचाने के हम लोग कष्ट करेंगे।
0: अगर हम एक सभ्य नागरिक का ये विचार रहेगा तो निश्चित रूप से हमारी गांव अगर विकास कर जाएगी तो निश्चित रूप से पंचायत प्रखंड से लेकर देश का विकास।
3: बिल्कुल, इसीलिए भारत सरकार की ओर से जो कहा जा रहा है कि ग्रामोदय से भारत उदय, आने वाला समय में हमारे किसान इन कार्यक्रमों के माध्यम से या विभागों द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं के प्रति जागरूक होकर उन योजनाओं को

0: लेने में सक्षम होते हैं, तो आने वाला समय में बेरोजगारी कम होगी, पलायन भी रुकेगा। डोबा निर्माण एवं राइस फेलो योजना के साथ साथ सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी के संबंध में परिचर्चा में जगनमोहन सुरेन जी, राम होनहागा जी, जसवंत केसरी जी, शंको मुर्मू जी, कुंज बिहारी हंसदा जी, आप सब हमारे आकाशवाणी चैवासम में बहुमूल्य वक्त दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जोहार।
2: श्रोता, अभी हम परिचर्चा के माध्यम से जानकारी ले रहे थे डोबा निर्माण और सरकार की योजना। इस परिचर्चा के बाद आई कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं संदेश।
3: जलवायु परिवर्तन, यह यूनेस्को का संदेश है। कोयला, तेल और गैस जलाना, पेड़ काटना और पशुओं को पालना जैसे मानवीय काम ऐसे ग्रीन हाउस गैसेस उत्पन्न करते हैं जो पृथ्वी को गर्म कर देते हैं। औद्योगिक क्रांति के बाद से पृथ्वी की सतह का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ चुका है और जमीन महासागर के मुकाबले और तेज गर्म हो रही है। बर्फ के प्राचीन अध्ययन बताते हैं कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर अब 8 लाख सालों या 800 हजार सालों में सबसे ज्यादा है। बर्फ का पिघलना, समुद्र का स्तर बढ़ना, यह बदलाव वापस नहीं किया जा सकता। फिर भी उत्सर्जन लगातार बढ़ता जा रहा है। समुद्रों, बर्फ की परतों और समुद्र तल में होने वाले कई परिवर्तन अब लौटाए जा नहीं सकते। क्या आप जानते हैं पृथ्वी का तापमान लगभग 1.1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है, जिससे जमीन, समंदर और वायुमंडल सब पर गहरा असर पड़ा है।
2: श्रोताओं, इस संदेश के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम खेती गृहस्थी अब संपन्न होता है। अब सुरेश चंद्र सोय को विदा दीजिए। जोहार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती गृहस्थी। आइए अब सुनते हैं मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से।

0: नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं नूतन लकड़ा। राज्य के कैबिनेट मंत्री सुदिव्य कुमार का आज गिरिडीह में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इससे पहले राज्यपाल संतोष गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वर्गीय सुदिव्य कुमार के गिरिडीह आवास पहुंचकर उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुदिव्य कुमार का आकस्मिक निधन झारखंड के लिए अपूरणीय क्षति है और राज्य ने एक कर्मठ जनप्रतिनिधि तथा समर्पित मंत्री को खो दिया है। उन्होंने कहा कि सुदिव्य कुमार के योगदान और सेवाओं को सदैव स्मरण किया जाएगा। इधर मंत्री सुदिव्य कुमार के निधन पर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। राज्य सरकार ने मंत्री और झामुमो के वरिष्ठ नेता सुदिव्य कुमार के निधन पर आज और कल दो दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। इस दौरान राज्य सरकार के सभी निर्धारित कार्यक्रम रद्द रहेंगे और कल सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। राजकीय शोक के दौरान नियमित रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाने वाली सरकारी भवनों पर तिरंगा आधा झुका रहेगा। मंत्री सुदिव्य कुमार के निधन पर घोषित राजकीय शोक और सरकारी अवकाश के मद्देनजर कल होने वाली विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की सुनवाई स्थगित कर दी गई है। रांची और लोहरदगा समेत अन्य जिलों के प्रशासन ने संबंधित मतदाताओं से कहा है कि सुनवाई की नई तिथि की जानकारी बीएलओ के माध्यम से दी जाएगी। राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा पर निकले छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो आज सिमडेगा पहुंचे। श्री महतो ने कहा कि भर्ती व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर आंदोलन लगातार जारी रहेगा। दुमका के विश्व प्रसिद्ध बाबा बसुकीनाथ धाम में भादो मेले के दौरान आज श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। श्रावणी मेले की तर्ज पर श्रद्धालुओं को कतारबद्ध कर पूजा अर्चना और जलार्पण कराया गया। सुबह 4 बजे से ही कांवरिये कतार में लगकर बाबा फौजदारी नाथ का जलाभिषेक करने लगे। हजारों श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन कर सुख समृद्धि और मनोकामना की कामना की। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के चेबासा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम हो अखड़ा।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 7 करोड़ से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपने बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: तनाव, चिंता, उदासी, मानसिक परेशानी या आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं? याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। मदद के लिए संपर्क करें रिनपास कांके रांची।
3: पिछले 100 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान, जहां अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और नशा मुक्ति का निःशुल्क उपचार उपलब्ध है। डायल करें 24/7 हेल्पलाइन नंबर 9471136697, टोल फ्री नंबर 1449 या 1800-345-4060 पर।
2: समय पर मदद लें, स्वस्थ मन बेहतर जीवन पाएं। रिनपास एवं झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: अयमतन तैक नबु नोबुल बु बगेया पिरगल इन द होकर इमतन हग को इला आयरफा मियन जानकारी जगर बु अयुमियाची अबु ए नेन पश्चिमी सिंहभूम जिला रे मिशन वात्सल्य योजना मन केते मियन योजना से सेंतना ओकोन रे आशाय होन को अबु इंदारंग रे अबु समाज रे ओकोन होन को जा जिताय होनर बायतना या तो इनकन इंगा अपु को ओकोन को काको ललते ये कोतना इनहन इनकन होन को अबेन रिके दई को अबेन नेंदी अ प्रक्रिया नेलकमिन अची अबेन इन होन रिके लगते प्रगे केंद्रे लो मुखी अपना मुखी तायते अंडो थानायते पुरमान सकम बैरिकेते एन होन बेन रिक दईये अंडो एन होन अबेन 18 बस जों बेन रिक दईये इन लगते अबेन सरकार पात्रयो चंडोरे 4000 टका नमो दो नेन लिका अबु ए क्षेत्र रेन होन को आसाय होन को बुगेलिका अबु रिक दई को अंडो इंगा अपोकिन्यो बुगेलिकाते स्वास्थ्य किन ताइतिया दरकार इगमर हगको तीसिंग कुरडुरु चिल्के पु चिल्के लकिडा नेनाको निकुल सकम को तबु ओलकुलिया निकुल सकम को ओलकुलेते आ डगर को दो नेलकमिन आ आकाशवाणी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी चाईवासा पिन कोड रेल पीपी बरगुल मीर इंदमर तीसिंग ए समय को कुरडुरु को होबायना अंडो नेनलिकाते तीसिंग ए बगुड़ीते एबु निंतार के मर सेनो सेनो तालिंग जगनाथ सापाते सनाम को सिविल जोहार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हो अखड़ा। हम आकाशवाणी के चयबासा केंद्र से बोल रहे हैं, FM के 101.7 MHz पर। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं विकास योजनाओं पर आधारित कार्यक्रम सन्मार्ग।

श्रोताओं, हम सरकार की कुछ प्रमुख योजनाओं पर आज सबसे पहले बातें करेंगे। जी हाँ, 2026 में केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं में कई घोषित प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना, सेमिकॉन 2.0 परियोजना और पहले से चली आ रही है आयुष्मान भारत योजना व प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि शामिल है। श्रोताओं, नई और प्रमुख केंद्रीय योजनाएं जो है वो है प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना, जो जुलाई 2026 में घोषित इस बजट का या योजना का बजट 570 करोड़ रुपए हैं। इसका उद्देश्य देश के जलाशयों और झीलों पर फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाकर सौर ऊर्जा उत्पादन करना है। अब सेमिकॉन 2.0 परियोजना, भारत में सेमीकंडक्टर और चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए जुलाई 2026 में इस योजना को मंजूरी दी गई, जिसके तहत 1,27,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। श्रोताओं, केमिकल पार्क डेवलपमेंट स्कीम, इसके अंतर्गत ये जो है जुलाई 2026 में स्वीकृत इस योजना के तहत देश में समर्पित केमिकल पार्क और बेहतर बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए 330 करोड़ रुपए का आउटलेट रखा गया है। श्रोताओं, देश की अन्य निरंतर हम यूं कहें कि जो प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं हैं उसमें आयुष्मान भारत योजना, गरीबों को मुफ्त स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधा प्रदान करने वाली ये प्रमुख योजना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसानों को वित्तीय सहायता देने की योजना है। प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण और शहरी सभी बेघर परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने की योजना है। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, महिलाओं को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन देने की योजना है।

श्रोताओं, आज हम कुछ बातें करेंगे और जानकारी लेंगे कौशल विकास योजना पर। जी हाँ, कौशल विकास योजना युवाओं को उनकी रुचि के अनुसार निःशुल्क व्यवहारिक प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर और रोजगार के योग्य बनाती है। इससे रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। यह योजना जो है अकादमिक शिक्षा और नौकरी के बाजार मांग के बीच की खाई को पाटकर युवाओं को सीधे रोजगार से जोड़ती है। विभिन्न सेक्टरों में ट्रेनिंग, इसके तहत ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, हेल्थ केयर, एआई और ड्रोन जैसे आधुनिक क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाता है। आत्मनिर्भरता, प्रशिक्षण के बाद युवा या तो बेहतर नौकरी पाते हैं या अपना खुद का स्वरोजगार शुरू करने में सक्षम होते हैं। आर्थिक मजबूती, जी हाँ, इससे युवाओं की आय में सुधार होता है और उसका भविष्य सुरक्षित होता है।

इसी के तहत श्रोताओं, हुनर से बदलेगी जिंदगी की दिशा, आत्मनिर्भरता की राह पर बढ़ेंगे अब मंडरकारा चैवासा के बंदी, प्रोजेक्ट परिवर्तन हुनर से पहचान के नाम से। जी हां, पश्चिम सिंहभूम जिला प्रशासन द्वारा संचालित प्रोजेक्ट परिवर्तन हुनर से पहचान के तहत मंडलकारा चैवासा में बंदियों के कौशल विकास एवं उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की दिशा में व्यावसायिक बागवानी प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया गया। यह प्रशिक्षण शिविर 4 सितंबर से 9 सितंबर 2026 तक 6 दिनों तक संचालित होगा। प्रशिक्षण के दौरान जेल के 40 बंदियों की टीम को फल एवं सब्जी उत्पादन और जैविक खाद निर्माण से संबंधित व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। कार्यक्रम का उद्देश्य है श्रोताओं की बंदियों को रोजगार परक कौशल से जोड़ते हुए भविष्य में स्वरोजगार एवं सम्मानजनक आजीविका के लिए तैयार करना है।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 7 करोड़ से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपने बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: क्या आप तनाव, चिंता, उदासी, मानसिक परेशानी या आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं? याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। मदद के लिए संपर्क करें रिनपास कांके रांची।
3: पिछले 100 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान, जहां अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और नशा मुक्ति का निःशुल्क उपचार उपलब्ध है। डायल करें 24/7 हेल्पलाइन नंबर 9471366697, टोल फ्री नंबर 1-800-345-4060 पर।
2: समय पर मदद लें, स्वस्थ मन, बेहतर जीवन पाएं। रिनपास एवं झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: श्रोताओं, अब आइए, जब हम कौशल विकास की बातें कर रहे हैं तो इसी से संबंधित कुछ और जानकारी लें। कौशल विकास से युवाओं में लाभ, जानकारी दे रहे हैं सत्येंद्र पूर्ति।
5: आपके इस संस्थान में स्किल डेवलपमेंट के तहत कौन कौन से प्रशिक्षण दिए जाते हैं?
6: इसमें बहुत सारा प्रशिक्षण है। एग्रीकल्चर बेस्ड है, प्रोडक्ट है, प्रोसेस है। एग्रीकल्चर में जैसे गोट रेयरिंग हुआ, पोल्ट्री हुआ, फिशरी हुआ, और प्रोडक्ट में अचार बनाना, पापड़ बनाना, अगरबत्ती मोमबत्ती वगैरह है। और प्रोसेस में ये टू व्हीलर सर्विसिंग है, LMB ड्राइविंग है, इस तरह का बहुत सारा प्रोग्राम्स है।
5: अच्छा अच्छा, मान लीजिए कि आपके संस्थान में हम प्रशिक्षण लेना चाहते हैं तो आप चयन किस तरह करते हैं, उनकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए?
6: एक सबसे पहला है कि ये ग्रामीण क्षेत्र से होना चाहिए, पहला क्राइटेरिया है, ग्रामीण क्षेत्र से होना चाहिए। और दूसरा है थोड़ा सा लिटरेसी होना चाहिए, जबकि MORD बोलती है कि इलिटरेट को भी ट्रेनिंग देना है, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि लिटरेसी हो, क्योंकि जैसे डॉक्टर का एक गोट्री का ट्रेनिंग होगा, उसमें वेटनरी डॉक्टर का क्लास रहता है, तो डॉक्टर सिम्टम्स बताते हैं, इसके बाद में ट्रीटमेंट बताते हैं, मेडिसिन के बारे बताते हैं। तो जब तक लिटरेसी नहीं रहेगा, थोड़ा लिख पढ़ नहीं पाएंगे, तो मेरे ख्याल से वो उतना सक्सेस नहीं है।
5: अच्छा,
6: इसलिए कम से कम 8 क्लास हो, 8 क्लास से ऊपर कुछ भी हो।
5: अच्छा अच्छा,
6: लेकिन जो चाहते हैं कि नहीं, हमको हर हालत में ट्रेनिंग लेना ही है, तो हम लोग डिस्करेज नहीं करते।
5: अच्छा अच्छा, उन तक पहुंचने के लिए या फिर जो अभ्यर्थी हैं वो आप तक पहुंचने के लिए क्या करेंगे, कैसे उन्हें पता चलेगा कि यहाँ प्रशिक्षण दिया जा रहा है और कौन चीज़ की प्रशिक्षण दिया जा रहा
6: है? ऐसा है कि हम लोग का पूरा पश्चिमी सिंहभूम में ये कवर करता है, तो हम लोग पूरा गाँव में अवेयरनेस कैंप करते हैं, और ग्राम सभा के माध्यम से या मन के मुंडन के माध्यम से गांव-गांव में जाकर के अवेयरनेस कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं, और वहां पर सारा ट्रेनिंग के बारे में बताते हैं।
5: अच्छा अच्छा, अब तक कितने लोगों को, या हम यूँ कहें कि छात्र छात्राओं को आपने प्रशिक्षण दिया?
6: सिंस इंसेप्शन 2000 से ज़्यादा, करीब करीब 3000 के आसपास ट्रेनिंग दे चुके हैं हम लोग।
5: अच्छा अच्छा, कितने दिनों का ये प्रशिक्षण होता है?
6: ये अब तक था कि मिनिमम 6 डेज से लेकर के 1 महीने तक का, लेकिन अभी 17-18 जो फाइनेंशियल ईयर होगा इसमें मिनिमम 10 डेज का होगा, मैक्सिमम 1.5 महीने का होगा।
5: अच्छा, उन्हें और क्या सुविधा देते हैं आप?
6: सुविधा जिनको अपना सेटअप स्टार्ट करना है, अगर फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए तो बैंक के थ्रू से हम लिंक करवाते हैं।
5: अच्छा अच्छा, उन्हें किस तरह का सुविधा, मैंने और मैंने बैंक उन्हें किस तरह का सहयोग और करती है?
6: बैंक का काम तो है कि फाइनेंशियल सपोर्ट देना, लेकिन हम लोग अपने तरफ से क्या करते हैं, उनको 2 साल तक फॉलोअप करते हैं। जब तक कोई स्टैंड नहीं करता है, तो हम लोग 2 साल तक उनको सपोर्ट करते हैं, फॉलोअप करते हैं, कहाँ क्या प्रॉब्लम है सारा चीज़ हम देखते हैं।
5: अच्छा अच्छा, खासकर अगर हम महिलाओं की बातें करें, महिला सशक्तिकरण के जो अभी दिवस चल रहा है, सप्ताह चल रहा है, ये महिलाओं के लिए कोई विशेष प्रशिक्षण आप दे रहे हैं क्या?
6: महिलाओं के लिए जैसे ड्रेस डिजाइनिंग है, और अभी बहुत सक्सेसफुल रहा है। हम लोग एक अचार पापड़ का कराए थे और अगरबत्ती मोमबत्ती का, अचार पापड़ का ट्रेनिंग कराने के बाद में ये जो स्वादिष्ट मेला हुआ था उनको हम लोग ट्रायल बेसिस पर वहाँ एक स्टॉल दिए, हम लोग को मिला था तो वहाँ पर लगाए थे, तो उनको बहुत प्रोत्साहन मिला और वो लोग इस तरह से बहुत आगे आ रही है।
5: अच्छा,
6: और जैसे अगरबत्ती मोमबत्ती भी महिलाएं अभी बनाना शुरू की है और गांव देहात में वो अपना बेच भी रही है।
5: अच्छा,
6: और इसके लिए हम लोग क्या करें, जैसे अगरबत्ती मोमबत्ती इसके लिए मटेरियल क्या अवसर मिलता नहीं है, तो हैंड होल्डिंग सपोर्ट के लिए हम लोग जमशेदपुर तक जा कर के उनको पहला बार सामान वगैरह खरीद में मदद कर देते हैं।
5: अच्छा, जैसे आपने कहा कि बैंक के वो ऋण उपलब्ध कराती है जो भी प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, है ना, तो वो कैसे संपर्क करेंगे बैंक को? अगर मान लीजिए कि हम कोई प्रशिक्षण लेकर यहाँ से गए और हमें ऋण की आवश्यकता हुई, क्योंकि कुछ पैसों की कमी के कारण लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तो ऐसे लाभार्थियों के लिए आप क्या करते हैं, बैंक क्या करते हैं?
6: ये ट्रेडिंग के बीच में ही एक कंप्लीट डे का सेशन होता है, बैंकिंग का सेशन रहता है पूरा डे, इसमें बैंक के बारे में पूरा बताया जाता है। और ट्रेनिंग के बाद में जिनको इच्छुक लोग हैं, जिनको लोन लेना है, तो उनका लोन एप्लीकेशन फॉर्म संबंधित बैंक ब्रांच में लोग भेज देते हैं।
5: अच्छा,
6: इसके बाद में अगर किसी तरह का टेक्निकल प्रॉब्लम होता है तो फिर उसको हम लोग सपोर्ट करते हैं, और फिर भी अगर बैंक से सब नहीं मिल पा रहा है तो LDM के थ्रू भी उनको हम लोग लोन दिलाने के लिए प्रयास करते हैं।
5: अच्छा, कितने तक का लोन आप देते हैं?
6: प्रोजेक्ट के हिसाब से है।
5: अच्छा,
6: लोन तो हम नहीं देते हैं, लोन तो बैंक
5: देती
6: है, बैंक देती है, तो उसमें क्या प्रोजेक्ट के हिसाब से हुआ।
5: अच्छा अच्छा,
6: जैसे गोटरियरिंग है, पिगरी है, इसमें अगर गोटरी है इसमें तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का जरूरत नहीं है, 50,000 काफ़ी है। और अगर पोल्ट्री है, पोल्ट्री स्टार्टिंग में ज़्यादा की जरूरत नहीं पड़ता है, अगर वो बाद में बढ़ाना चाहेगा तो 2-2.5 लाख तक भी अवेलेबल है।
5: तो चलिए, आपने हमारे श्रोताओं को बहुत अच्छी जानकारियाँ दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले अपना नाम बताइए।
7: जी, मेरा नाम शोभा देवी।
5: अच्छा, तो ये प्रशिक्षण आपने कहाँ से लिया?
7: ये हम लोग का तमाड़बाद पंचायत में स्वरोजगार के लिए ट्रेनिंग दिया गया था।
5: अच्छा अच्छा, इसमें क्या सिखाया गया था?
7: अगरबत्ती बनाने के लिए और मोमबत्ती बनाने के लिए।
5: अच्छा जी। तो आप समिति की ओर से, आप लोग जो समिति बनाए हैं, इसमें कैसे आप लोगों ने सोच आया कि ये अगरबत्ती बनाने का काम हमें लेना चाहिए रोजगार के लिए?
7: ये अगरबत्ती बनाएंगे और फिर हम लोग का घर परिवार का भी अच्छा रहेगा, और हम लोग घर का काम करते हुए भी ये सब स्वरोजगार कर सकेंगे।
5: अच्छा अच्छा, इसी के लिए किए?
7: इसी के लिए किए।
5: अच्छा अच्छा, तो शुरुआत में तो जब आप लोग शुरुआत किए होंगे इसका बनाने का, तो फिर आपको पैसा कहाँ से मिला?
7: हम लोग अपना ग्रुप से, जैसे हम लोग का महिला ग्रुप है, हम लोग प्रत्येक महिला 500 रुपया करके जमा किए। अच्छा, फिर हम लोग टाटा से माल लाए।
5: अच्छा,
7: और अभी बनाने का शुरू किए 2 तारीख से।
5: हाँ। अच्छा, ये हमें बताइए कि आप समिति में कितने लोग हैं?
7: 13 लोग
5: हैं।
7: हाँ जी।
5: अच्छा, 13 लोग मिलके एक समिति बनाए और ये अगरबत्ती बनाने का काम आप लोग कर रहे हैं।
7: हाँ, शुरू किए बनाने।
5: तो इसमें फायदा कितना हो रहा है आपको?
7: अभी फिलहाल हम लोग 1 महीना बनाए, उसका फायदा करीब करीब हम लोग को अभी 6,500 लगाए, तो हम लोग को अभी ज़्यादा तो सर नहीं आया, कहे कि हम लोग का आना जाना खर्चा लगा, उसमें हम लोग फाइल खरीदे, उसमें हम लोग क्या बोलेंगे ये जो सटने वाला
5: पैकेट खरीदे,
7: हाँ पैकेट खरीदे, रिफिल खरीदे, सब कुछ खरीदे, उसके बाद हम लोग का खाना पीना सब कुछ जुड़े हुए, उतना हम लोग का लफा तो नहीं आया, करीब करीब अभी 4,000 जैसे आएगा जैसे लग रहा है।
5: अच्छा अच्छा अच्छा
7: जी।
5: अच्छा, तो ये जो पैसा आएगा तो आप लोग 13 जन में बांटेंगे?
7: जी।
5: अच्छा, तो क्या लगता है कि ये जो रोजगार आप अभी जो कर रहे हैं अगरबत्ती बनाने से, इससे आपको आगे जो आपकी जिंदगी है, आगे जो रोजगार करना चाहते हैं, वो हो पाएगा?
7: होगा सर, हम लोग मेहनत करेंगे तो जरूर होगा।
5: अच्छा अच्छा, तो आप जैसे गृहिणी है ना, आपके परिवार में कौन कौन है?
7: मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड हैं, मेरी सास है।
5: अच्छा,
7: और हम हैं।
5: अच्छा अच्छा, तो इतने लोगों का काम धाम भी आपको घर में करना होगा?
7: जी जी।
5: अच्छा, इन समय कैसे निकाल लेते हैं?
7: ऐसे हम लोग समय घर का काम करते हैं, खाना उना कपड़ा लता सब कुछ काम खत्म करके 1 बजे से आते हैं 5 बजे तक।
5: अच्छा अच्छा
7: जी।
5: और घर में कमाने वाले कौन कौन हैं?
7: हस्बैंड हैं।
5: अच्छा, क्या करते हैं?
7: गाड़ी चलाते हैं दूसरों का।
5: अच्छा अच्छा,
7: अपना गाड़ी नहीं है।
5: अच्छा जी। तो आप महिला होकर कुछ रोजगार कमाने के लिए सोच रहे हैं ना?
7: जी जी।
5: अच्छा, और महिलाओं को आप क्या कहना चाहेंगे?
7: हम लोग ऐसे मिल के समूह में स्वरोजगार करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, हम लोग का घर का मदद होगा।
5: अच्छा अच्छा
7: जी, इसी सोच के हम लोग सब महिला कर रहे हैं।
5: अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या हुआ?
8: अंजू रश्मि कुंकर।
5: अच्छा, ये अगरबत्ती बनाने का काम कर रही हैं
8: जी।
5: तो ये सोच कैसे आया, कहाँ से सोचे कि रोजगार के लिए, स्वरोजगार के लिए अगरबत्ती बनाया जाए?
8: आजकल जैसे कि बहुत सारे सरकार के और बाजार बहुत महंगाई बढ़ गया है, तो मुझे परिवार का खर्चा नहीं चल पाता है, तो इसमें हम लोग सोचे कि कुछ मैंने ट्रेनिंग दे करके हम लोग अपना स्वरोजगार करेंगे बोल के।
5: अच्छा।
8: इसलिए हम लोग अगर इसका ट्रेनिंग लिए स्टार स्वरोजगार तरफ से, और उसके बाद ये हम लोग अपना बना करके और हम लोग अपने रोजगार कर रहे हैं।
5: अच्छा अच्छा, तो कोई भी रोजगार शुरू करने से पहले जो ये आप लोग अगरबत्ती बना रहे हैं
8: जी,
5: तो इसमें पूंजी तो लगता होगा, तो ये पूंजी कहाँ से मिला आपको?
8: ये पूंजी हम लोग अपने ग्रुप में से, 13 जन का हम लोग का ग्रुप है, उसी में से हम लोग ग्रुप से हम लोग अपना अपना ये पैसा ये इकट्ठा किया, उसके बाद अपना सामान लेकर के अपना रोजगार चालू कर रहे हैं।
5: अच्छा, तो आपकी समिति में कितने लोग हैं?
8: हम लोग की समिति में कुल 13 जन हैं।
5: 13 जन
8: जी।
5: और ये बनाने का काम आप लोग कितने से कितने बजे तक करते हैं?
8: हम लोग ये काम 1 बजे से 4:30-5 बजे तक करते हैं।
5: अच्छा अच्छा, तो आप तो गृहिणी हैं, घर का भी काम करना पड़ता होगा
8: जी,
5: तो ऐसे में समय कैसे निकाल लेते हैं आप?
8: ये जो हम लोग का खाली समय है उसमें हम लोग ये इसमें समय देते हैं।
5: अच्छा अच्छा। घर में जो भी परिवार के लोग हैं, क्या इनका सहयोग रहता है आपको?
8: जी, पूरा पूरा सहयोग है।
5: पूरा सहयोग है
8: जी।
5: अच्छा अच्छा, ये बताइए कि अभी तो आप कम पूंजी पे ये कर रहे हैं
8: जी,
5: तो अधिक पूंजी के लिए तो अधिक पैसों की जरूरत पड़ेगी ना
8: जी,
5: तो इसके लिए क्या सोचा है आपने?
8: ये हम लोग मैंने पूरे संस्था की ओर से मैंने सरकार से लोन लेने का सोच रहे हैं हम लोग।
5: अच्छा अच्छा, अभी तक आप लोग लोन नहीं लिए?
8: नहीं नहीं लिए,
5: मैंने अपने पैसा मिला के ये काम कर रहे हैं,
8: चालू किए हैं।
5: तो क्या लगता है कि ये जो आप अगरबत्ती बना रहे हैं इससे आपको अच्छा खासा पैसा मुनाफा होगा?
8: जी, इसमें मैंने प्रॉफिट है बहुत, मैंने अभी थोड़ा है लेकिन आगे चल के ज्यादा हो जाएगा।
5: अच्छा अच्छा
8: जी,
5: तो इसके लिए तो मेहनत ज्यादा करनी होगी?
8: हाँ, मेहनत तो है, लगेगा ही हम लोग को।
5: अच्छा, एक चीज हमें बताइए कि पहले जमाने की अगर हम बातें करें तो महिलाएं घर पे ही रहती थी
8: जी,
5: और अभी जो है आप लोग घर से बाहर निकल रही हैं, कुछ कर रही हैं, अपने परिवार का सहयोग कर रही हैं
8: जी,
5: तो ऐसे में आपको कैसा लगता है?
8: जी, सहयोग कर रहे हैं तो अभी अच्छा लग रहा, बाहर निकल के हम लोग खुशी, मेरा माइंड फ्रेश भी लगता है, और मैंने सब ग्रुप में रहते हैं तो अच्छा लगता है हम लोग को। दो पैसा आता है तो घर भी अच्छा चलता है।
5: अच्छा,
8: जी,
5: तो आपकी तरह और भी महिलाओं से आप क्या कहना चाहेंगे?
8: यही कहना चाहूँगी कि सभी को मैंने कुछ ना कुछ खाली समय में करना चाहिए, जिससे कि परिवार का सहयोग हो जाए।

0: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
1: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया।
2: बन गया बजट?
1: हाँ,
2: 5,000 बच गए।
1: तो नई साड़ी ले ले।
2: ना,
1: पिछले महीने तो ली थी।
2: एक और
1: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
2: बढ़िया,
1: जाओ भाई।
3: आरबीआई कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: तो इसी के साथ ही हमारा विकास योजनाओं पर आधारित कार्यक्रम सन्मार्ग यहीं संपन्न होता है। अगले बार कुछ विशेष जानकारियों के साथ हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी रमेश दास को विदा दें। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे विकास योजना पर आधारित कार्यक्रम सन्मार्ग। हम आकाशवाणी के चयबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर। श्रोताओं, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:56 होने को हैं। आइए अब हम आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र, जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और ज़िले में आजकल। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: किधर है?
2: बेटे का नया अकाउंट और मेरा केवाईसी अपडेट।
1: ये तो झटपट काम है।
2: कैसे?
1: अगर केवाईसी डिटेल्स में चेंज नहीं या सिर्फ एड्रेस बदला है तो रजिस्टर्ड ईमेल, मोबाइल, ऑनलाइन या लेटर से सेल्फ डिक्लेरेशन दे दो।
2: और

0: बाकी चेंजेस घर बैठे वीडियो केवाईसी या आधार ओटीपी बेस्ड ई केवाईसी से सिर्फ बैंक ऑथराइज्ड चैनल से, ये नूडल्स बनाने जितना आसान है। आरबीआई कहता है
1: केवाईसी सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम।
2: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही आरबीआई, इससे बेहतर कुछ नहीं।
3: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस आरबीआई की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
4: वेक्टर जनित रोग मलेरिया फाइलेरिया डेंगू चिकनगुनिया कालाजार और जापानीज इंसेफेलाइटिस से बचाव के लिए मच्छरों से अपना बचाव करें। अपने घर के आसपास सफाई रखें, जल जमाव न होने दें, पानी के बर्तनों को ढक कर रखें, पूरे आस्तीन के कपड़े पहने और हमेशा मच्छरदानी के अंदर सोएं।
5: बुखार होने पर ओझागुनी के पास ना जाएं, अपने गांव की सहिया को बताएं या नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, मुफ्त जांच और उपचार कराएं।
4: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
6: यह आकाशवाणी का रांची केंद्र है। दोस्तों, अब से कुछ ही देर में यानी 7 बजे से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। मंत्री सुदिव्य कुमार को राजकीय सम्मान के साथ गिरिडीह में दी गई अंतिम विदाई। राज्यपाल और मुख्यमंत्री समेत विभिन्न दलों के नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित कर जताया शोक। दिवंगत मंत्री के निधन पर झारखंड में 2 दिन का राजकीय शोक घोषित। सरकारी कार्यक्रम रद्द और कल बंद रहेंगे सभी सरकारी कार्यालय। राजकीय शोक के कारण राज्यभर में विशेष गहन पुनर्निरीक्षण SIR की सुनवाई स्थगित। अब BLO के माध्यम से मिलेगी नई तिथि। हजारीबाग में आयोजित विज्ञान मेले में राज्य भर से 701 बाल वैज्ञानिकों ने लिया भाग। वर्षा जल संरक्षण, पर्यावरण और जैव प्रौद्योगिकी पर प्रस्तुत किए गए मॉडल। और मौसम विभाग ने राज्य में 13 सितंबर तक गरज के साथ बारिश और वज्रपात की जताई संभावना। रांची समेत 7 जिलों में कहीं कहीं भारी वर्षा होने के आसार। और अब समाचार विस्तार से। राज्य के कैबिनेट मंत्री सुदिव्य कुमार का आज गिरिडीह में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इससे पहले राज्यपाल संतोष गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वर्गीय सुदिव्य कुमार को गिरिडीह आवास पहुंचकर उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुदिव्य कुमार का आकस्मिक निधन झारखंड के लिए अपूर्णीय क्षति है और राज्य ने एक कर्मठ जनप्रतिनिधि तथा समर्पित मंत्री को खो दिया है। उन्होंने कहा कि सुदिव्य कुमार के योगदान और सेवाओं को सदैव स्मरण किया जाएगा। इधर मंत्री सुदिव्य कुमार के निधन पर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने उच्च शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार के निधन पर गहरा शोक जताया है। आज गिरिडीह में श्रद्धांजलि देने के बाद उन्होंने कहा कि मंत्री के निधन से हुई क्षति की भरपाई संभव नहीं।
1: एक व्यक्ति है सुदिव्य कुमार सोनू, जो संसदीय प्रणाली और उसके व्यवस्था का जानकार बहुत सारा, चाहे वो भाषा विवाद का इशू हो, छात्रों का मामला हो, सदन कैसे व्यवस्थित रूप से चले, ये चिंता उन्हीं को हो सकती है। ये दुख बर्दाश्त ही नहीं हो सकता है। हमारा भाई चला, क्यों चला गया समझ में नहीं आया, बहुत दुख।
0: इधर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि सुदिव्य कुमार उनके लिए सिर्फ एक साथी मंत्री नहीं बल्कि भाई के समान थे और उनकी कमी हमेशा महसूस होगी।
2: मैंने अपने भाई को खो दिया। कल देर रात्रि ये जानकारी मिले कि उनकी तबीयत खराब है, तो डॉक्टर जैसे ही पेट में दर्द था, एब्डोमिनल

0: पेन था उनको। परिवार वाले बोलते रह गए कि हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाए, तो फिर भी वो नकारते गए कि नहीं मैं ठीक। 12 बजे उनकी तबियत और खराब, उसके बाद भी वो नकारते रहे। फिर आनंद फानंद में जब उनकी तबियत और बिगड़ गई तो फिर पास किए के दीजिए हॉस्पिटल में उनको ले जाया गया, और जहाँ पर उनको डॉक्टर ने 10 मिनट में घोषित कर।
1: मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू के निधन पर दुमका सांसद नलिन सोरेन, पूर्व मंत्री लुईस मरांडी, मथुरा महतो और हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल के अलावा कई अन्य नेताओं ने गहरा शोक व्यक्त किया है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि सुदिव्य कुमार ने सार्वजनिक जीवन में रहते हुए राज्य और समाज के हित में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
2: झारखंड सरकार के नगर विकास मंत्री और उप शिक्षा मंत्री सुदीप सुब सोनू जी अचानक हार्ट अटैक के कारण उनकी मृत्यु हो गई। समाचार सुन के मन बहुत व्यथित हुआ, क्योंकि झारखंड सरकार में एक सुलझे हुए वो इंसान थे और बहुत कम समय में उन्होंने संसदीय जीवन में अपनी बात को सरकार की बात को रखता था। तो निश्चित रूप से ऐसे जन नेता असामयिक मृत्यु से झारखंड को अपूर्णीय क्षति हुई।
1: राज्य सरकार के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू की अंतिम यात्रा आज गिरिडीह से निकली। उनके निधन से झारखंड के राजनीति में शोक की लहर है। एक रिपोर्ट।
3: झारखंड सरकार के मंत्री और झामुमो के वरिष्ठ नेता सुदिव्य सोनू के निधन से पूरे राज्य में शोक की लहर है। उन्होंने 1989 में झामुमो के साथ अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी और 2019 में पहली बार गिरिडीह से विधायक निर्वाचित हुए। 2014 में दूसरी बार विधायक चुने जाने के बाद उन्हें राज्य सरकार में मंत्री बनाया गया। मंत्री के रूप में उनके पास नगर विकास, आवास, पर्यटन, युवा कार्य एवं कला संस्कृति और तकनीकी एवं उच्च शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी थी। सुदिव्य सोनू झारखंड को देश के प्रमुख पर्यटन राज्यों में शामिल करने और माइनिंग टूरिज्म को बढ़ावा देने के पक्षधर थे। गिरिडीह में कई महत्वपूर्ण विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने में भी उनकी भूमिका रही। उनके निधन से झामुमो संगठन, राज्य सरकार और गिरिडीह की राजनीति में शोक व्याप्त है। मैं विश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: राज्य सरकार ने मंत्री और झामुमो के वरिष्ठ नेता सुदिव्य कुमार के निधन पर आज और कल 2 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। इस दौरान राज्य सरकार के सभी निर्धारित कार्यक्रम रद्द रहेंगे और कल सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। राजकीय शोक के दौरान सरकारी भवनों पर तिरंगा आधा झुका रहेगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। मंत्री सुदिव्य कुमार के निधन पर घोषित राजकीय शोक और सरकारी अवकाश के मद्देनजर कल होने वाली विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की सुनवाई स्थगित कर दी गई है। रांची और लोहरदगा समेत अन्य जिलों के प्रशासन ने संबंधित मतदाताओं से कहा है कि सुनवाई की नई तिथि की जानकारी BLO के माध्यम से दी जाएगी। इधर सिमडेगा के अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में हॉकी परिवार ने 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत मंत्री को श्रद्धांजलि दी। मंत्री के सम्मान में 12वीं मेजर ध्यानचंद महिला एवं पुरुष हॉकी चैंपियनशिप के आज और कल के सभी मैच स्थगित कर दिए गए हैं। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज लोकभवन में राज्यसभा की सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के अध्यक्ष डॉ. एम. थंबीदुरई के नेतृत्व में समिति के सदस्यों ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान राज्यपाल और समिति के सदस्यों के बीच विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श हुआ। हजारीबाग के कुम्हार टोला स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में 2 दिवसीय विज्ञान मेले का आयोजन किया गया। विद्यालय के प्राचार्य शमेंद्र कुमार शाहू ने बताया कि मेले का उद्देश्य बच्चों में वैज्ञानिक सोच और नवाचार को बढ़ावा देना है।
4: वैसे भैया बहन जिनके अंदर वैज्ञानिक प्रतिभा छिपी हुई है उसको उकेरना, उसके अंदर की वैज्ञानिक प्रतिभा को जागृत करना और उसकी सोच को मॉडल के माध्यम से प्रस्तुत करना, प्रेजेंटेशन के माध्यम से दिखलाना, प्रयोग में भैया बहन कितने अव्वल हैं उनमें एक मेधा जगे, ये सारी बातें भैया बहनों के सर्वांगीण विकास में आवश्यकता है। इसी उद्देश्य को लेकर हम लोग चल रहे।
1: राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा पर निकले छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो आज सिमडेगा पहुंचे। श्री महतो ने कहा कि भर्ती व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर आंदोलन लगातार जारी रहेगा। बोकारो जिले के सेक्टर 6 बाजार में आज सुबह लगी आग में 8 दुकानें जलकर पूरी तरह नष्ट हो गईं। हालांकि घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। पुलिस उपाधीक्षक राजीव रंजन ने बताया कि प्रथम दृष्टया आग सर्किट से लगने की आशंका है। राज्य में 13 सितंबर तक गरज के साथ बारिश और वज्रपात की संभावना को देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने बताया कि राजधानी रांची समेत पलामू, गढ़वा, लातेहार, चतरा, लोहरदगा, गुमला और खूंटी जिले में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। इस दौरान गरज के साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मंत्री सुदिव्य कुमार को राजकीय सम्मान के साथ गिरिडीह में दी गई अंतिम विदाई। राज्यपाल और मुख्यमंत्री समेत विभिन्न दलों के नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित कर जताया शोक। दिवंगत मंत्री के निधन पर झारखंड में 2 दिन का राजकीय शोक घोषित। सरकारी कार्यक्रम रद्द और कल बंद रहेंगे सभी सरकारी कार्यालय। राजकीय शोक के कारण राज्यभर में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की सुनवाई स्थगित। अब BLO के माध्यम से मिलेगी नई तिथि। हजारीबाग में आयोजित विज्ञान मेले में राज्यभर से 701 बाल वैज्ञानिकों ने लिया भाग। वर्षा जल संरक्षण, पर्यावरण और जैव प्रौद्योगिकी पर प्रस्तुत किए मॉडल। और मौसम विभाग ने राज्य में 13 सितंबर तक गरज के साथ बारिश और वज्रपात की जताई संभावना। रांची समेत 7 जिलों में कहीं कहीं भारी वर्षा होने के आसार। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
5: इतनी रात में SMS, KYC अपडेट कीजिए, नहीं तो अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। लिंक पे क्लिक करता हूँ, ब्लॉक ना हो जाए।
6: रुको, चेक किया, लिंक सिक्योर है, सेंडर आपका बैंक ही है। KYC अपडेट के लिए अनजान लिंक खोलना मतलब अनजान लोगों के लिए अपने अकाउंट का दरवाजा खोलना। झूठी जल्दबाजी में ना फंसिए और फर्जी KYC अपडेट लिंक से बचिए। RBI कहता है,
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे पश्चिमी सिंहभूम जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे चाईबासा संवाददाता।
1: राज्य की भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक जैसे गंभीर मामलों को लेकर पश्चिमी सिंहभूम जिले में भी छात्र आंदोलनरत हैं। इसी बीच छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा के साथ पश्चिमी सिंहभूम पहुंचे और उन्होंने यहां के छात्र समुदाय से मुलाकात कर विभिन्न विषयों पर चर्चा की। देवेंद्र महतो के जिले में आगमन पर छात्र समुदाय की ओर से उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस दौरान श्री महतो ने मीडिया से बातें करते हुए कहा कि वह एक ऐसी चाहते हैं जो इस बात की गारंटी दे कि भविष्य में झारखंड में किसी भी प्रकार की परीक्षाओं के पेपर लीक ना हो, साथ ही इस प्रकार के अपराध को अंजाम देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो।
2: नौकरी पैरवी से नहीं, संघर्ष हुनर के आधार पर हो, भ्रष्टाचार नहीं पारदर्शी के आधार पर हो, झारखंड में झारखंडियों का नौकरी हो, इसको यात्रा से पहले इसको लेकर के हम लोग भूख हड़ताल किए, सत्याग्रह आंदोलन किए। इससे पता चलता है कि भ्रष्टाचार शिक्षा व्यवस्था पर, नियुक्ति व्यवस्था पर चरम पर है। इसीलिए हम लोग एक ऐसा व्यवस्था, ऐसा नियम, ऐसा कानून, ऐसा कमेटी हम लोग चाहते हैं जिस पर गारंटी दिया जाए पेपर लीक धांधली पहचान पैरवी से नौकरी नहीं होगा, होगा तो उसको पकड़ा जाएगा तो उसको आजीवन कारावास दिया जाएगा।
1: जिले में लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव की मांग को ध्यान में रखते हुए टाटानगर एर्नाकुलम एक्सप्रेस का ठहराव मनोहरपुर स्टेशन पर दिया गया है। इस मौके पर चक्रधरपुर रेल मंडल की ओर से एक समारोह आयोजित किया गया जिसमें विभिन्न जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में ट्रेन का स्वागत किया गया। इस दौरान उपस्थित सिंहभूम के सांसद जोबा मांझी ने आम लोगों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके लगातार आंदोलन और मांगों का ही परिणाम है कि रेलवे के द्वारा जन सुविधाओं में बढ़ोतरी की जा रही है।
2: इन लोगों ने वर्षों से मांग करते रहा और अपना मांग को जनप्रतिनिधि के माध्यम से इस मांग को पूरा करने के लिए हमेशा आंदोलन भी बोलिए, मांग भी बोलिए। और आज रेल मंत्री भारत सरकार के द्वारा एर्नाकुलम ट्रेन को मनोहरपुर स्टेशन में ठहराव का जो सुनिश्चित किया है, इसके लिए रेल मंत्री के प्रति धन्यवाद करते हैं।
1: डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जन्म जयंती के मौके पर जिले भर में शिक्षक दिवस समारोहों का आयोजन किया गया। इस मौके पर विशेषकर छात्रों ने अपने शिक्षकों को बधाइयां दी और उनका आभार जताया। शिक्षा समुदाय ने भी एक दूसरे को इस मौके पर बधाई दी। वरिष्ठ शिक्षक निर्मल त्रिपाठी ने कहा कि यह शिक्षक समुदाय के लिए हर्ष का अवसर होता है, साथ ही साथ उन्होंने कहा कि यह अवसर शिक्षक समुदाय को अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी दिलाता है।
3: आज श्री मारवाड़ी हिंदी मध्य विद्यालय के सभागार में आकर सृजन सखा के जितने मेंबर हम शिक्षकों को सम्मानित किए, इसके लिए मैं विद्यालय परिवार की ओर से उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं। और उनका जो ये मनोबल बढ़ाने का कार्यक्रम है हम शिक्षकों के लिए, ये हम लोग को समाज के लिए, हमारे बच्चों के लिए कुछ और आगे करने के लिए प्रेरित करेगा। मैं उनको हमारे विद्यालय की ओर से बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि उनका इस तरह का साथ उन लोग को हमेशा मिलता रहेगा। मैं तमाम शिक्षकों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं।
1: शिक्षक दिवस के अवसर पर कई स्कूलों में प्रभात फेरियां भी निकाली गई और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद किया गया। दिलीप बैनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा।
0: अभी आप सुन रहे थे पश्चिमी सिंहभूम जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

FM के 101.7 MHz पर यह आकाशवाणी का चयबासा केंद्र है। श्रोताओं, 7:16 हो रहे हैं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम आपकी पसंद।

श्रोताओं, आपकी पसंद कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म का ये गीत मुकेश के स्वर में। इस गीत को सुनना चाहा है बड़ा नेमडी चैबासा से तुलसी पथिक, मीरा देवी, बजरंगी ठाकुर, मीतू रंजन, राजीव रंजन, मौलिक रंजन, अमित कुमार, सुमित कुमार और अमृत कुमार। वसुंधरा कॉलोनी सेंटोला चैबासा से आप हैं भोलाराम मधुर, मोहिनी मीरा मधुर, मधु लकड़ा, नताशा और बेबी। बड़े बाजार चैबासा से विनोद कुमार पवन और मीना पवन। अमला टोला चैबासा से आप हैं गोरख प्रसाद गुप्ता, फूलवंती गुप्ता, अभिषेक गुप्ता और अच्छत प्रसाद। कुचाई चाहतु से भोलाराम लोहादा, लुद्री लोहादा, श्रुति लोहादा, सोमनाथ लोहादा, पूर्णिमा लोहादा, लालमुनि लोहादा और व्यंजना लोहादा। इसी गीत को सुनना चाहा है ग्राम तोंडागाड़ी से मुकेश महतो, दिलीप महतो, विजय महतो, सुमन महतो, सूरज महतो, सुरेंद्र महतो और मुकेश बाबू। महुल्डिया मेन रोड सोनवा से आप हैं नंद किशोर महतो, राधामणि महतो, रविवारी बंदनी, दीपक संतोष, राहुल बिट्टू, आयुष, गीतेश, अन्नू, तन्नू, डिस्को महतो, भाई नंदू महतो, गुरुचरण नायक, अनुसूया नायक, प्रियंका नायक, देवाशीष नायक, गुलशन नायक, पिनाक पाणी प्रधान, तनुषी प्रधान, नीलपाणी प्रधान और नीकपाणी प्रधान। जमशेदपुर से आप हैं हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, नवनीत भाटिया और पप्पी भाटिया।

कार्यक्रम में अगला गीत सुनते हैं इन श्रोताओं की पसंद पर। शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंशुलता, आदित्य कुमार और कृषि वास्तव। अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से आप हैं दीपक कुमार, रोशन कुमार, वंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लवी श्रीवास्तव। न्यू कॉलोनी निमढ़ी से ठाकुर प्रसाद, रंगीला, निर्मला देवी, खुशबू, खुशी, अभिषेक, अंश, अंशु, टिंकू और मुन्ना। ग्राम हाड़ीरा से मानताराम सिंह कुंटिया। बड़ी बाजार चैबासा से मोहसम बिहारी, शमीमा खानम, जिम्मी, बिट्टू किरण, रोशनी मुस्कान और परी नबीहा। छोटा निमड़ी चैबासा से बाबूराम, शांति देवी, रोहन कुमार, कोमल कुमारी और ऋतिक कुमार। ग्राम पोंडाकाटा से नरसिंह महली, सावन महली, रोकी महली, कविता महली, हर्षमणि महली, पार्वती महली, सुहानी महली, संजय सोरेन, संजीव सोरेन, नंदिनी गोपाल महली और एन एस महली। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंद्र बीरक, जयतेग बीरक और मीका बीरक। आमजोड़ा पोखरिया मालुका से शिवा गोप, प्रेम गोप, प्यारी बहनें संगीता गोप, लिपि गोप और दीपाली गोप। टाटानगर कीताडी से आप हैं चंद्रमोहन पात्रो, चंद्रवती पात्रो, निखिल पात्रो, उजाला पात्रो, युवराज, शिवान और विराज। आप सबने सुनना चाहा है मेरे हमसफर फिल्म का ये गीत। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और मुकेश की।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: आपकी पसंद कार्यक्रम में श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं साजन बिना सुहागन फिल्म का ये गीत यशोदास के स्वर में। इस गीत को पसंद किया है गांव की तासरायकेला से राधा कृष्ण गोप, राजेश महतो, अमित गोप, अंकित गोप, अभिषेक गोप, आशीष गोप, सुमित गोप, विक्की गोप, सुनीता गोप, गीता गोप, रीता गोप, सुलेखा गोप और आराध्या गोप। ग्राम गिले लोहर से कोमल बेसरा, बसंती बेसरा, बनमाली बेसरा, सिद्ध कुमारी बेसरा, रमेश बेसरा, अन्नू और पूजा। बड़ा बम्बो सुपैसे से आप हैं देवेंद्र तांती, राकेश तांती, कुमारी निशा तांती, प्रकाश तांती, ललित प्रधान, देविन बाबू, सुदर्शन प्रमाणिक, सुशीला प्रमाणिक, श्यामदेव नायक, पूजा नायक और सीमा। इसी गीत को सुनना चाहा है ग्राम जोजो कुड़मा से मनोज गागरई, बसंती गागरई, सोनाली गागरई, आयशा गागरई, रचना गागरई और जितेंद्र गागरई। आदर्श नगर सरायकेला से तनुश्री, बिट्टू, विक्की, किरण, गुलाब, उत्पला, शिवम, सुजाता और आरती। कुचाई बित्री गांव से केपी सोए, दुर्गमती सोए, सरिता सोए, रेशमी सोए, राजकुमारी सोए, विशाल सोए, सन्नी सोए और मुन्ना सोए। ग्राम सूराबेड़ा से बानसिंह सरदार, धनी सरदार, कमल सिंह सरदार, सुखमती सरदार, रमेश, अंशु और बीरू सरदार। ग्राम महलीसाई से बीरबल महली, सरस्वती महली, प्रेमचंद महली, फुलमणि महली, शकुंतला महली, यशोदा महली, सुमांती महली और शांति महली। इसी गीत को सुनना चाहा है खरसवा पतिसाई से सुग्रा नायक, मंजू नायक, जलेश्वर नायक और गौरव नायक। सोनवा गांव पोड़ाहाट से आप हैं मिथुन नायक, राकेश नायक, मुकेश नायक और मकरू आचार्य। ग्राम कुड़ा से पोंडे बॉय पाई, रेशनल बॉय पाई, रश्मति बॉय पाई, कश्मीरा बॉय पाई, मीनाक्षी बॉय पाई और तारकेश्वर बहंदा।

कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं किशोर कुमार के स्वर में आपकी कसम फिल्म का ये गीत। इस गीत को सुनना चाहा है चांडिल ग्राम हारोडी से तुलसीदास महतो, कल्पना मनोरमा, दीनबंधु महतो, मनमोहिनी और साथी। खरसवा गांव ढलाई किला से आप हैं लक्ष्मण सोए, आयुष सोए, सोनू हरिजन, गीता सोए, सरिता सोए, सिनेमाई सोए, विभी सोए, तनुजा सोए, राधिका सोए और पुष्पा सोए। पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और बेबी आरजू जाजोरिया। खमरिया बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आप हैं साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, मानस साहू और प्रतीक कुमार। इसी गीत को सुनना चाहा है घाटशिला से संतोष कुमार भगत, श्रीमती बसंती भगत, सोना रूपा मोनिका चांदनी भगत, दादू भाई, आयुष भगत और शिवम भगत। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां।

0: आकाशवाणी के चयबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

आपकी पसंद कार्यक्रम में श्रोता आइए अब सुनते हैं राजपूत फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफ़ी के स्वर में। इस गीत को सुनना चाहा है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप। कालका से आप हैं शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। चारडुंगरी पिपरिया जिला कबीरधाम से दुर्गाराम साहू, अजय कुमार साहू, किशन साहू, जय कुमार, श्रीमती कुमारी साहू और श्रीमती इंद्राणी माया साहू। ग्राम पहरा दुर्ग छत्तीसगढ़ से पोषण बंचोर, चंद्रकिरण, प्रीति और छाया बंचोर। फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से आप हैं गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनमीत, मनविंदर पांधा, गोलू काकू और जी एस रामगढ़िया। इसी गीत को सुनना चाहा है जरूर वरूड महाराष्ट्र से बाबा साहेब वाडोते, मीनाक्षी चरपे, रजनी कानीरे, कार्तिक और युवराज। सदाबहार श्रोता संघ ग्राम मोहत जिला बुरहानपुर मध्य प्रदेश से आप हैं मुशब खां तड़वी, जरीना तड़वी, मुबारक तड़वी, परवेश तड़वी, बिटिया रोजमीन, तैमूर तड़वी और भैया तड़वी।

कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं सफ़र फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर के स्वर में। इस गीत को सुनना चाहा है सरायकेला पाड़ापुर देशावली ग्राम पहाड़पुर से शिवम शिवाजी मुंडरी, सुरुमानी मुंडरी, हीरामणि मुंडरी, हिमांती मुंडरी, डोबरो मुंडरी, साजन मुंडरी, सिद्धेश्वर मुंडरी, पाड़ापुर शिवाजी, डोबरो मुकेश, कुशल मुंडरी, जानुम सिंह मुंडरी, सिद्धि बोस, सोना बाबू सोना और FM शिवा मुंडरी। ग्राम डोंगरिया मलाजखंड मध्य प्रदेश से आप हैं मुन्ना पटले, माधुरी पटले, याचना पटले और दीपांशु पटले। आशा रेडियो श्रोता संघ मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाड़कर राहे श्रीमती सरिता गवाड़कर और प्रिंस एकांश गवाड़कर। बदलापुर मुंबई से आप हैं सिद्धांत गवाड़कर, प्रणीता गवाड़कर और अर्जुन गवाड़कर। टुक टुक आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश गवाड़कर, सुमित गवाड़कर और कुमारी ध्वनि गवाड़कर। परी स्टेशन रोड बड़ा बम्बू गोपालपुर से ममता प्रामाणिक, नमिता प्रामाणिक, जय कुमार महतो, संतोषी महतो, अंकिता महतो और विजय कुमार महतो। इसी गीत को सुनना चाहा है पाखुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु तासु, अर्णव आनंद और सत्यम आनंद।

इस गीत के साथ ही आपकी पसंद का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के चयबासा केंद्र से बोल रहे हैं, FM के 101.7 MHz पर। श्रोताओं, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8 बज रहे हैं। आइए अब सुनते हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा।

रजनीगंधा के इस कार्यक्रम में पहला गीत सुनते हैं पूरब और पश्चिम फिल्म से, आवाजें हैं महेंद्र कपूर, लता मंगेशकर और मनहर उदास की। इस गीत के लिए फरमाइशी खत हमें लिखा है फजिल का पंजाब से, भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, टिवंसी खेड़ा, शालनी खेड़ा, आरबी खेड़ा, लाडी खेड़ा, जीवन सिंह बोका और समस्त खेड़ा परिवार। पुणे से आप हैं पंकज वाडोदे, आर्या, प्रियंका, वीटी वाडोदे और चंद्र प्रभा वाडोदे। गोला बाजार बक्सर से आप हैं श्रद्धानंद आर्या, अभयनंद आर्या, परमानंद आर्या, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित। इसी गीत को सुनना चाहा है आदर्श नगर मलोट पंजाब से, राजेश शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा और सौरभ शर्मा। ग्राम पजौनिया, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र चौंसौलिया, आदर्श, सार्थक अलौकिक और आराध्या चौंसौलिया। बरेली कैंट रेलवे केविन के पास चनहटे बरेली से विनेश कुमार, रागिनी श्रीवास्तव और मुस्कान।

पत्थर के सनम, आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफ़ी के स्वर में। इस गीत को सुनना चाहा है लुधियाना पंजाब से अमरजीत सोनम कौर और प्रणजीत आदिबा कौर, बिहारी कॉलोनी महासमुंद से

वली उल्लाह फ़कीर, डब्लू उल्लाह फ़कीर और परवीन आसमा फ़कीर, बुलंद शहर से बदरोले अंसारी, फर्जोले अंसारी और फर्जी वाली अंसारी। इसी गीत को सुनना चाहा है धमतरी छत्तीसगढ़ से संतोष कुमार ध्रुवंशी, श्रीमती सरोज ध्रुवंशी और मास्टर शानू ध्रुवंशी, ग्राम सुपाई से इंद्रजीत तांती और मुरारी मोती। बठिंडा रोड डाबाली से आप हैं राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित नारंग। सादुल शहर राजस्थान से ओम प्रकाश चौहान, मनु प्रकाश, शिव प्रकाश और वेद प्रकाश चौहान। ग्राम धाडीनादुरा महाराष्ट्र से आप हैं श्री कृष्ण बाठे, संदीप बाठे और अमूल्या बाठे।

कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं नगीना फिल्म का ये गीत मोहम्मद अजीज के स्वर में। इस गीत के लिए फरमाइशी खत में लिखा है कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी से बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। दुबिहा नेवादा गाजीपुर से आप हैं प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रंजल राय। शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से आप हैं कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, असमा सालिया, शोएब खान, पुत्रा मुश्ताबा खान, राउ भाई और शाहिद भाई। गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर और बाबू रियांश ठाकुर। इसी गीत को सुनना चाहा है छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और जवेंद्र कुमार वर्मा। सुंदरखेड़ राजमाता नगर बुलढाणा महाराष्ट्र से आप हैं नरेंद्र नरवाडे, ज्योति नरवाडे, आकांक्षा नरवाडे और आकाश कुमार। डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबीये, तन्मय बेबी अनिष्का और राधिका गजबीये। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्य देवांगन, हेमलता देवांगन और डिम्पल देवांगन।

रजनीगंधा कार्यक्रम में श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी के स्वर में हीर रांझा फिल्म का ये गीत। इस गीत को सुनना चाहा है पिपरपारा पलचुआ मुंगेली, छत्तीसगढ़ से उत्तर कुमार दिवाकर, परमेश्वरी दिवाकर, योगिता दिवाकर, नितिन दिवाकर और वंशिका दिवाकर। बोरखेड़ा पिपरमल जिला उज्जैन से विनोद मूणत, कुमारी नेहा जैन, दीपक मयंक मूणत, चेतन नाहरा और परी मूणत। स्टार रेडियो श्रोता संघ रेलवे कॉलोनी बठिंडा से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार। दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनैद अब्बासी। इसी गीत को सुनना चाहा है पंचशील रेडियो श्रोता संघ इस्लामपुर जिला बुलढाणा से सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, कुमारी साधना, सुमित कुमार दामोदर और गोपाल पाटिल।

राजनंदगांव से आप हैं याकूब आसमा, यूसुफ आसमा, इमरान आसमा और इरफान आसमा। जेल रोड रायगढ़ से रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी और आदिबा तिवारी।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: रजनीगंधा कार्यक्रम में श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और नितिन मुकेश के युगल सर में मेरी जंग फिल्म का ये गीत। इस गीत को सुनना चाहा है मलोट कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमा, शाइना, विशाल मिगलानी, सुप्रिया, अनमोल, धर्मपाल, गुरचरण ग्रोवर और रमेश मिगलानी। गांव फ्रांसी से आप हैं राजकुमार टूटी, सरजीत सिंह टूटी और प्रमोद कुमार टूटी। हांसी शहर से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष, योगी, पप्पू और डब्बू। ग्राम दुर्राबांधा भाटापारा से प्रमोद साहू, उदय कुमार साहू, नेत्राम साहू और भूपेंद्र साहू। बठेना से आप हैं बलकरण अंजनी वर्मा और कुमारी ज्योति वर्मा। चटौदा सारा गांव से सुजान वर्मा, सुहद्र वर्मा, आयुषी और कृत वर्मा। इसी गीत को सुनना चाहा है नाज मंजिल में हुसैल। सीतामढ़ी बिहार से अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अकरम, नवासा अरहान बाबू, नवासी हुमायरा नाज, नवासी सुमायरा नाज, नुसरत जहां नाज, साजिया शाहिन नाज, नाजिया नूरी नाज, बच्चू शेख और चीना शेख। बिरडी से हुकुम कर्मकर, सुनीता कर्मकर, हार्दिक कर्मकर, प्राची कर्मकर और तनु कर्मकर।

कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं अनजाने फिल्म का ये गीत। आवाजें हैं सुरेश वाडेकर और साधना सरगम की। इस गीत को सुनना चाहा है नरगोड़ा सीपत छत्तीसगढ़ से महाराज के तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी जोगेशपुरी, ट्विंकल डिंपल, मीनाक्षी गोस्वामी, निशा और तुलसी गोस्वामी। कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण गीतू, निहारिका और वंश बत्ता। सन्नी इंक्लेब मोहाली से बबल मल्होत्रा और ओम प्रकाश मल्होत्रा। इसी गीत को सुनना चाहा है अलीका डाबवाली से बसंत सिंह चौहान, राजकुमार, सुनीता और कुलदीप गांधी। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। औरंगाबाद से राजेश शाबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश। वरुड जाहुलका से आप हैं महेंद्र सरकरे, विजया सरकरे और मिलिंद सरकरे।

इस गीत के साथ ही रजनीगंधा का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के चयबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर। श्रोताओं, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8:45 हो रहे हैं। आइए अब हम आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं वैष्णवी। मुख्य समाचार। दिल्ली के सत्यनिकेतन इलाके में बहुमंजिला इमारत ढहने से 3 लोगों की मौत, जबकि 11 लोग सुरक्षित निकाले गए। अब भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका, बचाव अभियान जारी। गृहमंत्री अमित शाह ने वर्ष 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए 3 वर्षों की रूपरेखा जारी की। मादक पदार्थों के नेटवर्क को समाप्त करने की ये रणनीति 4 स्तंभों पर आधारित। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने युवाओं से स्वस्थ और अनुशासित जीवन जीने तथा नशीले पदार्थों से दूर रहने का आग्रह किया। सोशल मीडिया के रचनात्मक उपयोग का भी आह्वान किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने देश के बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम को महानगरों से आगे ले जाने का आह्वान किया। विज्ञान, स्टार्टअप तथा उद्योग के बीच मजबूत संबंध बनाने पर बल दिया। और भारत के पुरुष डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना पहला खिताब जीता। और अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली के सत्यनिकेतन इलाके में आज दोपहर एक बहुमंजिला इमारत ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। अब तक 11 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि हादसे के लिए जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
1: 11 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। जो भी व्यक्ति इसके जिम्मेदार हैं, चाहे वो बिल्डिंग का मालिक है या अधिकारी है, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी थी और इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का रेनोवेशन का काम चल रहा था। बेसमेंट में किसी प्रकार की खुदाई चल रही थी जिसके कारण से पिलर जो है वो हिला और वो पूरी बिल्डिंग ढह गई। पीजी के नाते ये बिल्डिंग काम कर रही थी, बच्चे इसके अंदर थे और लगातार सभी एजेंसी काम कर रही है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है इन बच्चों की पहले जान बचाई जाए। दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, ये बिल्कुल निश्चित रूप में कह रही हूँ।
0: दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरतमंदों तक हर संभव सहायता पहुंचाई जाएगी। एनडीआरएफ के महानिरीक्षक एनएस बुंदेला ने बताया कि एनडीआरएफ की 2 टीमें मौके पर बचाव कार्य में जुटी हैं।
2: 2 टीमें करीब 70 लोग हैं जो वहाँ पर काम कर रहे हैं जहाँ पर, और विक्टिम्स को हमने आइडेंटिफाई किया है और इसमें हमने अपने कैनाइंस भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हम कटिंग इक्विपमेंट है, टेक्निकल इक्विपमेंट को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी तक 4 लोगों को एनडीआरएफ की टीम ने फायर सर्विस, दिल्ली पुलिस और जो भी लोकल कम्युनिटी है वहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे रही है, असिस्टेंस दे रही है, सबके कोऑपरेशन से हमने 4 विक्टिम्स को निकाला है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली में इमारत ढहने की घटना पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि अधिकारी घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं तथा हादसे से प्रभावित लोगों की मदद की जा रही है। गृहमंत्री ने कहा कि स्थानीय प्रशासन और एनडीआरएफ आपसी समन्वय से राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। घायलों को हर संभव चिकित्सा सहायता दी जा रही है। श्री शाह ने हादसे में घायल सभी लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। रक्षा मंत्री ने कहा कि दुख की इस घड़ी में उनकी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है। उन्होंने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की

0: कामना की। श्री नड्डा ने स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक और केंद्र सरकार के अस्पतालों को हर संभव चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। इस बीच श्री शाह ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली पुलिस आयुक्त और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के महानिदेशक से बात कर स्थिति की जानकारी ली। गृह मंत्री ने कहा कि स्थानीय प्रशासन और एनडीआरएफ आपसी समन्वय से राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। घायलों को हर संभव चिकित्सा सहायता दी जा रही है। श्री शाह ने हादसे में घायल सभी लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। इसके अतिरिक्त श्री शाह अपने निर्धारित कार्यक्रम से एक दिन पहले ही गोवा से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। श्री शाह कल गोवा पहुंचे थे। दिल्ली में हुए हादसे के मद्देनजर गोवा भाजपा मुख्यालय में उनका निर्धारित कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। श्री शाह को कल 28वीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होना था और गोवा पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान करना था। इससे पहले गोवा में गृह मंत्रालय की बैठक में श्री शाह ने वर्ष 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए अगले 3 वर्षों की रूपरेखा भी जारी की है।
1: 4 स्तंभों पर हमारा रोड मैप विजन डॉक्यूमेंट है। एक इंटेलिजेंस और ऑपरेशन आधारित एनफोर्समेंट, दूसरा प्रीकर्सर और सिंथेटिक ड्रग पर नियंत्रण, तीसरा डिमांड और हार्म रिडक्शन और चौथा क्षमता निर्माण और समन्वय।
0: श्री शाह ने कहा कि वर्ष 2019 से सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी पर कार्रवाई, खुफिया जानकारी साझा करने, वित्तीय जांच और पुनर्वास के उपायों को मजबूत किया है।
1: 2004 से 14 जो कांग्रेस का शासन था उसमें ड्रग की मात्रा 26 लाख किलोग्राम और आज वो बढ़कर 14 से 26 में 1,19,00,000 किलोग्राम से ज्यादा पकड़ा गया। उसका मूल्य 1,89,000 करोड़। 14 से 26 में 48,66,000 किलो ड्रग विनिष्ट करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने युवाओं से सोशल मीडिया का रचनात्मक उपयोग का आह्वान किया है। उन्होंने नशीले पदार्थों से दूर रहने और अपने दोस्तों को भी नशे से दूर कर रहने के लिए भी प्रेरित करने का आह्वान किया है। असम के गुवाहाटी में गीता नगर कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह में श्री राधा कृष्णन ने कहा कि विद्यार्थियों को जिम्मेदार फैसले लेने और अपने समय, स्वास्थ्य तथा भविष्य की रक्षा पर ध्यान देना चाहिए।
6: Our thoughts, our thinking, our actions should be controlled by one single factor, that is our own brain. Drugs should not determine what we should think. Our brain should determine what we should think and act. That's why wherever I am going, I am always saying, say no to drugs. Not only you should not take the drugs, you should not allow your friends, family members also should not take drugs.
0: असम के विकास का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था में 45% की वृद्धि हुई है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूर्वोत्तर सहित हर राज्य और क्षेत्र का समावेशी विकास जरूरी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने देश के तेजी से बढ़ते स्टार्टअप

0: सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ एआई तकनीशियन, उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की, आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
3: ये आकाशवाणी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से आर्थिक शक्ति बन रहा है। देश व्यापार, वाणिज्य और उद्योग क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और मध्य प्रदेश भी इस विकास यात्रा में आगे बढ़ रहा है। डॉक्टर यादव 3 दिन की दुबई यात्रा पर आज संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि यात्रा का उद्देश्य मध्य प्रदेश में अधिक निवेश और नए उद्योग आकर्षित करना है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। क्षेत्र में बढ़ते सैन्य टकराव के बीच दोनों देश एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने कहा कि उसकी एयरोस्पेस फोर्स ने कई बैलिस्टिक मिसाइलों से एक अमेरिकी विमानवाहक पोत और एक विध्वंसक पोत को निशाना बनाया। ईरान ने इन हमलों को दिन में अमेरिका द्वारा ईरानी तेल टैंकरों पर किए गए हमलों की जवाबी कार्रवाई बताया। मध्य प्रदेश सरकार ने सागर जिले में संदिग्ध जहरीली और अवैध शराब के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर आबकारी विभाग के 3 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। एक अन्य अधिकारी को जिले से हटाकर मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में वन्य जीवों के शिकार के खिलाफ चल रहे अभियान में स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स ने बाघों के शिकार के आरोपी शेरू पारधी उर्फ शेरू सिंह को शहडोल के ब्योहारी से गिरफ्तार किया है। शेरू पारधी कटनी का रहने वाला है और करीब 1.5 साल से फरार था। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के राज्यों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार कल आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बिहार, झारखंड, कर्नाटक, उड़ीसा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। इस बीच उत्तर प्रदेश में कई नदियां अब भी उफान पर हैं और 24 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं।
4: शाहजहांपुर जिले में गंगा और रामगंगा नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के करीब है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज चित्रकूट में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण और रामघाट का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने 800 बाढ़ प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री वितरित की और बेघर परिवारों को भूमि आवंटन प्रमाण पत्र दिए। इस बीच मौसम विभाग ने राज्य के पूर्वी हिस्से में अगले 4 दिनों तक और पश्चिमी जिलों में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
3: उधर बिहार के कई हिस्सों में बाढ़ के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। गंगा, गंडक और कोसी समेत कई प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए निचले इलाकों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। चीन के शेंजेन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन का खिताब जीत लिया है। पुरुष डबल्स फाइनल में भारतीय जोड़ी ने चीन के हे जी टिंग और रेन जियांग यू को हराया। इस वर्ष ये उनका दूसरा सुपर 750 और कुल मिलाकर 4th खिताब है। सात्विक चिराग की जोड़ी इस टूर्नामेंट में 2023 और 2025 में उपविजेता रही थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली के सत्यनिकेतन इलाके में बहुमंजिला इमारत ढहने से 3 लोगों की मौत, जबकि 11 लोग सुरक्षित निकाले गए। अब भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका, बचाव अभियान जारी। गृहमंत्री अमित शाह ने वर्ष 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए 3 वर्षों की रूपरेखा जारी की। मादक पदार्थों के नेटवर्क को समाप्त करने की ये रणनीति 4 स्तंभों पर आधारित। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने युवाओं से स्वस्थ और अनुशासित जीवन जीने तथा नशीले पदार्थों से दूर रहने का आग्रह किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने देश के बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम को महानगरों से आगे ले जाने का आह्वान किया और भारत

0: people have died in rain-related accidents. More from our correspondent.
1: In Shahjahanpur district, the water levels of Ganga and Ram Ganga rivers are near the danger mark. Administration has advised residents living along the banks of Garra and Khakra rivers and in low-lying areas to remain vigilant. In Shravasti district, the Rapti river has caused severe bank erosion and transport disruptions. Chief Minister Yogi Adityanath today conducted an aerial survey of the flood-affected areas in Chitrakoot and a ground inspection of Ramghat. It distributed relief materials to 800 flood-affected families along with the land allotment certificates to homeless families. Meanwhile, the Meteorological Department has issued a warning of heavy rain in the eastern part of the state for the next 4 days and in the western districts in the next 2 days. Sushil Chandra Tiwari, Akashwani News, Lucknow.
0: Meanwhile, the India Meteorological Department, or IMD, has forecast heavy rainfall over Bihar, East Madhya Pradesh, East Uttar Pradesh, Uttarakhand, West Bengal and northeastern parts of the country during the next 2 days. The Madhya Pradesh government has suspended three excise officials in connection with the suspected consumption of spurious liquor in Sagar district. Another official has been transferred out of the district and attached to the department headquarters. Chief Minister Dr. Mohan Yadav has said that guilty will not be spared. The action was following the death of 10 people after consuming suspected poisonous liquor in Banda Tehsil of the district. This is Akashwani. You are listening to News at 9.
2: Stay updated, stay ahead. Follow us on X at AIR News Alerts and on Instagram at AIR News Alerts.
0: Tensions between Iran and the United States continue to escalate, with both sides carrying out strikes against each other amid growing military confrontation in the region. Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC, today said its aerospace forces had targeted a U.S. aircraft carrier and a destroyer with several ballistic missiles. The IRGC claimed the vessels had harassed Iranian ships and participated in naval blockade against Iran. The escalation follows overnight strikes by the IRGC Navy, which said it had targeted three oil tankers in the Strait of Hormuz and three U.S.-affiliated vessels elsewhere. Iran described the attacks as retaliation for U.S. strikes on Iranian tankers earlier in the day. The seven core OPEC Plus countries have decided to keep its oil output policy unchanged for October amid global uncertainty. The decision was taken during their virtual meeting held today to review the global market conditions and outlook. OPEC Plus increased production by around 188,000 barrels per day for September, completing the rollback of a voluntary production cut of around 1.65 million barrels per day that had been introduced in 2023. The meeting came amid continued disruptions to oil exports, including those caused by the conflict involving Iran and the U.S., and disruptions around the Strait of Hormuz. Preparations are underway in New Delhi for the upcoming BRICS Summit 2026 to be held at Bharat Mandapam on the 12th and 13th of this month. The 18th BRICS Summit will bring together leaders of BRICS member and partner countries, outreach countries and heads of international organizations. As part of the security preparations, Delhi police today conducted motor carcade rehearsals and reviewed security arrangements in the national capital. In badminton, Indian men's doubles pair of Sattvik Sairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty clinched their maiden title at the China Masters in Shenzhen today. The Indian duo defeated China's He Ji Ting and Ring Xiang Yu 11-21, 21-13, 21-17 in the summit clash to secure country's first ever title at the tournament. The victory marks the duo's 10th career title on the BWF World Tour. It is also the Indian pair's second title of the season. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Multi-story building collapses in Satyaniketan area of Delhi. Three persons dead and 11 evacuated. Several feared trapped as rescue operation continues. Home Minister Amit Shah announces a three-year roadmap for drug-free India by 2029. Outlines four-pillar strategy to dismantle narcotics networks. Vice President C.P. Radhakrishnan urges youths to shun substance abuse, lead healthy and disciplined lives, calls for constructive use of social media. Science and Technology Minister Jitendra Singh calls for expanding India's growing startup ecosystem beyond metropolitan centers, stresses stronger science, startups and industry linkages. And in badminton, Indian men's doubles pair of Satwik Sai Rankin Reddy and Chirag Shetty clinches maiden title at China's Masters. That is all in the news at 9. Good night.
3: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। दिल्ली के सत्यनिकेतन इलाके में एक कसीर मंजिला इमारत मुनदिम हो गई। इस हादसे में 3 अफराद हलाक हो गए और 11 अफराद को बचा लिया गया है। बहुत से अफराद के बारे में अंदेशा है कि ये मलबे में दबे रह गए हैं, बचाव कार्रवाई जारी है। वजीर दाखिला अमित शाह ने भारत को 2029 तक नशीले मादों से पाक बनाने के एक 3 साल खाके का ऐलान किया है। उन्होंने मंशियात के नेटवर्क के खात्मे के लिए 4 नुकात पर मुश्तमिल हिकमत अमली तैयार की है। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन ने नौजवानों से जोर देकर कहा है कि वो नशीले मादों के गलत इस्तेमाल से दूर रहें और एक सेहतमंद और बाउसूल जिंदगी गुजारें। उन्होंने सोशल मीडिया के तामीरी इस्तेमाल पर जोर दिया है। साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर जितेंद्र सिंह ने भारत के बढ़ते हुए स्टार्टअप इको निज़ाम को मेट्रोपॉलिटन मरकजों से आगे तक वसत देने के लिए कहा है। उन्होंने मजबूत तर साइंस, स्टार्टअप्स और सनअती राबतों पर जोर दिया है। और बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय मर्दों की डबल्स की जोड़ी ने शेंजेन में पहली बार चाइना मास्टर्स का खिताब जीता है। अब खबरें तफसील से। आज दोपहर नई दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में एक कसीर मंजिला इमारत मुनहदिम हो गई। इस हादसे में 3 अफराद हलाक हो गए और बहुत से लोग मलबे में दब गए। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने जाए हादसा का दौरा करके सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने नामा निगारों से बात करते हुए कहा कि अभी तक 11 अफराद को बचा लिया गया है। उन्होंने कहा कि ये इमारत पुरानी थी और इसकी तजदीद और तामीर का काम जारी था। मोहतरमा गुप्ता ने कहा है कि इस हादसे के कसूरवार अफराद को बख्शा नहीं जाएगा, खा वो इमारत का मालिक हो या कोई अफसर।
4: 11 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। जो भी व्यक्ति इसके जिम्मेदार हैं, चाहे वो बिल्डिंग का मालिक है या अधिकारी है, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी थी और इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का रेनोवेशन का काम चल रहा था। बेसमेंट में किसी प्रकार की खुदाई चल रही थी जिसके कारण से पिलर जो है वो हिला और वो पूरी बिल्डिंग ढह गई। पीजी के नाते ये बिल्डिंग काम कर रही थी, बच्चे इसके अंदर थे और लगातार सभी एजेंसीज काम कर रही है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है इन बच्चों की पहले जान बचाई जाए। दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा, ये बिल्कुल निश्चित रूप में कह रही हूँ।
3: वजीर आला ने कहा कि सभी एजेंसियां तालमेल के साथ काम कर रही हैं और हरेक की तवज्जो लोगों को महफूज तरीके से बचाने पर है। उन्होंने ये भी कहा कि राहत और बचाव का काम जंगी पैमाने पर जारी है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर तरनजीत सिंह संधू जाए हादसा पर पहुंचे और बचाव कार्रवाई का जायजा लिया। उन्होंने सभी मुतल्लिका एजेंसियों को मुकम्मल तालमेल के साथ काम करने की हिदायत दी ताकि तेज तर बचाव कोशिशों को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि सूरत हाल पर करीबी नजर रखी जा रही है और इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि जरूरतमंदों तक हर मुमकिन मदद पहुंचाई जा सके। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इमारत मुनहदिम होने के इस हादसे पर दुख का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि हुक्काम जाए हादसा पर काम कर रहे हैं और मुतासरीन की मदद कर रहे हैं। वजीर आजम ने मरने वालों के लवाहिकीन से ताजियत का इजहार किया है और जख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ की है। इसी दौरान वजीर दाखिला अमित शाह ने वजीर आला रेखा गुप्ता, दिल्ली पुलिस कमिश्नर और NDRF के डायरेक्टर जनरल से बातचीत करके सूरत हाल का जायजा लिया है। वजीर दाखिला ने यह भी कहा कि मकामी इंतजामिया और NDRF करीबी तालमेल के साथ बचाव कार्रवाई अंजाम दे रही हैं और जख्मियों को सभी तरह की जरूरी तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। NDRF के IG NS बुंदेला ने नामा निगारों से बात करते हुए कहा कि NDRF की दो टीमें जो अमले के 70 अफराद पर मुश्तमिल हैं जाए हादसा पर काम कर रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये टीमें फायर सर्विस, दिल्ली पुलिस और मकामी लोगों के साथ मिलकर अपना काम अंजाम दे रही हैं।
5: दो टीम में करीब 70 लोग हैं जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, जहाँ पर और विक्टिम्स को हमने आइडेंटिफाई किया है, और इसमें हमने अपने कैनाइंस भी इस्तेमाल कर रहे हैं, हम कटिंग इक्विपमेंट है, टेक्निकल इक्विपमेंट को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी तक 4 लोगों को एनडीआरएफ की टीम ने, फायर सर्विस, दिल्ली पुलिस और जो भी लोकल कम्युनिटी है वहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रही है, असिस्टेंस दे रही है, सबके कोऑपरेशन से हमने 4 विक्टिम्स को निकाला है।
3: इस दौरान दिल्ली पुलिस ने कहा है कि अभी तक 6 अफराद को बचाकर अस्पताल पहुंचाया गया है। पुलिस ने बताया कि मकामी तफ्तीश के दौरान पता चला है कि यह इमारत 40 से 50 साल पुरानी थी और हादसे के वक्त इमारत के तहखाने में कुछ मरम्मत का काम चल रहा था। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज भारत को 2029 तक नशीले मादों से पाक बनाने का एक 3 साल खाका जारी किया। उन्होंने नशीले मादों की रोकथाम की तालमेल के साथ अंजाम दी जाने वाली कौमी सतह की एक मुहिम के लिए कहा। जनाब शाह गोवा के अपने 3 रोजा दौरे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने 2019 से कानून लागू करने, एजेंसियों के माबेन एक दूसरे को सुराग फराहम करने, माली तहकीकत और बाज आबादकारी के इकदाम को मुस्तहकम बनाया है। 2014 से 2024 तक की मुद्दत में 1,19,00,000 किलोग्राम से ज्यादा नशीले मादे जब्त किए गए हैं, जिनकी कीमत तकरीबन 1,89,000 करोड़ रुपए है, जबकि 48,66,000 किलोग्राम नशीले मादों को खत्म किया गया।
6: 2004 से 14 जो कांग्रेस का शासन था उसमें ड्रग की मात्रा 26,00,000 किलोग्राम और आज वो बढ़कर 14 से 26 में 1,19,00,000 किलोग्राम से ज्यादा पकड़ा गया। उसका मूल्य 1,89,000 करोड़। 14 से 26 में 48,66,000 किलो ड्रग विनिष्ट करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है।
3: जनाब शाह ने कहा कि इस खाके के 4 सुतून हैं: सुराग रसानी और कार्रवाई पर मबनी कानून का नफाज, पेशगी मालूमात और मसनी तौर पर तैयार किए गए नशीले मादे, मांग और नुकसान में कमी, नेसलाहियत साजी और तालमेल।
6: 4 स्तंभों पर हमारा रोड मैप विजन डॉक्यूमेंट है। 1, इंटेलिजेंस और ऑपरेशन आधारित एनफोर्समेंट। 2, प्रीकर्सर और सिंथेटिक ड्रग पर नियंत्रण। 3, डिमांड और हार्म रिडक्शन। और 4, क्षमता निर्माण और समन्वय।
3: हुकूमत ने अगले 3 साल में नशीले मादों के बैन अल-अक़वामी और बैन रियासती सतह के 100 नेटवर्क को खत्म करने, नशीले मादों के कारोबार में मुलविस 100 फरार अफराद को भारत लाने और नशीले मादों से मुतालिक 100 खुफिया लेबोरेटरीज को तबाह करने का मकसद तय किया है। बाद में वजीर आला रेखा गुप्ता ने सत्यनिकेतन इमारत इनहदाम की जगह से बचाए गए और तिब्बी इलाज के लिए लाए गए अफराद से मुलाकात के लिए एम्स के ट्रोमा सेंटर का दौरा किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि सभी तलबा का इलाज जारी है। उन्होंने डॉक्टरों की टीम को हिदायत दी कि वो हर जरूरी मेडिकल इमदाद को यकीनी बनाएं। मोहतरमा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार मुतासरीन के कुनबों के साथ भी रबते में है। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन ने नौजवानों से जोर देकर कहा है कि वो सेहतमंद और उसूल पसंदाना जिंदगी गुजारें, नशीले मादों से दूर रहें और नशा मुक्त भारत की तामीर में तावुन दें। उन्होंने उन्हें मशवरा दिया कि वो सोशल मीडिया को तामीरी अंदाज में इस्तेमाल करें और इसे हद से ज्यादा वक्त न दें। वो आज गुवाहाटी में सेहत उलूम की श्रीमंत संकरा देव यूनिवर्सिटी की तकसीम असनाद के सालाना जलसे से खिताब कर रहे थे।
7: And restrict your social media usage. Our thoughts, our thinking, our actions should be controlled by one single factor, that is our own brain. Drugs should not determine what we should think. Our brain should determine what we should think and act. That's why wherever I am going, I am always saying, say no to drugs. Not only you should not take the drugs, you should not allow your friends, family members also should not take drugs.
3: नायब सदर जमहूरिया ने जोर देकर कहा कि तालीमी इदारों को चाहिए कि वो तलबा को उनकी पेशा वाराना जिंदगी से आगे बढ़कर तैयार करें और जमहूरियत और समाज के लिए जिम्मेदार शहरी बनाने पर तवज्जो दें। आज गुवाहाटी में गीतानगर कॉलेज की गोल्डन जुबली तकरीबा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि क्वालिटी तालीम, तहकीक और किरदार साजी मुल्क की तरक्की के लिए लाजमी है। नायब सदर जमहूरिया ने आला तालीम में खवातीन की बढ़ती हुई हुसूलियाबियों को उजागर करते हुए इसे खुशाइन तब्दीली और नारी शक्ति का इजहार करार दिया। नायब सदर जमहूरिया आज से आसाम के 2 रोजा दौरे पर हैं। साइंस ٹیکنالوجی اور زمینی علوم کے مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر جیتندر سنگھ نے بھارت کے تیزی سے وسیع ہوتے ہوئے اسٹارٹ اپ ایکو نظام کو میٹروپولیٹن مرکزوں سے آگے لے جانے اور سائنس، اسٹارٹ اپس اور صنعت کے مابین مضبوط تر رابطے تشکیل دینے کے لیے کہا ہے، تاکہ ملک میں تیار کی گئی ٹیکنالوجیز کے لیبوریٹریز سے لے کر مارکیٹ پلیس تک کے سفر میں تیزی لائی جا سکے۔ کولکاتہ میں آج چھٹے رائس کانکلیو 2026 کے افتتاحی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر جیتندر سنگھ نے کہا کہ اس بات کی ضرورت بڑھتی جا رہی ہے کہ دوسرے اور تیسرے درجوں کے شہروں کی اختراعی صلاحیتوں کو تسلیم کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کے 50 سے 60% سے بھی زیادہ اسٹارٹ اپس کا تعلق میٹرو شہروں سے نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان میں سے 15% سے زیادہ کاروبار دوسرے اور تیسرے درجے کے شہروں کے نوجوان چلا رہے ہیں۔ اتر پردیش میں کئی ندیوں میں اب بھی طغیانی ہے اور 24 اضلاع سیلاب سے متاثر ہیں۔ کانپور میں 4 افراد ہلاک ہوئے ہیں اور بدایوں میں شدید بارش کے سبب ہوئے حادثے میں 1 شخص کی موت ہو گئی۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
8: شاہجہاں پور ضلع میں گنگا اور رام گنگا ندیوں میں پانی کی سطح خطے کے نشان کے قریب پہنچ چکی ہے۔ انتظامیہ نے گارا اور کھاگرا ندیوں کے کنارے اور نشیبی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو محتاط رہنے کا مشورہ دیا ہے۔ شراوتی ضلع میں رابطی ندی کے پانی کی سطح میں اضافے کے سبب کٹاؤ ہوا ہے اور آمد و رفت متاثر ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے آج چترکوٹ میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا فضائی سروے کیا اور رام گھاٹ کا زمینی معاہدہ بھی کیا۔ انہوں نے سیلاب سے متاثرہ 800 کنبوں کو امدادی سامان فراہم کیا اور بے گھر ہوئے کنبوں کو متبادل زمین کے سرٹیفکیٹ بھی تقسیم کیے۔ وزیر اعلیٰ نے لوگوں کو یقین دلایا ہے کہ ریاستی حکومت اس مشکل گھڑی میں ان کے ساتھ ہے۔ سشیل تیواری کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اسلم بیگ۔
3: سیلاب نے بہار کے مختلف حصوں میں معمولات زندگی کو متاثر کیا ہے۔ گنگا، گنڈک اور کوسی سمیت تمام بڑے دریا خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہے ہیں۔ گنگا میں بڑھتی ہوئی پانی کی سطح کے پیش نظر نشیبی علاقوں میں خصوصی نگرانی رکھی جا رہی ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ماحولیات کے مرکزی وزیر بھوپندر یادو نے آج گیدھوں کے تئیں بیداری پیدا کرنے سے متعلق بین الاقوامی دن کے موقع پر پنچکولہ میں ایک قومی ورکشاپ کا افتتاح کیا۔ اپنے خطاب میں جناب بھوپندر یادو نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں حکومت کسی مخصوص نسل کے جانور کے تحفظ تک محدود رہنے کے بجائے ایک جامع اور ایکو نظام پر مبنی ماڈل کے ماحولیاتی تحفظ کے نقطۂ نظر پر توجہ مرکوز کر رہی ہے۔ کوئلے کی وزارت نے میڈیا کو ان خبروں کو مسترد کر دیا ہے جن میں پنجاب کے حرارتی پلانٹس میں بجلی کی پیداوار کی کمی کی وجہ مرکز کی طرف سے کوئلے کی ناکافی سپلائی قرار دی گئی تھی۔ وزارت نے وضاحت کی کہ پنجاب کے بجلی پلانٹس کو کوئلے کی وافر دستیابی کرائی گئی تھی۔ جسٹس مہیش چندر ترپاٹھی کو بامبے ہائی کورٹ کا نیا چیف جسٹس مقرر کیا گیا ہے۔ صدر جمہوریہ نے گزشتہ روز ان کی تقرری کو منظوری دی تھی۔ جسٹس ترپاٹھی اس وقت الہ آباد ہائی کورٹ میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ 7 کلیدی اوپیک پلس ملکوں سعودی عرب، روس، عراق، کویت، قزاقستان، الجیریا اور عمان نے آج ورچوئل وسیلے سے ایک میٹنگ کا انعقاد کیا، جس کا مقصد عالمی مارکیٹ کے حالات اور مجموعی طور پر خاکے کا جائزہ لینا تھا۔ انہوں نے اکتوبر کے لیے تیل کی پیداوار سے متعلق اپنی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ یہ میٹنگ ایران اور ابنائے ہرمز کے آس پاس تنازع میں ملوث ملکوں سمیت تیل برآمدات میں لگاتار رخنا اندازی کے پس منظر میں منعقد کی گئی۔ بیڈمنٹن میں بھارتی جوڑی ساتوک سائی راج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی جوڑی نے چائنا ماسٹرز کا ڈبلز کا خطاب جیت لیا ہے۔ شنجین میں آج کھیلے گئے فائنل مقابلے میں بھارتی جوڑی نے چین کی ہی جنگ چنگ اور رین جیانگ یو کی جوڑی کو 11-21-21-13 اور 21-17 سے شکست دی۔ چائنا ماسٹرز میں بھارت کی پہلی خطابی جیت ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک مرتبہ پھر۔ دلی کے ستیہ نکیتن علاقے میں ایک کثیر منزلہ عمارت منہدم ہو گئی۔ اس حادثے میں 3 افراد ہلاک ہو گئے اور 11 افراد کو بچا لیا گیا ہے۔ بہت سے افراد کے بارے میں اندیشہ ہے کہ یہ ملبے میں دبے رہ گئے ہیں۔ بچاؤ کاروائی جاری ہے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے بھارت کو 2029 تک نشیلے مادوں سے پاک بنانے کے ایک 3 سالہ خاکے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے منشیات کے نیٹورک کے خاتمے کے لیے 4 نکات پر مشتمل حکمت عملی تیار کی ہے۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے نوجوانوں سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ نشیلے مادوں کے غلط استعمال سے دور رہیں اور ایک صحت مند اور بااصول زندگی گزاریں۔ انہوں نے سوشل میڈیا کے تعمیری استعمال پر بھی زور دیا۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر جیتندر سنگھ نے بھارت کے بڑھتے ہوئے اسٹارٹ اپ ایکو نظام کو میٹروپولیٹن مرکزوں سے آگے تک وسعت دینے کے لیے کہا ہے۔ انہوں نے مضبوط تر سائنس، اسٹارٹ اپس اور صنعتی رابطوں پر زور دیا ہے۔ और बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय मर्दों की डबल्स की जोड़ी ने शिनजेन में पहली बार चाइना मास्टर्स का खिताब जीता है। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम के अंतर्गत सुनेंगे रूपक राखी गढ़ी मिट्टी के नीचे सोया महानगर। आलेख है डॉक्टर अप्पू सहारण का, प्रस्तुतकर्ता विनय कुमार।
1: आज की यात्रा किसी सड़क या ट्रेन की नहीं, यह यात्रा है समय की रेखा पर पीछे लौटने की। हमारी आज की आधुनिक दुनिया से मिलकर हम पहुंच रहे हैं लगभग 7000 वर्ष पीछे। हरियाणा की हांसी जिले की उस पावन धरा के गर्भ में दबा है सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक विशाल सुनियोजित महानगर। पक्की ईंटों के मकान, चौड़ी सड़कें, वैज्ञानिक जल निकासी, कुएं, दस्तकार, व्यापारी और कृषि पर आधारित एक समृद्ध समाज, यही पहचान है राखी गढ़ी की।
2: हजारों वर्षों तक गुमनामी के अंधेरे में छिपा इतना बड़ा महानगर आखिर सामने कैसे आया? क्या यह किसी आकस्मिक संयोग का परिणाम था या निरंतर पुरातात्विक साधना का?
1: पुरातत्वविद व महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में प्रोफेसर रहे अमर सिंह ने कई वर्षों तक पढ़ाया है। वे समय समय पर छात्रों को राखी गढ़ी में हो रहे उत्खनन कार्यों को दिखाने के लिए ले जाते रहे। बताते हैं,
3: जहाँ तक राखी गढ़ी के प्रास्थल की खोज का प्रश्न है, हमारी जानकारी के अनुसार झज्जर गुरुकुल के संस्थापक व प्राचीन वस्तुओं के संग्रहकर्ता आचार्य भगवान देव, जिन्हें स्वामी ओमानंद सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने 1960 के दशक के प्रारंभ में राखी गढ़ी प्रास्थल का दौरा किया। इस दौरान उनको यहाँ से कुछ प्राचीन बर्तन तथा वस्तुएं मिली, लेकिन वह इन वस्तुओं के ऐतिहासिक महत्व को स्वयं नहीं समझ पाए। उन्होंने ये अवशेष कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता डॉक्टर सूरज भान को दिखाए। इसके पश्चात डॉक्टर सूरज भान ने 1963 में राखी गढ़ी का दौरा किया और वहां से प्राप्त अवशेषों की पहचान करके आधिकारिक रूप से ये सिद्ध कर दिया कि ये अवशेष भारत की प्राचीन सिंधु अथवा हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। उन्होंने राखी गढ़ी के महत्व को समझ कर आसपास के क्षेत्र का व्यापक रूप से सर्वेक्षण किया, जिसके परिणाम स्वरूप अन्य अनेक ऐसे ही प्रास्थल प्रकाश में आए। राखी गढ़ी की खोज ने सिंधु सभ्यता के बारे में प्रचलित इस धारणा को ही बदल दिया कि ये सभ्यता केवल सिंधु घाटी क्षेत्र तक ही सीमित थी, बल्कि ये पुष्ट कर दिया कि वह भारत में सरस्वती नदी तथा इसके आसपास के विस्तृत क्षेत्र में भी ये फली फूली। इसीलिए सिंधु सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता का नाम दिया गया है। अंततः 1997-98 के सत्र में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की ओर से डॉक्टर अमरेंद्र नाथ ने यहाँ निरंतर 3 सत्रों तक उत्खनन किया। उत्खननों के परिणाम स्वरूप यहाँ पर प्रारंभिक हड़प्पा और विकसित हड़प्पा के सांस्कृतिक अवशेष मिले। 2011 से 16 के बीच पुणे के डेक्कन कॉलेज के तत्कालीन कुलपति एवं प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता डॉक्टर वसंत शिंदे के नेतृत्व में उत्खनन किए गए। टीला संख्या 7 से हड़प्पा कालीन कब्रिस्तान भी मिला, जिसमें नर और मादा मानव कंकाल मिले। 2022-23 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संयुक्त महानिदेशक संजय मंजुल ने भी यहां पर उत्खनन कार्य किया। अभी भी 2025-26 के सत्र में यहां पर उत्खनन शाखा नोएडा 2 के मनोज सक्सेना के निर्देशन में कार्य जारी है।
2: सभ्यताएं हमेशा नदियों के आंचल में पनपती हैं। रावी के तट पर हड़प्पा का विस्तार हुआ और सिंधु के किनारे मोहनजोदड़ो का। वहीं राखी गढ़ी का सीधा संबंध था सरस्वती दृशरवती के सूखे मैदानी क्षेत्र से, जो कभी अत्यधिक उपजाऊ था। राखी गढ़ी केवल एक शहर नहीं था, बल्कि इस पूरे नदी क्षेत्र का व्यापारिक और कृषि केंद्र था। यहाँ की समृद्ध खेती और जल प्रबंधन ही इस विशाल नगर के भरण पोषण का आधार था। प्रसिद्ध पुरातत्वविद डॉक्टर रविंद्र सिंह बिष्ट कहते हैं कि
1: दृश्यवती नदी सरस्वती नदी की प्रमुख सहायक नदी थी। ये नदियाँ शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती थी, जिसमें सरस्वती उत्तर की ओर तथा दृश्यवती दक्षिण की ओर बहती थी।
4: ये एक घग्गर की तरह एक सहायक नदी थी दृश्यवती, जो आपके शिवालिक से निकल के और फिर आगे चल के ये करनाल और पानीपत के बीच से होते हुए और कई तीर्थ, महाभारत में बहुत तीर्थों का स्थान का धाम है, तो सफीदों यानी सर्प देवी और सर्व दमन के पास जाती थी, फिर पश्चिम को मुड़ जाती थी और इसके पास अश्विन वराह जीव और राम राय, ये पवित्र तीर्थ स्थान मकान थे और राम राय में इसके चार द्वार थे, उसमें राम राय था और राम राय के पास आपका राखी गढ़ी बसा हुआ है। और सरस्वती से मैंने एक संबंध बता दिया आपको, और इसकी जो धारा है वो आज भी आसंग वराह जी राम राय आप होते हुए हांसी हिसार सिसवाल मातर श्याम घाघरा रावस्तर सोथी होते हुए ये सरस्वती से संगम करती है सूरत गढ़ के पास। तो सरस्वती से इस पर संबंध है।
2: ऋग्वेद की ऋचाओं में इन नदियों किनारे भरत वंशी राजाओं द्वारा यज्ञ करने का वर्णन मिलता है। रविंद्र सिंह बिष्ट मानते हैं कि सरस्वती के दक्षिण में तथा दृषद्वती के उत्तर में जो क्षेत्र है उसे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहा गया है।
4: सभी नदी के किनारे है, अब वो लुप्त तो प्राय हो गई है, लेकिन एक जमाने में वो शिवालिक से लेके जहाँ तक सरस्वती संगम होता था सूरतगढ़ के पास एक प्राचीन स्थान है रंग महल के पास इसका मेल होता था सरस्वती का। इसका इतना महत्व था, मैं आपको ऋग्वेद की बात बताता हूँ कि उसमें एक श्लोक आता है कि दृषद्वत्याम मानुष आपयायाम सरस्वत्याम रेव दग्नि दिदी ही। इसका मतलब है कि दृषद्वती आपया और सरस्वती इतनी पवित्र नदियाँ थी कि इसके किनारे भरत वंश के राजकुमार देव स्वस और देव वाक इन तीनों नदियों के किनारे यज्ञ किए। हो सकता है एक स्थान उसका राखी गढ़ी रहा।
2: राखी गढ़ी लगभग 350 से 500 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले 9 टीलों का समूह है। यहाँ परिपक्व हड़प्पा काल के साथ साथ पूर्व हड़प्पा काल के साक्ष्य भी मिले हैं। ग्रिड पैटर्न पर बनी सड़कें नालियां और अग्निवेदियां यह सिद्ध करती हैं कि यहाँ का समाज प्रशासनिक और नागरिक दृष्टि से अत्यंत परिपक्व था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारी एवं वर्तमान उत्खननकर्ता मनोज सक्सेना ने बताया,
5: राखी गढ़ी ग्राम दो गांव राखी खास और राखी शाहपुर को मिलाकर बना है। राखी गढ़ी के आसपास 9 टीले हैं जिनका विस्तार लगभग 350 हेक्टेयर में फैला है, जो इसे सिंधु सभ्यता का अब तक का सबसे विशाल नगरीय केंद्र बनाता है। राखी गढ़ी ग्राम टीला संख्या 4 और 5 पर बसा है, तो यहाँ उत्खनन का कार्य संभव नहीं है, परंतु टीला संख्या 5 पर कुछ क्षेत्र में हमें कार्य करने की जगह मिली और जहाँ पर हम लोगों ने इस वर्ष के जो एक्सकेवेशन है उसमें हमने कुछ ट्रेंच वहाँ लगाए और हमें कुछ घरेलू संरचनाओं की कच्ची मिट्टी की ईंटों के से निर्मित है वो प्राप्त हुई है। टीला संख्या 1 से 9 तक के अध्ययन से हमें पूर्व हड़प्पा प्रारंभिक हड़प्पा एवं परिपक्व हड़प्पा काल के निरंतर सांस्कृतिक विकास और अधिवास के अनुक्रम को दर्शाते हुए प्रतीत होते हैं। यहाँ से उत्खनन में सुविकसित नगर नियोजन के प्रमाण मिले हैं, जिसमें सड़कों को समकोण पर काटना, जल निकासी की उचित व्यवस्था, पगी ईंटों की नालियां, कच्ची मिट्टी की ईंटों या सन ड्राइड ब्रिक्स का उपयोग घरेलू संरचनाओं में मिला है और 4-2-1 के अनुपात वाली ईंटों का प्रयोग मिला है। राखी गढ़ी की विशालता एवं विस्तार को देखते हुए इसे सिंधु सभ्यता की पूर्वी राजधानी माना जा सकता है। टीला संख्या 2 और 7 के उत्खनन में हमें सर्वाधिक आश्चर्य में डाला। टीला संख्या 2 से अर्ध बहुमूल्य पत्थरों या सेमी प्रीशियस स्टोन के मनकों का प्रतिशत पूर्व के उत्खननों की तुलना में बहुत अधिक है।
1: राखी गढ़ी से कई हड़प्पा कालीन वस्तुएं मिली हैं। उत्खनन के दौरान अनेकों ऐसी छोटी छोटी चीजें प्राप्त हुई जो इस सभ्यता के लोग अपने दिनचर्या में उपयोग करते थे। प्रोफेसर अमर सिंह बताते हैं,
6: तांबे और स्वर्ण के आभूषण, पकी मिट्टी और सेलखड़ी से निर्मित मोहरें तथा मनके बनाने के केंद्र मिले हैं जो इसके विकसित शहरी रूप को दर्शाते हैं। चाक पर बने मिट्टी के बर्तन जिन पर काले रंग से भिन्न भिन्न प्रकार के चित्रण, चर्ट पत्थर से बनी ब्लेड्स, अर्ध बहुमूल्य पत्थरों के अनेक प्रकार के मनके, पकी मिट्टी से निर्मित मनके, चूड़ियां, पशु या मानव की मूर्तियां, खिलौना गाड़ियां आदि भी प्रमुख रूप से मिली।
1: राखी गढ़ी वासी मामूली वस्तुओं से लेकर लैपिस लाजुली पत्थर से बने श्रृंगार के कीमती आभूषणों का अक्सर प्रयोग किया करते थे।
5: यहाँ से हमें कार्नेलियन लैपिस लाजुली जास्पर आदि के मनके, सोने के मनके, चर्ट के ब्लेड, टेराकोटा एवं शेल की बैंगल्स, अंजन सलाखा आदि के साथ साथ करीब करीब 2 मीटर मोटी दीवारों की घरेलू संरचनाएं भी प्राप्त हुई है। टीला संख्या 7 जो कि दफन स्थल या बरियल माउंड है, से 7-8 मानव कंकाल मिले हैं, जिसमें एक मानव कंकाल के पास से 17 सोने के मनके, 2 सोने के फाइल और 42 मृदभांड मिले हैं, जो उस समय की समृद्ध सांस्कृतिक समाधि परंपरा और आर्थिक संपन्नता को दर्शाते हैं।
2: अब प्रमाणित हो चुका है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सुदूर क्षेत्रों में फैली अन्य सभ्यताओं के साथ मेलजोल होने के साथ साथ अच्छे व्यापारिक संबंध भी थे। राखीगढ़ी प्रमुख व्यापारिक केंद्र रहा होगा और यहाँ से भी दूर दूर तक व्यापार किया जाता होगा। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर विकास पवार मानते हैं कि राखीगढ़ी के अन्य सभ्यताओं के साथ पारस्परिक सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध रहे होंगे।
7: पुरातात्विक उत्खननों से अनेकों प्रकार के अर्धकीमती पत्थरों के मनके अवशेष रूप में मिले हैं, जिनका कच्चा माल राखीगढ़ी के आसपास नहीं मिला। ये कच्चा माल सुदूर हड़प्पा स्थलों तथा दूर विदेशी हड़प्पा पुरास्थलों से निर्यात किया जाता था। उदाहरण के रूप में शंख गुजरात से, तांबा राजस्थान में स्थित क्षेत्रीय की खानों से, राखीगढ़ी के उत्खननों में जो मानकीकृत बात पटकरे एवं मोहरे मिली हैं, उससे यह साबित होता है कि आंतरिक एवं बाह्य व्यापार के नियम एक समान थे। विदेशी क्षेत्रों के साथ व्यापारिक संबंध के फलस्वरूप राखीगढ़ी का व्यापार क्षेत्र अफगानिस्तान, मेसोपोटामिया, ओमान और फारस की खाड़ी तक भी था। वहाँ से कच्चे माल के रूप में अर्धकीमती पत्थर अवशेष रूप में मिलते हैं। इस प्रकार राखीगढ़ी पुरातत्व का व्यापारिक मेलजोल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशी क्षेत्रों तक था।
1: अब सवाल उठता है कि इस कांस्य युगीन सभ्यता का निर्माण करने वाले लोग कौन थे? ये लोग कहीं से आए होंगे या फिर यहीं के गांवों व नगरों के मूल निवासी रहे होंगे। राखीगढ़ी के टीला नंबर 7 से प्राचीन कंकाल मिले हैं। वैज्ञानिकों ने इनका विस्तृत डीएनए अध्ययन व विश्लेषण किया है। एक महिला के प्राचीन कंकाल से माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए अध्ययन में U2B2 माइटोकॉन्ड्रिया हैप्लोग्रुप मिला है। डेक्कन कॉलेज के पूर्व कुलपति प्रोफेसर वसंत शिंदे का मानना है,
8: राखीगढ़ी में जो हड़प्पन कंकाल मिले हैं उनकी डेट लगभग 4,500 साल पुरानी है, तो उन लोगों का डीएनए सबसे प्रथम भारत में निकाला गया है। और इसके पहले हमको हड़प्पन लोग कौन थे उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। उसमें मतभेद थे, कुछ लोग बोलते थे कि हड़प्पन लोग यहाँ के थे, कुछ लोग बोलते थे कि वो बाहर से मेसोपोटामिया से आए होंगे, उन्होंने इस सभ्यता को विकसित किया होगा ऐसा मानते थे। लेकिन इस डीएनए से जिसका रिजल्ट हमने एक दुनिया में सबसे प्रेस्टिजियस साइंटिफिक जर्नल है उसमें इसके रिजल्ट हमने पब्लिश किया है, और इसको एक दुनिया में सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन जीनोमिक्स उसने इसको अप्रूव किया है। और उन्होंने बोला कि 2019 में जो 9 ब्रेक थ्रू रिसर्चेस हुए थे दुनिया में उसमें राखीगढ़ी का जिक्र उन्होंने किया है। इसका मतलब साइंटिफिक कम्युनिटी ने इसको एक्सेप्ट किया है। तो उसका रिजल्ट ये मिलता है कि हड़प्पन लोगों का जो जीन्स थे, जो डीएनए था, वो बहुत ही डिस्टिंक्ट था, जिसको हम एंशियंट एंसेस्टर साउथ इंडियंस बोलते हैं। वो जीन्स था जिनकी शुरुआत लगभग 12,000 साल पहले हुई थी। 12,000 साल के बाद इसमें धीरे धीरे म्यूटेशन शुरू हो गया और एक डिस्टिंक्ट जीन तैयार हो गया, उसको हम एंशियंट एंसेस्टर साउथ इंडियन जीन्स बोलते हैं। और वही जीन्स हड़प्पन लोगों में आए। और ये जो जीन्स है वो प्योरली इंडिजिनस लोगों के जीन्स है, यहाँ के लोगों के जीन्स है। तो इसे पता चलता है कि हड़प्पन लोग थे, यहाँ के थे, ये पता चलता है। उसके बाद हमने ये भी किया कि हमने मॉडर्न लोगों का सैंपल लगभग 140 अलग अलग जो गुट है साउथ एशिया में उनके सैंपल्स हमने 3,500 सैंपल्स मॉडर्न लोगों के सैंपल्स हमने इकट्ठा किया और उसका हमने विश्लेषण करके उसको हम हड़प्पन जो सैंपल्स मिले थे राखीगढ़ी उससे हमने जोड़ा, तो उससे पता चलता कि साउथ एशिया के जो मेजर पॉपुलेशन है हमको एक इंडिकेशन मिलता है अंडमान निकोबार से लेके लद्दाख कश्मीर तक और अफगानिस्तान।

0: से लेके पूरा नॉर्थ ईस्ट तक जो सब लोग हड़प्पन लोगों के ही वंशज है इसका एक प्रमाण मिलता है। वो लोग क्या रिलीजन फॉलो करते हैं, क्या कास्ट फॉलो करते हैं, उसका कोई मायने नहीं रखता। लेकिन ये पता चलता है या एक अंदाज लगता है कि अभी की जो मॉडर्न लोग है वो हड़प्पन लोगों के वंशज है। तो एक कंटिन्यूटी हमको दिखाई देते है और ये बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस हमको राखी से मिला है।
1: राखीगढ़ी की अर्थव्यवस्था कृषि और पशुपालन पर आधारित एक मिश्रित अर्थव्यवस्था थी जिसमें शिकार, मछली पकड़ने और संग्रहण के जरिए संसाधनों का कुशल प्रबंधन किया जाता था। कृषि आधारित पशुओं के साथ साथ जंगली जानवरों के होने के भी प्रमाण मिले हैं।
2: खुदाई से स्पष्ट होता है कि पालतू जानवर राखीगढ़ी में जीवन का केंद्र थे। महत्वपूर्ण पालतू जानवर गाय, भैंस, भेड़, बकरी और सुअर थे। इनका उपयोग आर्थिक और व्यवहारिक कार्यों के लिए भी होता था। गायों का उपयोग परिवहन के लिए और खेतों में काम करने के लिए किया जाता था। बैल और भैंस खेतों में हल चलाने और सामान ले जाने का कार्य करते थे। गाय और भैंस की गोबर भी एक बहुमूल्य संसाधन थी। लोग इसका उपयोग खेतों में खाद के रूप में, पार्श्व दीवारों पर प्लास्टर के लिए और ईंधन के रूप में करते थे। इन अनेक उपयोगों से पालतू जानवर केवल खाने का स्रोत ही नहीं रहते, वे खेती, निर्माण और घरेलू जीवन के लिए अनिवार्य थे। भेड़ और बकरी से मांस, दूध और ऊन या बाल प्राप्त होते थे। सुअर भी पाए गए हैं, कुत्ते के अवशेष भी मिले हैं। संभव है कि ये साथियों पहरेदारों के रूप में कार्य करते थे, शिकार में मदद करते थे और बस्ती के आसपास कचरा प्रबंधन में भी सहायक रहे होंगे। पालतू जानवरों के साथ साथ जंगली जानवरों का भी महत्वपूर्ण स्थान। विभिन्न प्रकार के हिरण और एंटीलोप की हड्डियां बताती हैं कि शिकार ने पशु संसाधनों को पूरा किया। शिकार से मांस, छाल और अन्य सामग्री मिलती थी और यह घरेलू पशुओं से मिलने वाले संसाधनों की कमी को पूरा करता था। राखीगढ़ी के निवासियों ने जली और छोटे जानवरों का भी उपयोग किया। मछली पकड़ने जल स्रोतों से संग्रहण का संकेत देती हैं, जिससे उनकी भोजन में प्रोटीन और विविधता आई। पक्षियों के अवशेष स्थानीय पक्षियों के शिकार या जाल में फंसाने का संकेत देते हैं। सरीसृप और शंखों के अवशेष नदियों, दलदली क्षेत्रों और संभवतः शंख शिल्प या व्यापार के उपयोग में की ओर भी इशारा करते हैं।
1: ये थे पंकज गोयल, एसोसिएट प्रोफेसर, डेक्कन कॉलेज, पुणे।
3: लगभग 4000 साल पहले सरस्वती नदी सूखने लग गई होगी। धीरे धीरे समस्त सिंधु सरस्वती सभ्यता के नगरों में चहल पहल कम होती चली गई होगी। वैज्ञानिकों और इतिहासकारों में इस सभ्यता के पतन के बारे में मतभेद हैं। डॉक्टर रविंद्र सिंह बिष्ट जलवायु परिवर्तन को मुख्य कारण मानते हैं।
4: 8000 से 5000 ईसा पूर्व, जिसको आजकल कॉमन एरा कहते हैं, जलवायु के वैज्ञानिक हैं, उन्होंने बताया है कि जैसे बहुत ज्यादा बारिश होती थी, बहुत ह्यूमिडिटी थी, बहुत बारिश होती थी 8000 से 3000 ईसा, उसके बाद ही हड़प्पा सभ्यता आती है। उस वक्त भी काफी बारिश थी। तो ये है कि सिंधु नदी अपने सारे सहायकों के साथ, पांच नदियां पंजाब की, सिंध और सरस्वती, ये बहुत जल का भंडार लेके पहाड़ों से जाके आगे जाके समुद्र में जाती थी। वह समय था जब आदमी ने बस्ती बना के रहने लगा था। दूसरा प्रमाण मेहरगढ़ नाम के स्थान पर है। धीरे धीरे उन्नति होते हुए हड़प्पा संस्कृति, ये जो अर्बन सिविलाइजेशन हम कहते हैं, नागर सभ्यता का उद्भव होता है। और सारे जो प्राचीन महत्वपूर्ण स्थान है इन नदियों के किनारे ही बसे हैं, जैसे मोहनजोदड़ो सिंधु के, हड़प्पा रावी के और गवेरी वाला सरस्वती के, कालीबंगा सरस्वती के, बड़ा वाली सरस्वती के और राखीगढ़ी और तमाम बहुत सारे प्राचीन स्थान सरस्वती के किनारे बसे थे, जिसमें एक प्रमुख हमने बताया अभी जो राखीगढ़ी था, विशाल पांच विशाल सब नगरों में। फिर क्या होता है कि 3000 के बाद थोड़ा धीरे धीरे ये बारिश का कम होने लगती है। खैर इतनी कम नहीं होती, इन्होंने बहुत इंतजाम किया था हिंदू सभ्यता वालों ने तो ये, लेकिन उसके अंतिम चरणों में 2100 से 1900 के बीच काफी पानी कम हो गया और 1900 ऐसा समय आया जब बिल्कुल बारिश का होना एकदम बंद हो गया। कभी फ्लैश फ्लड्स आते रहे होंगे लेकिन एकदम जिसे कि एरिडिटी, एक्सट्रीम एरिडिटी हो गई और उसी समय में ये सरस्वती, सरस्वती और ये इसकी सहायक नदियां सूखने लगी। और वही समय है जब इसके किनारे बसे हुए या साफ पंजाब सिंध और इनके सब नदियों के किनारे बसे हुए प्राचीन नगर जो है, नगर और महानगर, ये उजड़ने लगे। यानी कि आज नागर सभ्यता का विखंडन हो रहा, लोग शहरों से क्या करते भूतहा शहरों में रह के, इसलिए वो गांव की तरफ जत्थे बना के कोई पूरब गया, कोई दक्षिण गया, कोई उत्तर की तरफ आया। तो इस ढंग से नागर सभ्यता का विघटन हो गया। तो जलवायु का बहुत बड़ा हाथ है सिंधु सभ्यता के विघटन में। और एक दूसरा कारण जिसके बारे में आजकल विद्वान नहीं बोलते हैं, 2100 के आसपास मेसोपोटामिया में पॉलिटिकल उथल पथल हुई है। ये तो सभी जानते हैं कि मेसोपोटामिया और जिसे आजकल इराक कहते हैं, यहाँ भी एक नगर सभ्यता थी बहुत समृद्ध। वहाँ हड़प्पा वालों का घनिष्ठ व्यापारिक संबंध उनसे था। जो वहाँ पॉलिटिकल उथल पथल हुई जिसे 50 से 80 साल तक कहते हैं, वो समय है जबकि हमारे व्यापार पर बहुत धक्का लगा। तो हमने जो उस व्यापार की वजह से, मतलब ये माइनिंग से लेके वस्तु बनाना और लॉजिस्टिक परिवहन वगैरह वगैरह, ये सब पे इतना धक्का लगा कि हड़प्पा की ये महानगर का विघटन होने लगा।
1: लेकिन इतिहास की खोज जितनी जरूरी है, उसका संरक्षण उससे भी अधिक चुनौतीपूर्ण है। हजारों वर्षों तक इतिहास को अपने गर्भ में सुरक्षित रखने वाले टीले, विशेषकर टीला नंबर 4 और टीला नंबर 6, आज आधुनिक अतिक्रमण और निर्माण का सामना कर रहे हैं। विकास और विरासत के संतुलन पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक युद्धवीर रावत के विचार।
5: ये सही, जहाँ भी खुदाई करता है या किसी स्मारक का विकास करता है, तो जरूर वहाँ के स्थानीय लोगों को एक तो ASI की काम करने की पद्धति का पता चलता है, और उस ढंग से वो भी कई कामों में निपुण हो जाते हैं और उसमें अपना योगदान करते हैं। जैसे हम लोग वहाँ पर गई सामग्री वो स्थानीय बनाते हैं, खास करके खुदाई के लिए जो औजार होते हैं, उपकरण होते हैं, और स्थानीय लोगों को वहाँ पर ड्राइंग के लिए, सर्वेइंग के लिए हम उपयोग में लाते हैं, और उनको सिखाया भी जाता है। साथ साथ उनको जो है विविध जो उपकरण हैं, जो इस चीज के जो है साधन हैं, उनके बारे में उनको जानकारी होती है, इसलिए उनका योगदान भी इसमें बढ़ जाता है। और खुदाई और अतिक्रमण को रोकने का जहाँ तक सवाल है, ये धीरे धीरे हम लोगों ने कई टीलों को प्रोटेक्शन किया है, उनकी हम जो है फेंसिंग कर रहे हैं, और कई जो है टीलों पे हम शेड लगा करके एक जीवंत जो है संग्रहालय बना रहे हैं, ताकि लोग जान सके कि क्या क्या वहाँ पर है। तो उसमें भी इन लोगों का योगदान रहेगा, और वहाँ पर जो है भविष्य में कई लोगों को जो है गाइड की और इस चीज की जो है जरूरत पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि स्थानीय लोगों का उसमें बड़ा योगदान हो सकता है।
3: राखीगढ़ी सिंधु सरस्वती सभ्यता का प्रमुख नगर है। इस सभ्यता पर हरियाणा प्रदेश गौरवान्वित है। राखीगढ़ी में एक बड़ा संग्रहालय और हड़प्पन नॉलेज सेंटर बन रहा है। हरियाणा सरकार के पुरातात्विक विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर नरेंद्र परमार के अनुसार,
6: राखीगढ़ी के टीलों पर राखी, शाहपुर और रोकीखास दो गांव बसे हुए हैं, जहां टीले प्राचीन संस्कृति के वाहक हैं और वर्तमान गांव हैं आधुनिक जीवन शैली को दर्शाते हैं। तो हरियाणा सरकार इन टीलों और वर्तमान गांव के माध्यम से हरियाणा की 10,000 साल की जो गौरवशाली यात्रा है, उसको दिखाने का प्रयास कर रही है। प्राचीन समय में हरियाणा के लोगों की जीवन शैली ऐसी थी और वर्तमान समय में ऐसी थी, और इस यात्रा में क्या क्या कंटिन्यूटी है और क्या क्या बदलाव हुए हैं, इसको भी हम विश्व के सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। राखीगढ़ी में 200 करोड़ की ज्यादा के लागत से एक विश्व स्तरीय म्यूजियम हरियाणा सरकार के माध्यम से बन रहा है, और उसमें भी अतीत से वर्तमान की यात्रा है, उस पर भी विशेष फोकस रखा गया है।
1: हरियाणा पुरातत्व विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर नरेंद्र परमार भविष्य में राखीगढ़ी को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल होने के प्रति आशान्वित हैं।
3: स्थानीय युवाओं को हेरिटेज गाइड के रूप में प्रशिक्षित करना और होम स्टे व सांस्कृतिक पर्यटन से जोड़ना ही इस स्थल को जीवंत बनाए रख सकता है। राखीगढ़ी केवल एक खुदाई स्थल नहीं, एक जीवंत गांव भी है, जहां अतीत और वर्तमान एक साथ सांस लेते हैं, जहां किसान अपने खेत जोतते हुए मिट्टी में दबे इतिहास को स्पर्श करते हैं। इस अनूठी सह अस्तित्व की भावना पर राखीगढ़ी के सरपंच दिनेश का क्या कहना है, आइए सुनते हैं।
7: हमारे गांव के आर्टिस्ट, क्राफ्टमैन, महिलाएं, सबको एक रोजगार के रूप में विकसित गांव धीरे धीरे हो रहा है। हमारे गांव को लिविंग हेरिटेज लैंडस्केप के रूप में विकसित करने के लिए हम पुरजोर प्रयास

0: पे हम हमारे गांव के 200 साल पुराने चौपाल को एक लिविंग हेरिटेज लैंडस्केप के रूप में देख रहे हैं, कुछ हवेलियों को बाहर के लोगों के साथ मिलकर विकसित कर रहे हैं।
1: राखी गढ़ी कभी विशाल महानगर रहा होगा। राखी गढ़ी का पूरा रहस्य अभी धरती के गर्भ में ही छिपा है। अभी तो उन रहस्यों से भी पर्दा उठना बाकी है जो लिपि को पढ़ने का मार्ग दिखाएंगे। युवा पुरातत्वविद डॉक्टर दिशा अलुवालिया ने समय समय पर हुए उत्खनन कार्यों में भाग लिया है। खुदाई के दौरान उन्होंने करीबन 400 मिट्टी की ईंटें निकाली थी। दिशा अलुवालिया का मानना है कि अभी बहुत काम होना बाकी है।
2: अभी बहुत बड़ा हिस्सा है राखी गढ़ी का, जो कि हिंटरलैंड एरिया भी है। हमें नहीं पता है कि सिटी का छोर कहाँ खत्म हो रहा था और उसका सैटेलाइट एरिया कहाँ शुरू हो रहा था। हमें अभी तक जो जानकारी है वो स्टैटिग्राफी और जो कितने सालों तक वहाँ ऑक्यूपेशन रहा है हमें वो पता है, बट कितना और बड़ा सेटलमेंट हो सकता है हमें उसकी जानकारी पूरी तरीके से नहीं है। धोलावीरा के जैसे एक हाइड्रोलिक सिस्टम होना बहुत जरूरी है, पर राखी गढ़ी में जो बड़े बड़े ड्रेन्स मिलते हैं, हमें वेल्स मिलते हैं और जो लास्ट एविडेंस टैंक का मिला था वो ये बताता है कि एक बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड हाइड्रोलिक सिस्टम है, पर अनफॉर्चुनेटली हम उसको आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए। बट ये मान सकते हैं कि ऐसे बहुत छोटे छोटे, जो लोग को लगे कि बहुत छोटी जानकारी है, बट रिसर्च के लिए बहुत बड़ी जानकारी हो सकती है। राखी गढ़ी में लोग कैसे रहते थे, उनका सिस्टम कैसा था, ड्रेनेज सिस्टम, हाइड्रोलिक सिस्टम, उनका डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम कैसा था, उनका सिटी का लिमिट कितना बड़ा था, फोर्टिफिकेशन था नहीं था, बैस्टियंस थे, डबल फोर्टिफिकेशन था, सिंगल फोर्टिफिकेशन था, ये सब जानकारी अभी जाननी जरूरी है। बैरियर अभी भी एक्सकवेट हो रहे हैं, बट उसके अलावा भी हमें ये आगे इन्वेस्टिगेट करना जरूरी है कि जो जहाँ बैरियर्स हो रहे हैं, माउंट सेवन जिसको बोला जाता है, जहाँ मचो हरप्पन बैरियर्स मिलते हैं, वहाँ पे जो अर्ली एविडेंस मिले हैं अर्ली हरप्पन के, ये दर्शाता है कि जो अर्ली हरप्पन लेवल जो है वो काफी बड़ा रहा है। तो अर्लीस्ट एविडेंस जो साइट पे मिलता है उसका स्केल जानना, वहां से लेके मचौर तक कैसे सेटलमेंट चेंज हुआ है, कैसे सिटी डेवलप हुई है, ये सब बातें जो है, ये कहानी जो है अभी भी बाकी है।
1: उनका ये भी मानना है कि जैसे जैसे तकनीक उन्नत होगी इस पुरातात्विक स्थल को और अच्छे से समझा व जाना जाएगा।
2: GPR मैग्नेटोमेट्री ऑलरेडी प्रोफेसर वसन शिंदे ने किया है, बट उसके अलावा रिमोट सेंसिंग है, टेस्ट पिट्स ले सकते हैं, फील्ड वॉकिंग है, कई ऐसी टेक्निक्स है आगे फ्यूचर में आएंगी जो हमें ये एविडेंस बहुत क्लियरली बताएंगी। बट एज ऑफ नाउ अभी हम रिमोट सेंसिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं अगर हम उस पे काफी मेहनत करें और सैटेलाइट इमेजरी और स्पेशल एविडेंस के हिसाब से हम जान सकते हैं कि इंडिकेशन लगा सकते हैं साइट के बारे में।
3: राखी गढ़ी की मिट्टी में दबी हर पक्की ईंट एक गाथा सुनाती है, हर मन का एक हुनरमंद हाथ की कहानी कहता है और हर अवशेष उस महान मानव जीवन का साक्ष्य है।
1: सवाल बस इतना है क्या हम

रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आपने सुना रूपक, राखी गढ़ी मिट्टी के नीचे सोया महानगर। आलेख डॉक्टर अप्पू सहारन का था। वाचन स्वर उषा मलिक व पंकज भारद्वाज का था। कार्यक्रम का संपादन दिलीप अहिरवार ने किया। प्रस्तुतकर्ता विनय कुमार। यह कार्यक्रम आकाशवाणी रोहतक के सौजन्य से प्राप्त हुआ।

FMK 101.7 MHz पर यह आकाशवाणी का चयबासा केंद्र है। रात के 10 बज रहे हैं, आइए अब सुनते हैं गजलों का कार्यक्रम महफिल। महफिल के

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: महफिल कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं चंदन दास और अनुराधा पटवाल के युगल स्वर में ये गजल।

हम आकाशवाणी के चयबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर। रात्रि के 10:30 हो रहे हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग।

सुरों के रंग कार्यक्रम में पहला गीत सुनते हैं दिल एक मंदिर फिल्म से। आवाजें हैं मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुरी की।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: सुरग रंग कार्यक्रम में श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं धरती कहे पुकार के फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर के स्वर में।

ने कहा फिल्म के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के चयबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11 बज रहे हैं। आइए सुनते हैं समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। नई दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में आज दोपहर एक बहुमंजिला इमारत ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। अब तक 11 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि हादसे के लिए जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
1: 11 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। जो भी व्यक्ति इसके जिम्मेदार हैं, चाहे वो बिल्डिंग का मालिक है या अधिकारी है, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी थी और इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का रेनोवेशन का काम चल रहा था। बेसमेंट में किसी प्रकार की खुदाई चल रही थी जिसके कारण से पिलर जो है वो हिला और वो पूरी बिल्डिंग ढह गई। पीजी के नाते ये बिल्डिंग काम कर रही थी, बच्चे इसके अंदर थे और लगातार सभी एजेंसीज काम कर रही है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है इन बच्चों की पहले जान बचाई जाए। दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, ये बिल्कुल निश्चित रूप में कह रही हूँ।

0: दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरतमंदों तक हर संभव सहायता पहुंचाई जाएगी। एनडीआरएफ के महानिरीक्षक एनएस बुंदेला ने बताया कि एनडीआरएफ की दो टीमें मौके पर बचाव कार्य में जुटी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली में इमारत ढहने की घटना पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली पुलिस आयुक्त और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के महानिदेशक से बात कर स्थिति की जानकारी ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि अधिकारी घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं तथा हादसे से प्रभावित लोगों की मदद की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक और केंद्र सरकार के अस्पतालों को हर संभव चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने युवाओं से सोशल मीडिया का रचनात्मक उपयोग का आह्वान किया है। उन्होंने नशीले पदार्थों से दूर रहने और अपने दोस्तों को भी नशे से दूर रहने के लिए भी प्रेरित करने का आह्वान किया है। असम के गुवाहाटी में गीतानगर कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि विद्यार्थियों को जिम्मेदार फैसले लेने और अपने समय, स्वास्थ्य तथा भविष्य की रक्षा पर ध्यान देना चाहिए। असम के विकास का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था में 45% की वृद्धि हुई है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूर्वोत्तर सहित हर राज्य और क्षेत्र का समावेशी विकास जरूरी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश के तेजी से बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम को महानगरों से आगे ले जाने और विज्ञान, स्टार्टअप तथा उद्योग के बीच मजबूत संबंध बनाने पर बल दिया है। कोलकाता में राइज कॉन्क्लेव के उद्घाटन में डॉक्टर सिंह ने कहा कि दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों में नवाचार की क्षमता पहचानने की जरूरत है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। क्षेत्र में बढ़ते सैन्य टकराव के बीच दोनों देश एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने कहा है कि उनके एरोस्पेस फोर्स ने कई बैलिस्टिक मिसाइलों से एक अमरीकी विमान वाहक पोत और एक विध्वंसक पोत को निशाना बनाया। ईरान ने इन हमलों को दिन में अमरीका द्वारा ईरानी तेल टैंकरों पर किए गए हमलों की जवाबी कार्रवाई बताया। इंडोनेशिया में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण 8 हवाई अड्डों पर परिचालन अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया। इससे 1.5 लाख से अधिक यात्री फंस गए हैं। परिवहन मंत्री डूडी पूर्वा गांधी ने बताया कि अब तक 712 उड़ानें प्रभावित हुई हैं। जकार्ता के सोकार्नो हट्टा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने आज सुबह अनाक क्राकाटाऊ ज्वालामुखी से निकली राख के हवाई क्षेत्र में पाए जाने के बाद सबसे पहले परिचालन निलंबित किया। चीन के शेंझेन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन का खिताब जीत लिया है। पुरुष डबल्स फाइनल में भारतीय जोड़ी के चीन के हे जी टिंग और रेयान जियांग यू को हराया। इस वर्ष यह उनका दूसरा सुपर 750 और कुल मिलाकर चौथा खिताब है। सात्विक चिराग की जोड़ी इस टूर्नामेंट में 2023 और 2025 में उपविजेता रही थी। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Aditi Lumba. A multi-story building housing a student paying guest accommodation collapsed in Satyaniketan area of Delhi this afternoon. 3 persons have lost their lives and 11 people have been rescued so far, while several students are feared trapped under the debris. A major rescue operation involving multiple emergency and disaster response agencies is underway. Delhi Chief Minister Rekha Gupta visited the mishap site and took stock of the situation. Talking to media after the visit, Ms. Gupta said relief and rescue operations are continuing on a war footing. She said those found responsible for the incident will not be spared. Delhi Lieutenant Governor Taranjit Singh Sandhu also reached the mishap site and oversaw the rescue operations. Talking to media, Inspector General of the National Disaster Response Force, NS Bundela, said that 2 NDRF teams comprising 70 personnel are currently working on the site. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed grief at the loss of lives in the incident. Union Home Minister Amit Shah said he spoke with the Delhi Chief Minister, Delhi Police Commissioner and the Director General of NDRF and took stock of the situation. Union Home Minister Amit Shah has said the government has prepared a three-year roadmap to make country drug-free by 2029. He said the roadmap will be based on a four-pillar approach aimed at dismantling narcotics networks. Mr. Shah was addressing a press conference at Panaji in Goa. He said a drug-free youth will play a crucial role in achieving the vision of a developed India by 2047.
2: 2029
3: We have prepared a roadmap to make India drug-free by 2029. We have identified the period from 2026 to 2029 as a mission mode period with clearly defined timelines and targets. Our vision document is based on four key pillars. First, intelligence and operations-based enforcement. Second, effective control over precursors and synthetic drugs. Third, demand reduction and harm reduction. And fourth, capacity building and cooperation.
1: Vice President C.P. Radhakrishnan today urged students to stay away from drugs and restrict social media usage. He called upon youth to stay healthy and disciplined lives and contribute towards building a drug-free India. He also advised students to use social media constructively and not allow it to consume excessive time. Mr. Radhakrishnan was addressing the convocation ceremony of Sri Manta Sankaradeva University of Health Sciences at Guwahati in Assam. The Vice President reached Guwahati today on a two-day visit to Assam. Earlier in the day, Mr. Radhakrishnan addressed the Golden Jubilee celebrations of Geeta Nagar College in Guwahati. Indian Space Research Organization ISRO has issued a clarification on reports circulating in the media regarding the speculations and misinformation that there is an attempt to privatize ISRO or reduce its role. In a social media post, ISRO said that it will neither be privatized nor will its importance be diminished. It added that participation of the private sector in space is aimed at enabling ISRO to focus even more strongly on the next generation of India's space program while industry scales up mature technologies and capabilities. ISRO said the space sector reforms aims to create a larger, stronger and globally competitive Indian space ecosystem. It also said the reform should therefore be seen as ecosystem expansion and capability multiplication rather than privatization. Union Science and Technology and Earth Sciences Minister Dr. Jitendra Singh has called for taking country's rapidly expanding startup ecosystem beyond the metropolitan centers. He also stressed on creating stronger linkages between sciences, startups and industry to accelerate the journey of indigenous technologies from laboratories to the marketplace. In badminton, Indian men's doubles pair of Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty clinched their maiden title at the China Masters in Shenzhen today. The Indian duo defeated China's He Ji Ting and Ren Xiang Yu by 11-21, 21-13, 21-17 in the summit clash to secure country's first ever title at the tournament. And that is the end of this news bulletin.
4: FMK 101.7 MHz पर यह आकाशवाणी का चेबासा केंद्र है। रात्रि के 11:10 हो चुके हैं। हमारी आज की सभा अब यहीं संपन्न होती है। कल प्रातः 5:55 पर हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें विदा दें। शुभ रात्रि। जय हिंद।